ये आकाशवाणी है FM 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद माह की 23वीं तिथि, तदनुसार 14 सितंबर वर्ष 2026। इस समय सुबह के 8:55 होने को हैं। हमारी आज की ये प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

लीजिए श्रोताओं, कार्यक्रम विवरण में सुनिए आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम और उनके प्रसारण समय की जानकारी। आज सुबह 9:10 पर सुनिएगा हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरितमानस गान। 9:20 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना प्रसारित किया जाएगा। 9:40 पर आप सुन सकेंगे गैर फिल्मी गीत। 10:00 गाने पुराने जमाने के और 10:30 पर समय रहेगा गाने नए तराने नए कार्यक्रम का। शाम 5:00 युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी। महिलाएं अपना कार्यक्रम सुनेंगी 5:30 पर महिला जगत कार्यक्रम में और 6:20 पर आप सुन सकेंगे लोकगीतों का कार्यक्रम माटी के स्वर। शाम 7:00 का समय रहेगा किसान भाइयों के कार्यक्रम खेती बाड़ी का और 7:30 पर आप सुन सकेंगे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत दिल से होगा रात्रि 8:00 और 8:30 पर विविधा कार्यक्रम में सुनिएगा झलकी लिफ्ट का चक्कर। रात्रि 9:00 आप सुन सकेंगे दर्द भरे गीत। तो श्रोताओं, ये तो थी आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम और उनके प्रसारण समय की जानकारी। FM 103.7 MHz पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। सुबह के 9:00 वाले हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार जिन्हें हम आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में 309 नगरीय निकायों के चुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना जारी, दोपहर तक नतीजे आ जाएंगे। जैसलमेर की पोखरण रेंज में 3 दिवसीय ड्रोनाथॉन 2026 की शुरुआत आज से। गणेश चतुर्थी के पर्व को लेकर प्रदेश भर में श्रद्धा और उल्लास का माहौल, जगह जगह गणपति बप्पा के जयकारों के साथ वातावरण भक्तिमय। और हिंदी दिवस के अवसर पर आज कई कार्यक्रमों का आयोजन, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने शुभकामनाएं दी। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आज 309 नगरीय निकायों के चुनाव के लिए मतगणना हो रही है। सुबह 8 बजे से कड़ी सुरक्षा के बीच मतों की गिनती शुरू हुई। सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती की गई, इसके बाद ईवीएम के वोटों की गिनती की जा रही है। मतगणना स्थलों पर गहमा गहमी का माहौल है। 38,889 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला आज हो जाएगा। जोधपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां नगर निगम की 100 वार्डों में कुल 385 प्रत्याशी मैदान में हैं।
1: मतगणना के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज में 10 कक्ष बनाए गए हैं। यहाँ पर कुल 117 राउंड में मतों की गिनती होगी। जैसे जैसे राउंड आगे बढ़ेंगे, वार्ड वाइज हार जीत की तस्वीर भी साफ होती जाएगी। पॉलिटेक्निक कॉलेज के बाहर मतगणना स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं शहर में अपने प्रत्याशी की हार जीत के बारे में जानने के लिए जगह जगह बड़े एलईडी टीवी के सेट लगाए हैं, जहां पर लोगों की भीड़ जुटना शुरू हो गई है। मतगणना के बाद विजयी प्रत्याशियों को पॉलिटेक्निक कॉलेज में ही प्रमाण पत्र देकर शपथ दिलाई जाएगी। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने बताया कि मतगणना को पारदर्शी, स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाए रखने के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से विशेष इंतजाम किए गए हैं।
2: जो हमारे मतगणना स्थल पर टेबल्स की, कर्मचारियों की और जो पुलिस बल की पूरी व्यवस्था जो है समुचित ढंग से की गई है। जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, जो राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षक हैं, वो सारी प्रक्रिया पर सतत जो है निगरानी रखे हुए हैं। जो बाहर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए एक जो है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेसी की भी व्यवस्था की गई है, अपने जोनल मजिस्ट्रेट वगैरह भी लगाए गए हैं।
0: श्री सिंह ने कहा कि आज परिणाम के बाद विजय जुलूस और रैली निकालने पर रोक रहेगी। उन्होंने नतीजों के बाद लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की।
2: 2:30 बजे तक हमें उम्मीद है कि सारे फैसले आ जाएंगे, सारे रिजल्ट आ जाएंगे। तो हम लोगों ने राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से विजय जुलूस पर प्रतिबंध भी लगाया है। तो मैं जो है सभी जो मतदाता हैं उनको गणेश चतुर्थी के हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और जनता से अपील करता हूं कि जो भी प्रत्याशी, चाहे वो विजयी हो या जो है पराजित हो, वो शांति व्यवस्था बनाए रखें और जनता के फैसले को उत्साहपूर्वक स्वीकार।
0: गौरतलब है कि 9 और 11 सितंबर को दो चरणों में हुए मतदान में पहले चरण में 162 निकायों में 76.42% और दूसरे चरण में 147 निकायों में करीब 71% मतदान हुआ था। जैसलमेर की पोखरण रेंज में भारतीय वायुसेना आज से ड्रोनाथॉन 2026 आयोजित करेगी। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय उद्योग जगत की कंपनियां स्वदेशी ड्रोन और ड्रोन रोधी तकनीकों का विकास, परीक्षण और प्रदर्शन करेंगी। इस आयोजन का उद्देश्य घरेलू निर्माताओं को मानव रहित हवाई प्रणालियों और ड्रोन रोधी प्रणालियों में अपनी क्षमताओं और तकनीकी प्रगति को प्रदर्शित करने का अवसर देना है। ड्रोनाथॉन के जरिए मौजूदा जरूरतों के अनुरूप की समाधान तलाशने और उनकी युद्धक प्रभावशीलता का आकलन करने में मदद मिलेगी। आयोजन को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स के सभी सदस्य देशों के नेताओं का दिल्ली शिखर सम्मेलन को सफल और परिणाममुखी बनाने के लिए आभार व्यक्त किया है। दो दिन के शिखर सम्मेलन के विशेष क्षणों को दर्शाने वाला एक वीडियो प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया गया है। वीडियो में प्रधानमंत्री के शिखर सम्मेलन भाषण का एक अंश दिखाया गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि ब्रिक्स के माध्यम से भारत ने विश्व स्तर पर मित्रता, साझेदारी और सहयोग को आगे बढ़ाया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में गणेश चतुर्थी का पर्व आज श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। शहरों से लेकर गांवों तक गणेश प्रतिमाओं की स्थापना के साथ मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना और आरती का दौर चल रहा है। गणपति बप्पा के जयकारों से माहौल भक्तिमय बना हुआ है। जयपुर के मोती डूंगरी स्थित गणेश मंदिर में दर्शनों के लिए देर रात से ही श्रद्धालुओं की कतारें लगना शुरू हो गई। इससे पहले कल मंदिर में सिंजारे का आयोजन हुआ। गणपति को मेहंदी अर्पित कर इसका श्रद्धालुओं में वितरण किया गया। उधर डूंगरपुर में गेप सागर की पाल पर गणेश जी की आकर्षक प्रतिमा स्थापित की गई और गंगा आरती की तर्ज पर आरती हुई। पाली में गणेश यात्राएं निकाली जा रही है। भरतपुर में 200 से अधिक पांडालों में गणेश प्रतिमाओं की स्थापना की जा रही है। बाड़मेर और विराटनगर में भी प्रमुख गणेश मंदिरों में मेले और अन्य धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए विभिन्न स्थानों पर पुलिस और प्रशासन की ओर से सुरक्षा यातायात के विशेष इंतजाम किए गए हैं। उधर सवाईमाधोपुर में त्रिनेत्र गणेश मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। साल 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के तौर पर अपनाया था। आज हिंदी दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है और 52 करोड़ से ज्यादा लोगों की पहली भाषा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नवी मुंबई में हिंदी दिवस 2026 कार्यक्रम और छठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में शामिल होंगे। इधर प्रदेश में भी हिंदी दिवस पर कई कार्यक्रम रखे गए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया पर सभी प्रदेशवासियों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि हिंदी भाषा हमारे संस्कारों, भावनाओं और विचारों की सशक्त अभिव्यक्ति है। बाड़मेर जिला अस्पताल में मरीजों की सुविधा के लिए डिजिटल ई प्रिस्क्रिप्शन प्रणाली शुरू की गई है। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर हनुमान राम चौधरी ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत अब

0: मरीजों को पुरानी कार्बन पर्चियों से राहत मिलेगी। मरीज के आधार या मोबाइल नंबर से जनरेट होने वाले यूनिक क्यूआर कोड के जरिए ओपीडी जानकारी, लैब रिपोर्ट और दवाओं का विवरण डिजिटल रूप से उपलब्ध होगा। ये रिकॉर्ड सीधे मरीज की आभा आईडी से लिंक होगा, जिससे भविष्य में इलाज और पारदर्शी बनेगा।
1: कार्बन जो है जगह जगह पेशेंट फेंक के जाते थे, तो इसमें स्वच्छता में भी प्रॉब्लम आ रही थी और कचरा निस्तारण में भी प्रॉब्लम आ रही थी। दूसरी पर्ची है फट जाती थी और दिखती भी नहीं, प्रिंट भी धुंधला होता था और उस पर्ची को रखना भी दिक्कत आ रही थी। इसलिए हमने लेजर प्रिंटेड की जो पर्ची है वो लेजर प्रिंटर से कर रहे हैं अभी, और पर्ची की जो क्वालिटी है जीएसएम 100 का पेपर है, बेस्ट क्वालिटी का पेपर भी यूज कर रहे हैं ताकि वो सुरक्षित भी रहे। इसके पेपर के अलावा भी अभी डिजिटल कर रहे हैं, तो उसकी आभा आईडी के अंदर पूरा रिकॉर्ड है वो पेशेंट का। आभा आईडी से लिंक हो जाने के बाद आभा आईडी में भी चला जाएगा, तो वापस पेशेंट आता है तो उसका रिकॉर्ड सारा उस अंदर दिखेगा और उसको प्रिस्क्रिप्शन वापस लिखेंगे दोबारा, तो उसको सेलेक्ट करके दोबारा रिप्रिंट भी कर सकते हैं। तो अभी हम डिजिटल के लिए प्रयास कर रहे हैं।
0: प्रदेश में सक्रिय मॉनसून के असर से आज से 3 दिन तक कई हिस्सों में बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार आज और कल उदयपुर संभाग और आसपास के जिलों में कहीं कहीं मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर संभाग में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। बीकानेर संभाग में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। इससे पहले पिछले 24 घंटों के दौरान भी प्रदेश की कई हिस्सों में बारिश दर्ज की गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में 309 नगरीय निकायों के चुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना जारी। दोपहर तक नतीजे आने की संभावना। जैसलमेर की पोखरण रेंज में 3 दिवसीय ड्रोनाथॉन 2026 की शुरुआत आज से। गणेश चतुर्थी के पर्व को लेकर प्रदेश भर में श्रद्धा और उल्लास का माहौल। जगह जगह गणपति बप्पा के जयकारों के साथ वातावरण भक्तिमय। और हिंदी दिवस के अवसर पर आज कई कार्यक्रमों का आयोजन। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: FM 103.7 MHz पर ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। इस समय सुबह के 9:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरितमानस गान।

चित्रकूट में एकत्रित साधुओं तथा गुरुजनों की सभा में भरत विविध प्रकार से श्री राम के प्रति अपनी भक्ति और निष्ठा प्रकट करते हैं। प्रेम के प्रण को निभाते हुए पिता की मृत्यु, माता कैकेयी की कुबुद्धि, अन्य माताओं की विकलता तथा अवध निवासियों के परिताप, इन सभी अनर्थों के मूल में भरत स्वयं को पाते हैं। तब मुनि वशिष्ठ ने अनेक कथाएं सुनाते हुए भरत जी के परिताप का समाधान किया। प्रभु श्री राम ने कहा, हे तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थ ही ग्लानि करते हो। जीव की गति ईश्वर के अधीन होती है। तीनों काल तथा तीनों लोकों के सभी पुण्यात्माओं से तुम्हारा स्थान ऊंचा है। शिवजी साक्षी हैं कि ये पृथ्वी तुम जैसे पुण्यात्माओं के बल पर टिकी है। प्रेम और बैर छिपाए नहीं छिपते। मित्र और शत्रु को पशु पक्षी भी पहचानते हैं। वे मुनियों के पास निशंक चले जाते हैं, किंतु बधिकों को देखते ही भाग खड़े होते हैं।

0: श्रोताओं, सतीश भाटिया के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरितमानस गान। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। सुबह के 9:20 हो रहे हैं। लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, और ये है कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति।
1: वक्रतुंड महाकाय सूर्य

श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज किया है हमने गणेश जी की वंदना के साथ, क्योंकि आज है गणेश चतुर्थी और आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये गाना हमने लिया है, ये भक्ति गीत हमने लिया है सुरेश वाडेकर, नितिन मुकेश और साथियों की आवाज़ में।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: श्रोताओं, आज सोमवार है और सोमवार को करते हैं हम शिव वंदना। तो आइए सुनते हैं अनूप जलोटा की आवाज में शिव भक्ति से रचा बसा ये गीत।

अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?

प्रत्येक सोमवार को रात्रि 8 बजे सुनिए सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम दिल से। इस कार्यक्रम में अपनी फरमाइश भेजने के लिए आपको लिखना है अपने पसंदीदा गीत के बोल, फिल्म का नाम, अपना नाम और अपने शहर या गांव का नाम, और भेज देना है हमारे व्हाट्सएप नंबर 9649004762 पर। शाम 5 बजे तक प्राप्त आपकी फरमाइशों का प्रसारण किया जाएगा उसी रात 8 बजे आपके अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है दिल से।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल और आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आइए इस कार्यक्रम में अब सुनते हैं हरि ओम शरण की गाई ये भक्ति रचना।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। सुबह के 9:40 हुए हैं। लीजिए सुनिए गैर फिल्मी गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज हमने किया है अनाइदा के गाए इस गाने के साथ, जिसे हमने लिया है फिल्म एल्बम ऊंची नीची से।

लीजिए, कार्यक्रम में अब आगे सुनिए तानिया और साथी का गाया ये गाना पॉप होश से।

लीजिए श्रोताओं, कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं अनुराधा पौडवाल और साथियों का गाया ये गैर फिल्मी गीत, जिसे हमने लिया है इश्क हुआ एल्बम से।

श्रोताओं, अनुराधा पौडवाल के गाए इस गैर फिल्मी गीत के साथ ही गैर फिल्मी गीत कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। सुबह के ठीक 10 बज रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम गाने पुराने जमाने के। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को रमा सोनी का प्यार भरा नमस्कार। आज है गणेश चतुर्थी। पूरा देश गणेश उत्सव आज बहुत ही धूमधाम के साथ मना रहा है। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं।

कोई दुख संता।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज़ हमने किया फिल्म इलाका के इस गणेश भक्ति से ओतप्रोत गीत के साथ। इसे गाया किशोर कुमार, आशा भोसले और साथियों ने, संगीत दिया था नदीम श्रवण ने और गीतकार थे अनजान।
1: हेलो
2: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
1: फिर से
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
4: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
1: सर इतने कहाँ से?
4: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
1: 2 लाख
5: क्या हुआ पापा?
1: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
3: अरे
1: काट दिया।
5: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
1: फ्रॉड?
5: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे,
6: RBI कहता है।
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: लीजिए श्रोताओं, अब सुनते हैं गैम्बलर फिल्म का ये गाना, जिसे गाया है किशोर कुमार ने, संगीत से सजाया है SD बर्मन ने और गीत लिखा है नीरज ने।
1: हम दो
8: दिल आज शायर है, गम आज नगमा है,

लीजिए श्रोताओं, अब कार्यक्रम में सुनते हैं फिल्म तेरे मेरे सपने का ये गाना, जिसे गाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने, संगीत दिया है SD बर्मन ने और गीत लिखा है नीरज ने।

लीजिए अब सुनिए फिल्म हाथी मेरे साथी का ये गाना, जिसे गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और गीत लिखा है आनंद बख्शी ने।

लीजिए, अब सुनते हैं चरस फिल्म का ये गाना, जिसे गाया है लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और आनंद बख्शी ने। गीत को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और गीत लिखा है आनंद बख्शी ने।

लीजिए श्रोताओं, अब कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं फिल्म छोटी सी बात का ये गाना, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने, संगीत दिया है सलील चौधरी ने और गीत लिखा है योगेश ने।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। सुबह के ठीक 10:30 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम गाने नए तराने नए, और ये है कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति।

श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज हमने किया है फिल्म बाहुबली 2 से। इसे गाया है अदिति पाउल और दीपू और साथियों ने।

श्रोताओं आइए अब सुनते हैं फिल्म बाजीराव मस्तानी का ये गाना, जिसे गाया है शशि सुमन, कुणाल पंडित, पृथ्वी गंधावा, कनिका जोशी, राश्री रागा और गीतिका मुखर्जी ने।

श्रोताओं, ये गाना हमने लिया है फिल्म बार बार देखो से। इसे गाया है अमर अर्शी बादशाह और नेहा कक्कड़ ने। गीत लिखा है अमरीक सिंह कुमार ने और म्यूजिक दिया है प्रेम हरदीप ने।

लीजिए श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं फिल्म दृश्यम का ये गाना, जिसे गाया है मिक्का सिंह, शेफाली अल्वारिस ने, गीत लिखा है कुमार ने और संगीत दिया है प्रीतम ने।

लीजिए श्रोताओं, अब सुनते हैं फिल्म प्रेम रतन धन पायो का ये गाना, जिसे गाया है शान और साथियों ने। संगीत दिया है इरशाद कामिल ने और संगीत दिया है हिमेश रेशमिया ने, गीत लिखा है इरशाद कामिल ने।

आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं फिल्म दंगल का ये गाना जिसे गाया है जोनिता गांधी ने, गीत लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत दिया है प्रीतम ने।

लीजिए श्रोताओं, आप सुनिए कार्यक्रम का आखिरी गाना जिसे हमने लिया है फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया से। इसे गाया है अखिल सचदेवा मनशील गुजराल ने, गीत लिखा है अखिल सचदेवा ने और संगीत भी दिया है अखिल सचदेवा ने। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम की ये आखिरी प्रस्तुति।

0: ना कोई।
1: श्रोताओं, बद्रीनाथ की दुल्हनिया इस फिल्म के इस गीत के साथ ही गाने नए तराने नए कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। सुबह के ठीक 11 बज रहे हैं। आइए बाप को ले चलते हैं आकाशवाणी मुंबई और सुनवाते हैं विविध भारती द्वारा प्रसारित कार्यक्रम।

विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता, बुद्धि और समृद्धि के देवता भगवान गणेश को नमन करते हुए हमने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत की है इस गीत के साथ। फिल्म का नाम था दर्द का रिश्ता, आवाजें ए हरिहरन और साथियों की थी। गीत को आनंद बख्शी ने लिखा था और धुन बनाई थी राहुल देव बर्मन ने। आज का ये रंग तरंग कार्यक्रम गणपति बप्पा बोरिया मोरिया के नाम। कहते हैं जहां गणपति का स्मरण होता है वहां शुभता अपने आप चली आती है, और हर नई शुरुआत से पहले जिनका नाम लिया जाता है वे हैं हमारे प्रिय गणपति बप्पा। तो आइए भक्ति और श्रद्धा से भरे इस सफर में अब सुनते हैं कार्यक्रम का ही अगला गीत।

गाने वाले कलाकार हैं शंकर महादेवन और साथी। गीतकार और संगीतकार डॉक्टर विजय भावे।

0: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
1: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
0: हाँ।
1: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
0: हाँ।
1: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
0: हाँ? पता नहीं।
1: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
3: कल भी मैं इतनी कम्फर्टेबल थी उस माइक के सामने, और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं। बस वहाँ से मैं 7 साल की थी, और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
4: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

ये आवाजें थी तृप्ति शाकिया और साथियों की। आपने इनकी आवाज में ये गणेश वंदना सुनी। आइए सुनते हैं अगला गीत।

समूह स्वरों में अभी आप सुन रहे थे ये स्तुति, गणेश स्तुति। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला भक्ति गीत। आवाजें हैं अभिजीत सावंत और राहुल वैद्य की।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गटले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
0: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए। तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
0: बिल्कुल। वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: हेलो। हाँ हाँ आज प्रोजेक्ट देख लूंगा फिर कर...

0: होते हैं डील फाइनल।
1: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
1: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
1: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।

रंग तरंग कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं महेंद्र कपूर, सुरेश वाडेकर, शब्बीर कुमार और हेमलता की आवाजों में फिल्म मरते दम तक का ये गीत। गीतकार और संगीतकार रविंद्र जैन।

0: इस गाने के साथ ही आज का रंग तरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज का ये कार्यक्रम गणपति बप्पा मोरिया को समर्पित था।
1: रंग तरंग
0: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 12 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
2: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
0: साथ में प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को सफल बनाने के लिए सभी सदस्य देशों का आभार व्यक्त किया है। शिखर सम्मेलन के विशेष क्षणों को दर्शाने वाला एक वीडियो प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया गया है। वीडियो में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के माध्यम से भारत ने विश्व स्तर पर मित्रता, साझेदारी और सहयोग को आगे बढ़ाया है। श्री मोदी ने कहा कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा दृष्टिकोण और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
3: पिछले दो दिनों की हमारी चर्चाओं ने हमारा विश्वास और मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं, सॉल्यूशंस का एक इकोसिस्टम है। हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा।
0: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 11 सदस्य देशों और 10 भागीदार देशों के नेताओं के साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी भाग लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि सम्मेलन की सफलता ने वैश्विक मंच पर भारत की मजबूत छाप छोड़ी है। श्री सिंह ने कहा कि ऐतिहासिक नई दिल्ली घोषणा पत्र भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव का प्रमाण है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने तिरुकुरल के प्रचार प्रसार के लिए प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की है। उन्होंने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को तिरुकुरल के रूसी अनुवाद की प्रति भेंट करने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद भी दिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एधनॉम घेब्रियासिस ने कहा है कि इस वर्ष ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय सीधे तौर पर वैश्विक स्वास्थ्य से जुड़ा था। उन्होंने देशों से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा निगरानी, चेतावनी प्रणाली और स्थानीय उत्पादन को मजबूत करने का आग्रह किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि 21 राज्यों में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकारें 2029 से पहले समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करेंगी। मुंबई में श्री शाह ने कहा कि कई राज्यों में यूसीसी लागू हो चुकी है और 2029 से पहले भाजपा एनडीए शासित सभी 21 राज्यों में इसे लागू कर दिया जाएगा। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के तौर पर अपनाया था। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत में कई भाषाओं का होना देश की सबसे बड़ी ताकत है। हिंदी दिवस पर एक वीडियो संदेश साझा करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदी भाषा किसी दूसरी भाषा की प्रतिद्वंद्वी नहीं, बल्कि राष्ट्रीय एकता को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है।
4: भाषा किसी भी समाज की स्मृति होती है, उसका आत्मबोध होती है। हिंदी ने इस विविधता के बीच संवाद, संपर्क और समन्वय की भाषा के रूप में देश के विभिन्न वर्गों और समुदायों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी का विकास भी तभी सार्थक है जब सभी भारतीय भाषाओं के सम्मान, संरक्षण और संवर्धन के साथ आगे बढ़े।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हिंदी दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं, बल्कि भारत की संस्कृति, सभ्यता और जीवन मूल्यों की सशक्त अभिव्यक्ति है। देश भर में आज गणेश चतुर्थी का त्योहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है, जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने कहा है कि उनका देश भारत के साथ संबंधों को द्विपक्षीय बातचीत के जरिए आगे बढ़ाना चाहता है। ढाका में उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को भारत के साथ आपसी हितों के आधार पर नए सिरे से काम करना चाहिए। भारत बांग्लादेश सीमा से जुड़े हाल के मामलों पर श्री कबीर ने कहा कि ढाका अंतर

0: अंतर्राष्ट्रीय कानून, सीमा संबंधी नियमों और द्विपक्षीय समझौतों के तहत कूटनीतिक बातचीत से मुद्दों का समाधान करेगा। भारत ने T20 महिला एशिया कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में कल भारतीय टीम ने श्रीलंका को 72 रन से हराकर 8वीं बार एशिया कप अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। दोस्तों, इस कार्यक्रम में आज हम याद कर रहे हैं फिल्मकार जीपी सिप्पी को। आज इस कार्यक्रम में हमने चुने हैं उन्हीं की फिल्मों के कुछ गीत। ये पहला गीत लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम है सजा। गीतकार साहिर लुधियानवी, संगीतकार सचिन देव बर्मन।

लता मंगेशकर को अभी आपने सुना फिल्म का नाम था सजा। और आइए अब सुनते हैं ओपी नैयर के संगीत निर्देशन में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत, आवाजें मोहम्मद रफी और गीता दत्त की, फिल्म का नाम 12 o'clock।

0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर. सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा.
2: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी. मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई. उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ.
1: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर.

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। और आज इस कार्यक्रम में हम आपको फिल्मकार जीपी सिप्पी के कुछ फिल्मों से गीत सुनवा रहे हैं। आइए सुनते हैं। मोहम्मद रफी और साथियों को फिल्म का नाम है मरीन ड्राइव, गीतकार कमर जलालाबादी और संगीतकार एन दत्ता।

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य अकादमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य अकादमी युवा का।
0: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए। तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
0: वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: मोहम्मद रफी की आवाज में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म राज का गीत। शब्दकार शमीम जयपुरी और संगीत दिया है कल्याण जी।

मोहम्मद रफी की आवाज में अभी आपने फिल्म राज का ये गीत सुना। आइए सुनते हैं एन दत्ता के संगीत निर्देशन में साहिर लुधियानवी का लिखा ये दो गाना। स्वर मोहम्मद रफी और गीता दत्त के। फिल्म का नाम है भाई बहन।

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
0: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
0: बिल्कुल। वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म ब्रह्मचारी से युगल स्वर मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर के।

0: का मौसम ना कहीं छाई बदरिया, फिर भी मोरे जिया राम चमके, अरे थम थम कोई बिझुरिया।
1: वाह वाह वाह, तुहार जवाब नाही

बोले से पास कभी आई के जो बिछवा बजाई दे गोरी छम से कसम से बिना।

0: मोहम्मद रफी, सुमन कल्याणपुर, सुषमा श्रेष्ठ और प्रतिभा को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था अंदाज। इसे हसरत जयपुरी ने लिखा था और धुन बनाई थी शंकर जयकिशन ने। इससे पहले आपने मुकेश की आवाज में फिल्म बंधन का गीत सुना था। शब्द अनजान के थे और धुन कल्याण जी आनंद जी की थी।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गटले
1: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
3: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
4: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
5: चिट्ठी ना कोई संदेश।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: यादों की महफिल कार्यक्रम में अब सुनिए राहुल देव बर्मन की संगीत निर्देशन में जावेद अख्तर के बोल, आवाज किशोर कुमार की और फिल्म का नाम सागर।

आशा भोसले की आवाज में अभी आपने फिल्म शान का ये गीत सुना। इसे आनंद बख्शी ने लिखा था और धुन बनाई थी राहुल देव बर्मन ने।

और ये है इस कार्यक्रम का आखिरी गीत। फिल्म का नाम है पत्थर के फूल, आवाजें लता मंगेशकर और एसपी बालासुब्रमण्यम की।

इस युगलगान के साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज इस कार्यक्रम में हमने आपको फिल्मकार जीपी सिप्पी की फिल्मों से कुछ गीत सुनवाए।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती द्वारा प्रसारित कार्यक्रम FM 103.7 MHz पर। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। दिन के 1 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रदेश में 309 नगरीय निकायों के चुनावों की मतगणना जारी है। अब तक की मतगणना में

0: भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए हैं। राज्य की 10 नगर निगमों में से जयपुर सहित 8 नगर निगमों में भाजपा को बढ़त है, वहीं पाली में कांग्रेस तथा भरतपुर नगर निगम में निर्दलीय प्रत्याशियों को बढ़त मिली है। प्रदेश की 47 नगर परिषदों में से 34 में भाजपा को ज्यादा सीटें मिली हैं, वहीं 12 नगर परिषदों में कांग्रेस को बढ़त हासिल हुई है। इसी तरह 252 नगर पालिकाओं में 150 में बीजेपी और 89 में कांग्रेस के प्रत्याशी जीते हैं। जयपुर नगर निगम के 150 वार्डों में भाजपा के प्रत्याशी अब तक 43 वार्डों में जीते हैं, वहीं 32 में कांग्रेस और 5 वार्डों में निर्दलीय प्रत्याशियों को जीत हासिल हुई। कोटा की 100 वार्डों में से भाजपा के 60 से अधिक, वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी 30 से अधिक वार्डों में बढ़त बनाए हुए हैं। जोधपुर में भाजपा 49 और कांग्रेस 41 सीटों से आगे चल रही है, वहीं अजमेर में कांग्रेस 37 और भाजपा 32 सीटों पर आगे चल रही है। बीकानेर में 80 वार्डों में से बीजेपी 52 सीटों पर और कांग्रेस 20 सीटों पर आगे चल रही है। फिलहाल मतों की गणना जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश में कई भाषाओं का होना देश की सबसे बड़ी ताकत है। आज हिंदी दिवस पर एक वीडियो संदेश साझा करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदी भाषा किसी दूसरी भाषा की प्रतिद्वंदी नहीं, बल्कि राष्ट्रीय एकता को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी है। उन्होंने कहा कि औपनिवेशिक मानसिकता से बाहर निकलने में भाषा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हिंदी और अन्य सभी भाषाएं तकनीकी विकास के सुनहरे दौर में है। श्री शाह ने कहा कि मौजूदा समय में AI भारतीय भाषाओं के आसान अनुवाद के अवसर दे रहा है। नई शिक्षा नीति के बारे में बात करते हुए श्री शाह ने कहा कि नई नीति में भी मातृभाषा को शिक्षा के केंद्र में रखा गया है और इंजीनियरिंग तथा चिकित्सा की पढ़ाई कई भारतीय भाषाओं में हो रही है। प्रदेश में गणेश चतुर्थी का पर्व आज श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। शहरों से लेकर गांवों तक गणेश प्रतिमाओं की स्थापना के साथ मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना और आरती का दौर चल रहा है। गणपति बप्पा के जयकारों से माहौल भक्तिमय बना हुआ है। जयपुर के मोती डूंगरे स्थित गणेश मंदिर में दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हुई हैं। सवाईमाधोपुर में रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश मेले में श्रद्धा और उल्लास का माहौल है। जन्म की झांकी के दर्शनों के लिए मंदिर के बाहर भारी कतार देखने को मिल रही है। पाली में गणेश यात्राएं निकाली जा रही हैं, जबकि भरतपुर में 200 से अधिक पंडालों में गणेश प्रतिमाओं की स्थापना की जा रही है। बाड़मेर और विराटनगर में भी प्रमुख गणेश मंदिरों में मेले तथा अन्य धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। प्रदेश में आज 36 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र का प्रभाव 16 सितंबर तक रहने का अनुमान है। इसके प्रभाव से दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां बनी रह सकती हैं। इससे पहले पिछले 24 घंटों में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और सलुम्बर में कहीं कहीं मध्यम से भारी बारिश हुई। बांसवाड़ा के लोहारिया और डूंगरपुर के सागवाड़ा 10-10 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं पश्चिमी राजस्थान में गर्मी का असर बना हुआ है। कल श्रीगंगानगर में 39.9 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। प्रदेश में नशे के कारोबार को ध्वस्त करने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित 73,64,00,000 रुपए से ज्यादा की चल और अचल संपत्तियां कुर्क, फ्रीज और सीज की गई है। एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स की IG विकास कुमार ने बताया कि NDPS एक्ट की धारा 68F के तहत चलाए जा रहे विशेष अभियान में ये कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि आदतन और कुख्यात तस्करों के खिलाफ 63 इस्तगा से सक्षम प्राधिकारी को भेजे गए थे, जिनमें से 38 मामलों में कुर्की और जब्ती के अंतिम आदेश स्वीकृत हो चुके हैं। 25 मामलों में विधिक प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: FM 103.7 MHz पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। दिन के 1:05 हुए हैं। आइए अब आपको ले चलते हैं आकाशवाणी मुंबई और सुनवाते हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

जी हाँ, इस गाने में राजेश खन्ना खुली जीप में चलते हैं और अभिनेत्री यानी शर्मिला टैगोर दार्जिलिंग की जो खूबसूरत टॉय ट्रेन है जो बहुत ही प्रसिद्ध है उसकी खिड़की से उन्हें देखती है। क्यों, याद है ना आपको ये सीन? और गाने की धुन और ताल कुछ इस तरह बनाई गई है जो टॉय ट्रेन की गति और उसकी पटरियों की आवाज के साथ बिल्कुल मेल खाती है और पूरा गाना जो पर्वतीय वादियां हैं और चलती ट्रेन का जो सफर है उसका एहसास हमें इस पूरे गाने में मिलता है सुनने को, है ना? और आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत, लेकिन उससे पहले आपके संदेश आप तक पहुंचाते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि संगीत केवल सुरों और शब्दों का नाम नहीं, वो तो हमारे आसपास बिखरी उन छोटी छोटी आवाजों में भी छुपा होता है जो अनायास ही मन के किसी कोने को छू जाती है। जब ये ध्वनियां किसी गीत का हिस्सा बनती हैं तो गीत केवल सुनाई नहीं देता बल्कि महसूस होने लगता है। शायद इसीलिए कुछ आवाजें कानों से नहीं सीधे दिल से सुनी जाती हैं। वे हमारे मन की स्थिति को बदल देती हैं। उदासी में उम्मीद, अकेलेपन में साथ और खामोशी में संवाद तो कभी कोई मधुर आवाज बीते हुए प्रेम और यादों के दरवाजे भी खोल देती है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि कभी घड़ी की सुइयों की टिक-टिक, कभी मैदान में किसी खेल की गूंज तो कभी सन्नाटे को चीरती कदमों की आहट, ये सब केवल ध्वनियां नहीं है बल्कि जीवन की लय हैं। भारतीय सिनेमा के जादुई दौर में फिल्मी गीतों के संगीतकार

ने अपनी अनूठी कल्पनाशीलता से इन्हीं साधारण आवाजों और बीट्स को गीतों का अहम हिस्सा बनाया। उन्होंने उन ध्वनियों को संगीत के ताने बाने में इस तरह पिरोया कि वे गीत में अलग महसूस ही नहीं होती बल्कि उनकी आत्मा बन जाती हैं। इन प्रयोगों से ये साफ होता है कि संगीत केवल बंद कमरों या स्टूडियो में तैयार नहीं होता बल्कि ये हमारे जीवन के हर हिस्से में सांस लेता है। कदमों की आहट से लेकर हवा की सरसराहट तक हर ध्वनि में एक लय है। जरूरत है तो बस संगीतकारों जैसी एक संवेदनशील सोच और पारखी कान की जो शोर की बीच से भी एक सुरीली धुन को खींच लाए और उसे हमेशा हमेशा के लिए अमर बना दे। कितनी खूबसूरती से आपने अपनी बात रखी है। तो चलिए सुनते हैं एक ऐसा ही गीत फिल्म अलबेला से, जिसका जिक्र हमने अपनी इबारत में किया था। आवाजें लता मंगेशकर और चितलकर यानी सी रामचंद्र की, राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं, सी रामचंद्र का संगीत है। और इस गाने में क्या सुनाई देता है? हाँ, घड़ी की टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक, जो हमारे घर में भी हमें सुनाई देती है। और एक मधुर संगीत, खास तौर से रात के सन्नाटे में बहुत ही खूबसूरत संगीत हमें देती भी है ये घड़ी की टिक टिक।

0: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
1: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
0: हाँ।
1: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
0: हाँ।
1: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
0: हाँ? पता नहीं।
1: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।

0: प्रत्येक सोमवार को रात्रि 8 बजे सुनिए सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम दिल से। इस कार्यक्रम में अपनी फरमाइश भेजने के लिए आपको लिखना है अपने पसंदीदा गीत के बोल, फिल्म का नाम, अपना नाम और अपने शहर या गांव का नाम, और भेज देना है हमारे व्हाट्सएप नंबर 9649004762 पर। शाम 5 बजे तक प्राप्त आपकी फरमाइशों का प्रसारण किया जाएगा उसी रात 8 बजे आपके अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है दिल से।
1: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
2: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
3: कहूँ कि ऐसी कौन सी ध्वनियाँ जो आपको पसंद आती हैं या परेशान कर देती हैं? कम से कम शब्दों में अपनी बात रखिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा श्रोताओं को हम शामिल कर सकें उनके विचारों के साथ। और आइए चलते हैं अगले गीत की ओर। फिल्म का नाम है दिल तेरा दीवाना। आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की, शब्दकार हसरत जयपुरी हैं, संगीतकार शंकर जयकिशन हैं। इस गाने में शंकर जयकिशन ने खास साउंड इफेक्ट्स का बहुत ही अनोखा और खूबसूरत इस्तेमाल किया गया है। आपने सुना है ना ये गीत, जब बिजली कड़कने की आवाज आती है तो वो सिर्फ एक इफेक्ट नहीं लगती, बल्कि गाने के जो शुरुआती बोल हैं जहां रफी साहब कहते हैं कि बिजली गिरा के आप खुद बिजली से डर गई, और उसके साथ ही बिजली कड़कने की और तेज बारिश की आवाज आती है, और लगभग ये आवाज पूरे गाने में हमें महसूस होती भी है। तो आप भी महसूस कीजिए इस आवाज को।

0: हेलो, हाँ हाँ आज प्रोजेक्ट देख लूंगा फिर करते हैं डील फाइनल।
1: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
1: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
1: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
2: गूंज उठेंगे ये विरही सुर, कोशिशों साधे नहीं जाते, क्या बात है। एक श्रोता ने लिखा है, आज गीत की धुन के साथ विविध आवाजें भी अपने अस्तित्व का परिचय करवाएंगी। इस अनोखी सुंदर थीम को आज गणपति बप्पा का आशीर्वाद भी है, गणराज रंगी नाच। तो इस मराठी गीत में बाल गणेश जी ने पैरों में पहनी यानी घुंघरू की रुनझुन रुनझुन, ये बेहद सुरीली आवाज दिल को मोह लेती है। और आपने बहुत सारे गीतों का जिक्र भी किया है, हो सकता है आपकी पसंद हमारी आज की लिस्ट में शामिल हो। एक श्रोता लिखते हैं कि आज का विषय बिल्कुल नवीन है लेकिन बहुत ही रोचक है। गीतों में संगीतकारों द्वारा किए गए विभिन्न प्रयोग, उनकी कल्पनाशीलता, जिससे गीत शानदार हो गए। तरह तरह की बीट्स के प्रयोग ने गीत को कर्णप्रिय बना दिया है। ऐसे ही बहुत सारे गीतों का जिक्र आपने भी किया है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का ये सब्जेक्ट मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। मुझे चिड़िया या कोई भी गीत में पक्षियों की आवाज बहुत प्यारी लगती है, जैसे कोयल बोली, दिल कहीं रुक जा रे रुक जा, पंछियों की आवाजें और चुन चुन करती आई चिड़िया, इस तरह की आवाजें इन्हें बहुत पसंद आती हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि संगीत में सभी तरह के वाद्य यंत्रों के साथ ही आसपास मौजूद आवाज का प्रयोग कर गीतों की प्रस्तुति को लाजवाब बनाया।

गया है। पंख होते तो उड़ाती रे गीत में पंछी की मधुर आवाज के साथ पंछी की तरह उड़ते हुए पंख फैलाते हुए किया गया नृत्य बहुत ही आकर्षक भी लगता है। साथ ही संगीत का लाजवाब धुन आसपास के वातावरण को गुंजायमान भी कर देता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सफर में आज गीतों में छुपे एहसास और दिल में भावों को जगाते हुए उन आवाज को सुनना, जैसे हवा की सरसराहट, दरवाजे की आवाजें, सांसों की धड़कन, कुछ मंदिरों की घंटियां, बांसुरी की, समुद्र की डरावनी लहरी, लहरों की आवाजें और धीरे धीरे गुनगुनाने की आवाजें, ये सभी आवाजें मन के हर भाव को जीवंत कर देती हैं। जीवन का सुख दुख, हंसना रोना, डरना सहम जाना आदि सभी नवरसों जो जीवन में समाहित है वो सभी हमारे साथ है और ये सभी हमें प्रभावित करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और इन गीतों के साथ हम भी खो जाते हैं उन खास संगीत की ओर जो हमारे संगीतकारों ने प्रयोग के तौर पर डाले होते हैं। जैसे कि अगला गीत हम सुनने वाले हैं फिल्म शोले से किशोर कुमार की आवाज में, और इनका साथ दे रही हैं हेमा मालिनी, जब वो कहती हैं चल धन्नो। तो अब आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा है और राहुल देव बर्मन का संगीत है। इस गाने में आपको चाबुक की आवाज, घोड़े की टापों की आवाज, धर्मेंद्र के गिरने पर साइकिल की आवाज, साइकिल की घंटी की आवाज, बहुत सारे प्रयोग इस गीत में किए गए हैं और आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको भी इन गीतों में ये सभी धुनें सुनाई देंगी।

जी हाँ, ये बात तो बिल्कुल सच है कि जब स्टेशन से गाड़ी छूट जाती है तो फिर एक दो तीन हो ही जाती है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपको जाना है कहीं और आप भागते दौड़ते स्टेशन पहुंचे हैं और आपके सामने से ट्रेन निकल गई है, और वही हुआ जो इस गाने में कहा जा रहा है कि एक दो तीन हो जाती है। हमारे सवाल एक बार फिर से, हमने आपसे पूछा था कि आपकी पसंद के वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं जो रूटीन के वाद्य यंत्र हैं, जैसे कि अगर आप हारमोनियम, तबला और बांसुरी, बहुत सारे माउथ ऑर्गन, सितार, गिटार, बांसुरी, क्या क्या पसंद करते हैं अगर आप बजाते हैं या बजाना पसंद करते हैं संगीत के शौकीन हैं तो। लेकिन इसके अलावा कई बार हर आदमी अपने जीवन में जब कोई गाना गाना पसंद करता है, बाथरूम में, कमरे में, एकांत में, तो टीन कनस्तर जो हाथ में आता है, बाल्टी, झाड़ू, उसे भी वाद्य यंत्र बनाकर हम गाना गाने लगते हैं। भाई हमने तो ऐसा कई बार किया है कि टीन कनस्तर बजाकर ही ताल मिला ली है और गाना गा दिया है। तो आपके साथ भी ऐसा जरूर हुआ होगा, याद कीजिए उन पलों को। या आपके बच्चे अगर ऐसा करते हैं तो वो बात हमें बताइए, कम से कम शब्दों में लेकिन रोचक तरीके से। और हाँ, जब बात चली है ध्वनियों की, तो आपको अपने आसपास की कौन सी ध्वनियां प्रभावित करती हैं, यानी कौन सी ध्वनियां जो पसंद आती हैं और कौन सी ध्वनियां आपको परेशान करती हैं आपके घर के आसपास की? हमारे श्रोता ने लिखा है कि आज आपने बहुत ही खूबसूरत विषय उठाया है, संगीत में आवाजों की मौजूदगी को महसूस करने का। गीत की दुनिया में सुर और साज की अपनी खूबसूरती है, लेकिन कभी कभी कोई अनघट सी जानी पहचानी आवाज भी गीत को ऐसी आत्मीयता दे जाती है कि वो बरसों तक दिल में बसी रहती है। कदमों की आहट हो, घोड़े की टाप हो, या रेल की छुक छुक, घड़ी की टिक टिक हो, या पायल की रुनझुन, जब ये ध्वनियां किसी धुन में शामिल होती है तो गीत सुनाई कम और दिखाई ज्यादा देता है। हर आवाज अपने साथ कोई दृश्य, कोई मौसम, कोई स्मृति ले आती है। संगीत केवल वाद्य यंत्रों से नहीं बनता, वो तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के शोर में भी कहीं चुपचाप सुर तलाशता रहता है। बस उसे पहचानने के लिए कान नहीं, एक संवेदनशील दिल चाहिए। बहुत सुंदर लिखा है आपने। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि भारतीय सिनेमा के संगीतकारों की ये सबसे बड़ी खूबी रही है कि उन्होंने स्टूडियो की चारदीवारी से बाहर निकलकर हमारे दैनिक जीवन के शोर को सुर में तब्दील कर दिया। जब किसी गीत में कोई सहज आवाज, चाहे वो खेल की हो, रसोई की हो, किसी वस्तु की हो, शामिल होती है तो वो केवल एक धुन नहीं रहती कि दृश्य को श्रोता के जहन में जीवंत कर देती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हमारी शॉप रोड टच है तो पूरा दिन वाहनों की आवाजाही रहती है, तो आवाजें आती है, अच्छा भी लगता है। हमें रेडियो सुनने का शौक नहीं है तो पूरा दिन वाहनों की आवाज से हम तंग आ जाते हैं। और अच्छा, आपका कहना है कि आपके आसपास जो ये शोर आता है उससे आप परेशान हो जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल होते हैं, इस शोर से हम परेशान। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि गीत संगीत केवल सुरों का संगम नहीं बल्कि हमारे आसपास की जीवंत ध्वनियों का खूबसूरत विस्तार है। फिल्मों में संगीतकारों ने अपनी अद्भुत कल्पनाशीलता से घड़ी की टिक टिक, खेल के मैदान की हलचल या कदमों की आहट जैसी रोजमर्रा की आवाजों को धुनों में ऐसा पिरोया कि वे गीत की धड़कन बन गई। चाहे वो टिक टिक टिक मेरा दिल बोले हो या दिल की धड़कन बना हुआ कोई गीत, घड़ी की आवाज हो या ढल गया दिन, हो गई शाम में बैडमिंटन की रैकेट शटल की लय, ये ध्वनियां संगीत से अलग नहीं बल्कि उसका प्राण महसूस होती हैं। सच ये कि संगीत सिर्फ वाद्य यंत्रों से नहीं, हमारे परिवेश की हर धड़कन में छुपा है। बस उसे महसूस करने वाले कान और सुनने वाले बुनने वाले दिल की जरूरत है। बहुत सुंदर इबारत हमारे श्रोताओं ने लिखी है, तो चलिए सुनते हैं ऐसा ही गीत जिसका जिक्र हमने भी अपनी इबारत में किया था और अभी अभी इन श्रोता ने भी किया है। फिल्म हमजोली का गीत है, मोहम्मद रफी और आशा भोसले का गाया हुआ। आनंद बख्शी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन है, और इस गीत में क्या है ये आप जानते हैं। रैकेट और शटल की आवाज, टिक, है ना, सुना है आपने कितने तरीके से संगीतकार ने इस गाने में इस धुन को पिरोया है।

हमारे श्रोता ने लिखा है कि संगीत में साज तो कई तरह के होते हैं, लेकिन जब रोजमर्रा की कोई साधारण सी आवाज किसी गीत में ताल बन जाती है तो गीत यादगार बन जाते हैं। आपने बहुत सारे गीतों का जिक्र किया है और वही बात आपने भी कही है कि पूरा दृश्य चलने लगता है और सच्ची धुनें बाहर से नहीं बल्कि हमारी जिंदगी की रोजमर्रा के टिक टिक, छुक छुक और छम छम से ही छुपी होती है। बस उन्हें सुनने और महसूस करने के लिए एक संगीत प्रेमी दिल और दिमाग चाहिए होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। वही एक श्रोता लिखते हैं कि नित्य नवीन विषय की निर्मात्री का नवीनतम अध्याय प्रश्न

इतनी उल्लेखनीय और विचारणीय है। सुरीला सफर मंदाकिनी जी के निर्देशन में नई ऊर्जा से संचालित हो रहा है। नियमित श्रोताओं को स्फूर्तिवान रखने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहा है। चित्र विचित्र वस्तुओं के ध्वनियों से गूंजती आज की सुरीला सफर का संगीतमय आनंद बना रहेगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि भारतीय हिंदी फिल्मों के संगीत में अलग अलग संगीतकारों ने पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्रों के अलावा दूसरी अलग अलग चीजों से उत्पन्न होने वाली ध्वनि को अपनी संगीत रचनाओं में इस तरह पिरोकर ऐसा तिलिस्म रचा जो कि कालजी रचनाओं में शामिल हो गया। आपने भी कुछ गानों का जिक्र किया है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आपकी ये पंक्तियां संगीत को देखने का एक बेहद जादुई और अलौकिक नजरिया देती हैं। ये इबारत हमें एहसास कराती है कि महान संगीतकार केवल वाद्य यंत्रों के मोहताज नहीं थे, बल्कि वे हमारे आसपास बिखरी रोजमर्रा की आम आवाजों में भी संगीत ढूंढ लिया करते थे। घड़ी की सुइयों के टिक टिक को दिल की धड़कन बना लेना या खेल के मैदान की टुक टुक को धुन में ढाल देना उनकी अद्भुत कल्पनाशीलता और रचनात्मकता की पराकाष्ठा है। संगीत सिर्फ कानों से सुना नहीं जाता, बल्कि वो हमारी जिंदगी की हर हलचल में छुपा होता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि महान संगीतकार ओपी नैयर साहब ने अपने बनाए बहुत से गीतों में घोड़ों की टापों की आवाजों को शामिल किया और वो प्रयोग भी कामयाब रहा। और आर डी बर्मन साहब ने तो कंघी, टिन का डिब्बा, शीशे का गिलास, झाड़ू सभी बजाकर मधुर संगीत का निर्माण किया और वो भी सफल हुए। जितना हमें पता है वो सब आप सभी से साझा किया। अब देखना यह है कि आप अपने पिटारे में से कौन सी जानकारियां लेकर आती हैं। भाई हमारी भी जानकारी वही है जो आपकी है, लेकिन हाँ, हम इधर से आप तक पहुंचा रहे हैं और आप उधर से हम तक पहुंचा रहे हैं। तो चलते हैं अगले गीत की ओर। मन्ना डे की आवाज, फिल्म का नाम सफर, इंदिवर के बोल, कल्याण जी आनंद जी की धुन। और यहाँ पर आपने देखा होगा चप्पू की आवाज आती है, पानी की आवाज, किस तरह से नाव चल रही है, और ये आवाज हमें साफ साफ सुनाई देती है इस गीत के जरिए।

श्रोता लिख रहे हैं कि आज की उद्घोषिका, मंदाकिनी जी और सभी को नमस्कार। आज का विषय बिल्कुल नवीन लेकिन बहुत ही रोचक है, हमें पसंद आ रहा है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि हमने बचपन में परात को डफली बनाकर डफली वाले डफली बजा गीत की नकल की, जब मम्मी घर में नहीं होती थी, बस एक प्यारी सी दोस्त और हम होते थे। बिल्कुल सही कहा आपने, ऐसा ही होता है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि डीजे की आवाज मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती है। अच्छा, एक श्रोता कहते हैं हमारे घर के पास ही दुर्गा मंदिर है, सुबह सोकर उठने से पहले ही मंदिर की घंटियां हमें जगा देती हैं। बहुत ही मधुर स्वर में घंटियों की आवाज आती है और हम उठते ही ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। बहुत सुंदर, यानी हमारे सवालों का जवाब हमारे श्रोता दे रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि चाय के होटल पर पहले बैठते थे तो चाय आने में समय लगता था, तो टेबल बजाना चालू कर देते थे और उसके साथ गीत भी गाना शुरू हो जाता था। बिल्कुल ये होता है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि हम तो दो डब्बे रखकर तबला बजा लेते हैं, वीणा के तंतुओं द्वारा उत्सव उत्पन्न झंकृत ब्रह्मांडनीय नाद अति सुंदर। एक श्रोता ने लिखा है कि ढोलक बजाना आए या न आए, पर ढोलक देखने के बाद तो दो चार थाप हम भी लगा ही लेते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पूरब और पश्चिम फिल्मों में ओम जय जगदीश हरे आरती में घंटी और शंख ध्वनि, ये आवाज हमें बेहद पसंद है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि बांसुरी की आवाज मुझे हमेशा से बहुत अच्छी लगती है, उसमें न जाने कैसी सादगी और मिठास है कि मन को बिना कुछ कहे छू जाती है। जब बांसुरी बजती है तो लगता है जैसे हवा भी कोई मीठी सी धुन लेकर हमारे पास से गुजर गई हो। उसकी आवाज में एक अपनापन सा है, न कोई शोर न कोई बनावट, बस कुछ सुर और ढेर सारा सुकून है। शायद इसलिए बांसुरी की धुन सुनते ही मन कुछ पल के लिए ठहर जाता है और चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाती है। बहुत सुंदर बात आपने अपने मन की हम तक पहुंचाई है। एक श्रोता लिखते हैं कि पियानो अकॉर्डियन विशेषकर इन्हें पसंद आता है, माउथ ऑर्गन भी, और ये बजाते भी हैं। मैंडोलिन इन्हें पसंद है, सुरजीत और कई सारे वाद्ययंत्रों का आपने जिक्र किया है और आपने विविध भारती के कार्यक्रमों में इन वाद्ययंत्रों को बजाया भी है, इसका भी जिक्र आपने किया है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज के प्रोग्राम में बहुत ही कर्णप्रिय गाने जो अलग अलग वाद्ययंत्रों का प्रयोग मन को आह्लादित करने वाले हैं सुनाई दे रहे हैं। राहुल देव बर्मन साहब ने तो बहुत ज्यादा प्रयोग किए, कहीं चम्मच से भी लाजवाब संगीत उन्होंने बनाया है। और एक श्रोता लिखते हैं कि हमें थाली चम्मच और मेज, ये वाद्ययंत्र बहुत पसंद आते हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि सुबह सुबह चिड़ियों की चहचहाट बहुत अच्छी लगती है, स्वाभाविक भी है, ये चहचहाट तो सभी को मधुर लगती है, लेकिन ये मधुरता कब तक हमें मिलेगी पता नहीं, जब तक मिले भगवान जी को समर्पित और नमन करूंगी। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि गली मोहल्ले के छोटे मोटे फंक्शन में ढोलक एक आम बात हुआ करती है और कुछ लेडीज एक इकट्ठी होकर भजन कीर्तन या अन्य किसी प्रकार का कार्यक्रम करती हैं, ढोलक उसमें जरूर बजती है, उसमें मन भी लग जाता है और ढोलक बजाने की प्रैक्टिस भी हो जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने, और यही हमारे रोजमर्रा के वाद्य यंत्र भी होते हैं। अच्छा, कभी ऐसा भी हुआ होगा कि आप अपनी बाइक पर गए हों या गाड़ी में गए हों, दोपहिया वाहन पर गए हों या साइकिल पर गए हों और टायर पंचर। तो ऐसा ही गीत आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं फिल्म टैक्सी ड्राइवर से, जहां किशोर कुमार और साथियों ने इस गीत को गाया है। साहिर लुधियानवी के बोल हैं, सचिदेव बर्मन की धुन है, और इसमें यही होता है कि टायर पंचर होता है और फिर उसमें हवा भरी जाती है। बहुत ही ध्यान से जब आप इस गीत को सुनेंगे तो ये संगीत भी आपको सुनाई देगा।

0: शरीर की हवा निकल गई।
1: जैक लगाओ, किक किक किक किक, स्टेपनिंग पहिया, अरे पंपिंग।

जी, तो ये मसीबर गीत अभी आपने सुना। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि वैसे तो हमें प्रॉपर ढोलक बजाना नहीं आता, लेकिन फिर भी हम तबला और डोर बजा लेते हैं, ढोलक बजा लेते हैं। इसके अतिरिक्त कुकर की कुकर की जो सीटी आती है या टॉवल से भी गिटार बजाने का अभिनय कर लेते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। वही एक श्रोता लिखते हैं कि इन्हें गिटार और बांसुरी जो है बहुत पसंद आती है। वही एक श्रोता को हारमोनियम, ढोलक, तबला, मजीरा मंदिर में सत्संग में बहुत साल तक बजाया है। अभी ही 2 महीने पहले रामकथा का आयोजन किया था, तब स्टेज पर पूरे 9 दिन पखावज मंजीरे बजाई, क्या बात है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे बांसुरी और सैक्सोफोन वाद्य यंत्र बहुत पसंद है। और एक श्रोता को मुझे सभी वाद्य यंत्र पसंद है, लेकिन सैक्सोफोन और सितार को जिस तरह हमारे फिल्मी गानों में बजाया गया है तो वो कालजयी बन गए हैं और सबसे ज्यादा पसंद आते हैं। वही एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे गानों में बांसुरी की आवाज बहुत अच्छी लगती है। पक्षियों का कलरव बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो जब ज्यादा चींची करती है तो गुस्सा भी आने लगता है। अरे क्या बात है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि मैं हारमोनियम बजाता हूँ, चूंकि ये रीड वाला वाद्य यंत्र है अतः इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड भी बजाता हूँ। वैसे मुझे संतूर की आवाज भाती है, दिल दिमाग को झंकृत कर देती है। वही एक श्रोता को घोड़े की टापों की आवाज अच्छी लगती है। और एक श्रोता ने लिखा है कि बांसुरी की आवाज और टेबल को बजा के हम यूं तो गीत गा लेते हैं, और कभी कभी ढोलक की आवाज के साथ भजन भी हम गाते हैं जो कि अच्छे लगते हैं। एक श्रोता को प्रकृति को सुकून देने वाला संगीत सुनना है तो सुबह 5 बजे उठकर बाहर चले जाइए, वहाँ बहुत सारे पेड़ और चारों तरफ हरियाली होगी, पानी से भरा तालाब फिर नदी होगी, तो आपके मन को कितनी शांति मिलेगी ऐसा जानते हुए जब आप संगीत सुनेंगे तो उस संगीत का तो कहीं उदाहरण दूसरा मिलेगा ही नहीं, ऐसा आप लिखती हैं। और अब कार्यक्रम की आखिरी पेशकश, लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम पाकीज़ा, गीतकार कैफी आजमी हैं, संगीतकार गुलाम मोहम्मद साहब हैं। इस गाने के अंत में जो गाड़ी की आवाज है यानी सीटी जो बजती है वो बहुत ही खूबसूरत लगती है और दिल को एक अलग ही भाव पैदा कर देती है हमारे दिल में।

दोस्तों, समय अभाव के कारण ये गीत हम आपको पूरा नहीं सुनवा पाए और इसी कारण गाने के अंत में जो ट्रेन की आवाज हमें सुनाई देती है वो आपको नहीं सुनवा पा रही है। फिलहाल सुरीला सफर कार्यक्रम का अब वक्त खत्म हो चला है। इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार।

सभी साथियों को सलमा का सप्रेम नमस्कार। कोटि कोटि कंठों की भाषा, जन जन की अभिलाषा, हिंदी है पहचान हमारी, हिंदी हम सबकी परिभाषा। आज संसार में करीब 7,000 भाषाएं और अनगिनत बोलियां हैं, जिसमें हिंदी संसार की दूसरी बड़ी भाषा है जिसका उपयोग हम सब करते हैं। हिंदी अपने विपुल वैभव और समृद्ध शब्दकोश के कारण राजभाषा के पद पर सुशोभित है। इसमें अपनेपन की सुगंध, सरलता और मधुरता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। साथियों, जयशंकर प्रसाद का हिंदी भाषा और साहित्य में अतुलनीय योगदान है। उन्होंने हिंदी को किताबी रूप से मुक्त कर आम आदमी की भाषा बनाया। आइए सुनते हैं जयशंकर प्रसाद की लिखी एक रचना।

भाषा केवल शब्दों का समूह नहीं होती, वो हमारी भावनाओं की आवाज होती है। किसी भाषा का विस्तार तभी होता है जब वो लोगों के दिलों तक पहुंचती है। हिंदी भी ऐसी ही भाषा है, सरल, सहज और अपनापन लिए हुए। देश में बोली जाने वाली अनेक भाषाओं और बोलियों के बीच हिंदी संवाद का एक सुंदर सेतु बनकर सामने आती है, और जब कोई भाषा सहजता से हमारे मन की बात कह देती है तो वो अपनी सी लगती है। दिलों को जोड़ने वाली सरल भाषा हिंदी का प्रचार प्रसार किसी दूसरी भाषा को पीछे करना नहीं, बल्कि भारतीय भाषाओं की समृद्ध परंपरा के साथ हिंदी को भी आगे बढ़ाना है। भारत अनेकताओं का देश है, यहाँ भाषाएं, बोलियां, पहनावे अलग अलग हैं, लेकिन इन विविधताओं के बीच एकता की जो डोर हमें बांधती है उसमें भाषाओं की भूमिका बहुत अहम है। हिंदी ने देश के अलग अलग हिस्सों के लोगों को एक दूसरे से संवाद करने का अवसर दिया है। ये संवाद आगे चलकर अपनापन बनता है और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करता है। साथियों, अमृता प्रीतम की प्रसिद्ध कविता अंबर की एक पाक सुराही उनकी अत्यंत भावपूर्ण और रोमानी रचनाओं में से एक है। तो आइए सुनते हैं यही सुंदर गीत।

0: हिंदी को संविधान ने राजभाषा के रूप में स्थान दिया है। साथ ही भारत की हर भाषा हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। हिंदी का सम्मान तभी पूरा होगा जब हम भारत की सभी भाषाओं का सम्मान करें, क्योंकि देश की असली सुंदरता यही तो है, अनेक स्वर लेकिन भावना एक। हिंदी की सबसे बड़ी खूबसूरती उसकी सहजता है। उसमें संस्कृत की गरिमा, उर्दू की चाशनी, लोक भाषाओं की मिट्टी की खुशबू और बोलचाल की आत्मीयता है। यही कारण है कि हिंदी में प्रेम भी बड़ी सुंदरता से व्यक्त होता है और जीवन दर्शन भी। हिंदी को केवल बोलने की भाषा नहीं बल्कि जोड़ने, समझने और दिल से दिल तक पहुंचने वाली भाषा बनाएं। हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा का एक विशेष स्थान है। आइए सुनते हैं उनकी एक रचना।
1: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?

हिंदी की सरलता को अपनाएं, उसकी सुंदरता को महसूस करें और हिंदी भाषा के माध्यम से भारत की एकता के स्वर को और मधुर बनाएं। अब आज की त्रिवेणी होती है संपन्न। अब दीजिए सलमा को आज्ञा। नमस्कार।

0: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
1: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
0: हाँ।
1: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
0: हाँ।
1: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
0: हाँ? पता नहीं।
1: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
3: मेरा क्रेडिट।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। ब्रिक्स नेताओं ने ऊर्जा सुरक्षा को आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा की महत्वपूर्ण नींव बताया। प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों को आर्थिक या राजनीतिक दबाव के साधन के रूप में इस्तेमाल करने पर आगाह किया। रक्षा मंत्रालय ने कहा, देश की उत्तरी सीमा पर वर्ष 2025 में चीनी सेना की तैनाती में उल्लेखनीय कमी देखी गई। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति स्थिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, भारत की भाषाई विविधता अनेकता के बीच एकता को मजबूत करती है। गृहमंत्री ने हिंदी दिवस की शुभकामनाएं भी दी। गुजरात के अनेक जिलों में आज आंधी तूफान के साथ तेज बारिश का अनुमान। देश भर में आज गणेश चतुर्थी पर श्रद्धा और हर्षोल्लास का माहौल। और अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अमेरिका के बेन शेल्टन को हराकर

0: पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स नेताओं ने कहा है कि ऊर्जा सुरक्षा, सामाजिक तथा आर्थिक विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा और सभी देशों के कल्याण की महत्वपूर्ण नींव है। नई दिल्ली में आयोजित दो दिन के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान सदस्य देशों ने ऊर्जा बाजारों में स्थिरता सुनिश्चित करके और विभिन्न स्रोतों के जरिए ऊर्जा के निर्बाध प्रवाह को बरकरार रखने तथा महत्वपूर्ण ऊर्जा प्रतिष्ठान को सुरक्षित रखकर ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया। सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आगाह किया कि प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों को आर्थिक या राजनीतिक दबाव के साधन के रूप में इस्तेमाल करने से प्रगति में बाधा आ सकती है। एक रिपोर्ट।
1: दो दिनों तक चले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास पर केंद्रित रहा। भारत ने अपनी अध्यक्षता के दौरान लोगों के विकास और ग्लोबल साउथ के हितों को विशेष महत्व दिया। इस सम्मेलन की सबसे बड़ी उपलब्धि सम्मेलन के पहले ही दिन सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाना था। पश्चिम एशिया की स्थिति पर ब्रिक्स नेताओं ने सभी पक्षों से अधिकतम संयम बरतने, बातचीत और कूटनीति के माध्यम से समस्या का समाधान करने की अपील की। वहीं आम लोगों और नागरिक सुविधाओं की सुरक्षा की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया। इसके अलावा सभी नेताओं ने हर तरह के आतंकवाद की कड़ी निंदा की और आतंकवाद के खिलाफ शून्य सहनशीलता की नीति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। वहीं संक्रामक बीमारियों की रोकथाम और उनसे निपटने के लिए ब्रिक्स इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाने पर भी सहमति बनी। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि सम्मेलन की सफलता ने वैश्विक मंच पर भारत की मजबूत छाप छोड़ी है। श्री सिंह ने कहा कि ऐतिहासिक नई दिल्ली घोषणा पत्र भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव का प्रमाण है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनॉम घेब्रेयेसस ने कहा है कि इस वर्ष ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय सीधे तौर पर वैश्विक स्वास्थ्य से जुड़ा था। उन्होंने देशों से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा निगरानी, चेतावनी प्रणाली और स्थानीय उत्पादन को मजबूत करने का आग्रह किया। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने त्रिक्कुरल के प्रचार प्रसार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की है। उन्होंने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को तिरुक्कुरल के रूसी अनुवाद की प्रति भेंट करने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद भी दिया। विदेश मंत्रालय ने 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन में सहयोग के लिए केंद्र सरकार के सभी विभागों और एजेंसियों का आभार व्यक्त किया है। मंत्रालय ने उन सभी राज्य सरकारों का भी धन्यवाद किया जिन्होंने ब्रिक्स की विभिन्न बैठकों की मेजबानी की। उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन का आयोजन जटिल कार्य था जिसके लिए सरकार और देश के सभी स्तरों पर समन्वित प्रयास जरूरी थे। ये सम्मेलन कल नई दिल्ली में सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि सेना के अथक प्रयासों के चलते जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। रक्षा मंत्रालय ने अपनी नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 में कहा है कि इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप हिंसा में उल्लेखनीय कमी आई है, विरोध प्रदर्शनों में भी गिरावट आई है और पत्थरबाजी की कोई घटना नहीं हुई है। रिपोर्ट में चीन के साथ समग्र स्थिति पर भी प्रकाश डाला गया है। वर्ष 2025 में उत्तरी सीमाओं के सामने चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी बलों की तैनाती में उल्लेखनीय कमी देखी गई। वास्तविक नियंत्रण रेखा LSC और पारंपरिक प्रशिक्षण क्षेत्रों में 10 संयुक्त शस्त्र ब्रिगेड के आकार के बल तैनात किए गए हैं। भारत और चीन के बीच राजनीतिक, राजनयिक और सैन्य स्तर पर द्विपक्षीय बातचीत से उत्तरी सीमाओं पर सकारात्मक विकास हुआ है जिससे स्थिरता आई है। बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने कहा है कि उनका देश भारत के साथ संबंधों को द्विपक्षीय बातचीत के जरिए आगे बढ़ाना चाहता है। ढाका में उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को भारत के साथ आपसी हितों के आधार पर नए सिरे से काम करना चाहिए। भारत बांग्लादेश सीमा से जुड़े हाल के मामलों पर श्री कबीर ने कहा कि बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय कानून, सीमा संबंधी नियमों और द्विपक्षीय समझौतों के तहत कूटनीतिक बातचीत से मुद्दों का समाधान करेगा। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज महाराष्ट्र के नवी मुंबई में छठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के दौरान राजभाषा गौरव और

0: बताया।
1: वंदे मातरम की उद्घोषणा के साथ न केवल आजादी की उत्कंठता को, आजादी प्राप्त करने की तीव्र भावना को जागृत किया, इसके साथ साथ भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की नींव डालने का काम भी बंकिम चंद्र जी ने किया था। आजादी के बाद भी इसको पूर्ण स्वरूप से स्वीकार करते करते 80 साल हो गए। नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले जिन्होंने वंदे मातरम को फिर से एक बार पूर्ण स्वरूप गौरव के साथ सरकारी समारोह में गाने का काम किया।
2: दो दिन के अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग की ओर से नवी मुंबई में किया जा रहा है। इसका उद्देश्य हिंदी और महाराष्ट्र के समृद्ध भाषाई, सांस्कृतिक तथा साहित्यिक परंपराओं के बीच संबंध को उजागर करना है। सम्मेलन में विभिन्न संस्थानों, संगठनों, बैंकों और मंत्रालयों की ओर से प्रदर्शनी भी लगाई गई है। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। आज हिंदी दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है और 52 करोड़ से ज्यादा लोगों की पहली भाषा है।
3: हिंदी दिवस वो दिन है जब हम सिर्फ एक भाषा का उत्सव नहीं मनाते, बल्कि उस भाव को नमन करते हैं जो हमें शब्दों के माध्यम से एक दूसरे से जोड़ता है। संत कबीर ने भी कहा है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हूँ शीतल होए। वाणी केवल संवाद का माध्यम नहीं बल्कि हमारे संस्कारों की भी पहचान है। हिंदी ने सदियों से भावनाओं को शब्द दिए हैं। भाषा का वास्तविक गौरव तभी है जब वो ज्ञान को सबके लिए सहज बनाए और समाज को जोड़े। इसीलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी कहा है कि निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को सूल। इस हिंदी दिवस पर आइए हिंदी को केवल सिर्फ एक दिन के रूप में न याद करें बल्कि इसे बोलें, पढ़ें, लिखें और आगे बढ़ाएं। साथ ही दूसरी भाषाओं का भी सम्मान करें क्योंकि भाषा में जितनी स्वीकार्यता होगी वो उतनी ही आगे बढ़ेगी। आकाशवाणी की ओर से हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई।
2: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हिंदी दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि भारत की संस्कृति, सभ्यता और जीवन मूल्यों की सशक्त अभिव्यक्ति है। सरकार ने कहा है कि वर्ष 2020 के बाद से 9 राज्य में 147 कोयला खंडों की नीलामी की गई है। कोयला मंत्रालय ने बताया है कि इससे लगभग 47,500 करोड़ रुपए का राजस्व और 4,90,000 नौकरियां सृजित होने का अनुमान है। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले वित्त वर्ष में आवंटित वाणिज्यिक खदानों से लगभग 3,090 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था। भारत के विद्युत मंत्रालय ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण को 13 सितंबर 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली निर्यात करने की मंजूरी दे दी है। हाल ही में आई बाढ़ से नेपाल के जल विद्युत अवसंरचना को भारी नुकसान पहुंचा है। इससे नेपाल के घरेलू बिजली उत्पादन क्षमता में कमी आई है और बिजली की अतिरिक्त आवश्यकता उत्पन्न हुई है। राजस्थान में 309 शहरी स्थानीय निकायों के लिए हुए चुनावों की वोटों की गिनती जारी है। अब तक मिले रुझानों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है। राज्य के 10 नगर निगमों में से भाजपा जयपुर, अलवर, भीलवाड़ा और उदयपुर सहित 6 में आगे है, जबकि कांग्रेस पाली और बीकानेर में बढ़त बनाए हुए है। भरतपुर में निर्दलीय उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। पश्चिम बंगाल सरकार भूमि मालिकों की जानकारी के बिना किए जाने वाले फर्जी भूमि पंजीकरणों को रोकने के लिए एक प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली शुरू कर रही है। यह संपत्ति पंजीकरण को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम है। केंद्रीय विद्युत और आवास तथा शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल G20 ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए अमेरिका पहुंच गए हैं। ऊर्जा प्रचुरता पर G20 मंत्री स्तरीय बैठक 14 से 16 सितंबर तक आयोजित की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। गुजरात के अनेक जिलों में आज तेज बारिश और आंधी तूफान की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। हमारे संवाददाता के

0: रिपोर्ट।
1: पोरबंदर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, नवसारी और वलसाड़ इन पांच तटीय और अत्यधिक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं कच्छ, जामनगर, देवभूमि द्वारका, राजकोट, मोरबी, सुरेंद्रनगर, बोटाद, अमरेली, भावनगर और सूरत समेत 10 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट प्रभावी है। इन दौरान 41 से 61 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई गई है। वहीं राज्य में मानसून की नई बारिश से फसलों को संजीवनी मिली है, जिससे किसानों में खुशी की लहर छाई है। राज्य के 35 बांध अपनी पूरी क्षमता से भरने के कारण हाई अलर्ट पर है। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
2: मौसम विभाग ने कल तक हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पूर्वी राजस्थान, ओडिशा और बिहार में भी तेज बारिश की आशंका व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में अगले दो दिन तक बारिश जारी रह सकती है। देश भर में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है, जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में भगवान गणेश की पूजा की।
3: गणेश चतुर्थी की पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। भगवान श्री गणेश सबके जीवन में हमेशा शुभ करें, हर व्यक्ति के जीवन में खुशी, उत्साह, उत्सव रहे, इसकी कामना करता हूँ। भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद बना रहे।
2: गणेश चतुर्थी की वजह से आज घरेलू शेयर बाजार बंद हैं। कमोडिटी बाजार में आज सुबह के सत्र में कोई कामकाज नहीं हुआ, लेकिन शाम 5 बजे से कारोबार फिर शुरू हो जाएगा। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अमरीकी ओपन पुरुष सिंगल्स खिताब जीत लिया है। फाइनल में ज्वेरेव ने अमरीका के बेन शेल्टन को हराया। ये 2026 में ज्वेरेव का दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। इससे पहले उन्होंने जून में फ्रेंच ओपन का खिताब जीता था। भारत ने T20 महिला एशिया कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में कल भारतीय टीम ने श्रीलंका को 72 रन से हराकर 8वीं बार एशिया कप अपने नाम किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स नेताओं ने ऊर्जा सुरक्षा को आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा की महत्वपूर्ण नींव बताया। प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों को आर्थिक या राजनीतिक दबाव के साधन के रूप में इस्तेमाल करने पर आगाह किया। रक्षा मंत्रालय ने कहा, देश की उत्तरी सीमा पर वर्ष 2025 में चीनी सेना की तैनाती में उल्लेखनीय कमी देखी गई। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति स्थिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, भारत की भाषाई विविधता अनेकता के बीच एकता को मजबूत करती है। गृहमंत्री ने हिंदी दिवस की शुभकामनाएं भी दी। गुजरात के अनेक जिलों में आज आंधी तूफान के साथ तेज बारिश का अनुमान और देश भर में आज गणेश चतुर्थी पर श्रद्धा और हर्षोल्लास का माहौल। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: हम विविध भारती से बोल रहे हैं। ये है राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है।

0: शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में अभी आपने हसरत जयपुरी का लिखा गीत सुना। स्वर मोहम्मद रफी का था, फिल्म आरजू के लिए। यह आवाज लता मंगेशकर की, गीतकार हसरत जयपुरी, संगीत शंकर जयकिशन का और फिल्म का नाम है तुमसे अच्छा कौन है।
1: मैं आंखें ना डालो मुझे कुछ होता है, आंखों में आंखें ना डालो मुझे कुछ होता है, बाहों में बाहें ना डालो मुझे कुछ होता है, बाहों में बाहें ना डालो मुझे कुछ होता है। आंखों में आंखें ना डालो मुझे कुछ होता है, आंखों में आंखें ना डालो मुझे कुछ।

0: भी कुछ होता है, आंखों में आंखें ना डालो, मुझे कुछ होता है। आंखों में आंखें ना डालो, मुझे कुछ होता है। आंखों में आंखें ना डालो, मुझे कुछ होता है।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गटले
1: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी ना कोई संदेश।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में हम आपको शैलेंद्र का लिखा गीत सुनवा रहे हैं। फिल्म का नाम संगम, आवाज मुकेश की।

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
0: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
0: बिल्कुल। वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला गीत राजा मेहदी अली खां का लिखा हुआ, संगीत में डाला है मदन मोहन ने, आवाज लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम है आपकी परछाइयां।

0: होगी लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर।
1: सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन।
0: सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
2: तो कुदरत को जिसको बनाना होता ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

कार्यक्रम का अगला गाना मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म आरती से हमने लिया है। इसे मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा है और धुन रोशन की है।

सदाबहार नगमी कार्यक्रम का आप सुनिए ये आखिरी गीत। शंकर जयकिशन का संगीत है, शैलेंद्र के बोल हैं, मोहम्मद रफी की आवाज, फिल्म का नाम है एन इवनिंग इन पेरिस।

0: बन के रहेगा।
1: इस गाने के साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज का ये सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ।

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों को सभी सहेलियों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार और दीपा आपको भी नमस्कार और बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाइयां।
2: जी बिल्कुल, आपकी शुभकामनाएं स्वीकारते हैं और अपनी सभी सखियों को, श्रोता भाइयों को और चंचल आपको भी नमस्कार, हेल्दी नमस्कार। हाँ। और बहुत सारी शुभकामनाएं क्योंकि बहुत खास दिन है आज।
1: बिल्कुल, मुझे इंतजार था कि आपका हेल्दी नमस्कार क्यों नहीं आया।
2: वो कैसे छूट सकता है, वो तो सबसे ज्यादा जरूरी है। सब चीज चलती रहेंगी, मतलब हर चीज, परिस्थितियां आएंगी जाएंगी, कभी खुशी वाले दिन होंगे जैसे आज का दिन है।
1: हाँ।
2: त्योहार आएंगे, सब कुछ होगा, लेकिन
1: और इनमें सेहत बड़ी जरूरी है, इसीलिए आपके हेल्दी नमस्कार का मुझे हमेशा इंतजार रहता है।
2: चलिए,
1: तो चलिए विषय बताते हैं आज के। आज कथा सुधा में हमारी सखियां और सखा सुनेंगे कहानी बड़े भाई साहब, इसका पहला भाग
2: जी।
1: इसके अलावा आज प्रादेशिक व्यंजनों में हम कश्मीरी व्यंजन की बात करेंगे, नदरी यखनू यानी कमल ककड़ी, उसे कश्मीरी भाषा में नदरी यखनी नदरू यखनी कहा जाता है। तो इससे क्या क्या बन सकता है, इसके क्या क्या व्यंजन बनते हैं, हमारी सखियां हमारे साथ जरूर साझा करेंगी। और खुशी का दिन है भाई, स्पेशल दिन है, खास दिन है, वो क्या है ये आप बताइए।
2: देखिए आज है हिंदी दिवस। और सुबह से हमारे सभी श्रोता सुन भी रहे हैं कुछ खास हिंदी के, हिंदी से, शुद्ध हिंदी से भरपूर वाले शब्दों से भरपूर वाले गीत हम भी यहाँ पर कुछ आपके लिए प्रस्तुत करेंगे और जानेंगे कि क्या इसकी विशेषता है। और साथ में और भी एक खास बात है जो सारी दुनिया,
1: भाई पूरा देश
2: हाँ रहा है,
1: क्योंकि आज बहुत खास दिन है ना दीपा, और ये मेहमान तो हम सबके घर में आते हैं, लेकिन आज जो आने वाले हैं वो सबसे खास मेहमान है, क्योंकि वो है विघ्नहर्ता मंगल मूर्ति, हमारे गणपति बप्पा, आज उनके आगमन का दिन है।
2: बिल्कुल, और चंचल सच कहूं तो गणपति उत्सव सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये वो पल है जब हम अपने घर में सिर्फ बप्पा की मूर्ति नहीं लाते हैं, हम लाते हैं खुशहाली, तो वो जो हंसी पूरे साल घर में दी रहती है, हम लाते हैं मंगल कि हमारा घर, हमारे अपने, हमारे रहें, सलामत रहें, गणपति उत्सव में हम खुशहाली और मंगल कामनाएं घर पर लेकर आते हैं।
1: बिल्कुल, महाराष्ट्र में जो एक रीति रिवाज जिसे हम कहें कि सब लोग छोटी छोटी सी मूर्तियां अपने घर में लेकर आते हैं और बप्पा आते हैं, तो सिर्फ उनकी एक मूर्ति नहीं आती है, घर में खुशियों की रोशनी आती है, भरोसा आता है कि अब जो होगा सब ठीक होगा, बप्पा सारी, कहते हैं ना कि तकलीफों को, परेशानियों को हर लेंगे। आंगन में रोशनी आती है, दिल में एक अजीब सा सुकून आ जाता है बप्पा के आने से,
2: ये बात।
1: बच्चों की जो हंसी है वो थोड़ी तेज हो जाती है, और फिर भाई बच्चों की हंसी या खुशी है, या हम सब बड़ों की भी, वो इसलिए भी तेज होती है कि रसोई से मोदक की खुशबू आने लगती है, और ये कह सकते हैं कि एक खासियत है इस पर्व की और असली रोशनी भी है। तो हम सभी बोले ना, दिल से सब मिलकर बोलते हैं ना, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया।
2: और बप्पा के आने का मतलब सिर्फ दिए या लाइटें, मतलब कि घर में रोशनी है, सिर्फ ये नहीं, जब मन रोशन होता है ना चंचल, तब हमारी पुरानी नाराजगी भी हम भूल ही जाते हैं कहीं, है ना, सही बात। और जब पूरा परिवार एक साथ आरती में खड़ा होता है या हमारे सोसाइटी में जब सब एक साथ खड़े
1: हाँ।
2: होते हैं, तो सच में ऐसा लगता है पप्पा हमें यही सिखाने आए हैं कि शुरुआत करने से कभी मत डरो और हर नया काम शुभ है अगर आपकी नीयत साफ है।
1: तो बस बप्पा के आज का जो दिन है इसमें हमने घर को तो खूब सजाया ही है, क्यों ना अपने मन का भी कोना हम थोड़ा सा साफ कर लें, उसे सजा लें प्रेम की भावना से, अच्छाई से, और पुराने जितने भी मतभेद हैं उसे भुलाकर हम भी इस खुशी के उत्सव में शामिल हो जाएं। और महाराष्ट्र में तो 11 दिन तक ये उत्सव चलने वाला है, हम भी शामिल होते हैं।

0: पे तो ये तो हुआ गणपति उत्सव के रंग में डूबा हुआ गीत, और अब बारी है कार्यक्रम में कथा सुधा की। तो सुनते हैं कहानी।
1: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
2: कथा सुधा में आइए आज सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी बड़े भाई साहब।

0: सुनते हैं इस कहानी का पहला भाग।
1: मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वो जल्दबाजी से काम लेना पसंद ना करते थे। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बने। मैं छोटा था, वो बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की, वो 14 साल के थे। उन्हें मेरी तंबीह और निगरानी का पूरा जन्मसिद्ध अधिकार था, और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं। वो स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हरदम किताब खोले बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, कभी किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द का वाक्य 10-20 बार लिख डालते, कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षर से नकल करते, कभी ऐसी शब्द रचना करते जिनमें ना कोई अर्थ होता ना कोई सामंजस्य। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने ये इबारत देखी, स्पेशल, अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल भाई भाई, राधे श्याम, श्रीयुत राधे श्याम, 1 घंटे तक। इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा और उनसे पूछने का साहस ना हुआ। वो 9वीं जमात में थे और मैं 5वीं में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात थी। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल न लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता और कभी कंकरियां उछालता, कभी कागज की तितलियां उड़ाता, और कभी कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या। कभी 4 दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, कभी फाटक पर वार उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का रौद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते। उनका पहला सवाल होता, कहां थे? हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में पूछा जाता था, और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। न जाने मुंह से यह बात क्यों ना निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है, और भाई साहब के लिए इसके सिवा और कोई इलाज न था कि रोष मिश्रित शब्दों में मेरा सत्कार करें।
2: अरे इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ ना आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले। नहीं, एरा गैरा नथू खैरा सभी अंग्रेजी में विद्वान हो जाते हैं। यहां रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती हैं और खून जलाना पड़ता है, तब कहीं ये विद्या आती है। और आती क्या है, हाँ कहने को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। और मैं कहता हूं तुम कितने घोंगा हो भाई कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। मैं कितनी मेहनत करता हूं, तुम अपनी आंखों से देखते हो मगर नहीं देखते जो तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखने जाते देखा है? रोज क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं, मैं पास नहीं फटकता, हमेशा पढ़ता रहा हूं। उस पर भी एक एक दर्जे में 2-2, 3-3 साल पढ़ा रहता हूं। फिर तुम कैसे आशा कर सकते हो कि तुम यूं खेल कूद में वक्त गंवाकर पास हो जाओगे? मुझे तो 2-3 साल लगते हैं। तुम उम्र भर इसी दर्जे में पड़े सड़ते रहोगे। अगर तुम्हें इस तरह उम्र गवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मजे से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाढ़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो?

0: मैं ये लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। जवाब ही क्या था, अपराध तो मैंने किया, लताड़ कौन सा है। भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे, ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे सूक्ति बाण चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत छूट जाती। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में न पाता था और उस निराशा में जरा देर के लिए मैं सोचने लगता, क्यों ना घर चला जाऊं, जो काम मेरे बूते के बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी जिंदगी खराब करूं। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन उतनी मेहनत से मुझे तो चक्कर आ जाता था। लेकिन घंटे दो घंटे बाद निराशा के बादल फट जाते और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। छटपट एक टाइम टेबल बना डालता, बिना पहले से नक्शा बनाए, बिना कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू करूं। टाइम टेबल में खेलकूद की मद बिल्कुल उड़ जाती। प्रातःकाल उठना, 6 बजे हाथ मुंह धोकर नाश्ता करके पढ़ने बैठ जाना, 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब, 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन और स्कूल। 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम, 4 से 5 तक भूगोल, 5 से 6 तक ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने टहलना, 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कॉम्पोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय, फिर विश्राम। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है, उस पर अमल करना दूसरी बात। पहले ही दिन से उसकी अवहेलना शुरू हो जाती। मैदान की वो सुखद हरियाली, हवा के वो हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की उछल कूद, कबड्डी के वो दांव घात, वॉलीबॉल की वो तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती और वहां जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। वो जानलेवा टाइम टेबल, वो आंख फोड़ पुस्तकें, किसी की याद न रहती और फिर भाई साहब को नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता। मैं उनके साए से भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता, कमरे में इस तरह दबे पांव आता कि उन्हें खबर ना हो। उनकी नजर मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। हमेशा सिर पर नंगी तलवार सी लटकती मालूम होती, फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच में भी आदमी मोह और माया के जकड़ा रहता है, मैं फटकार और घुड़कियां खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार न कर सकता। सालाना इम्तिहान हुआ, भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया और दर्जे में अव्वल आया। मेरे और उनके बीच केवल 2 साल का अंतर रह गया। जी में आया भाई साहब को आड़े हाथों लूं, आपकी वो घोर तपस्या कहां गई, मुझे देखिए, मजे से खेलता भी रहा और दर्जे में प्रथम भी हूं। लेकिन वो इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा। हां, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्माभिमान भी बढ़ा, भाई साहब का वो रोब मुझ पर न रहा। आजादी से खेल कूद में शरीक होने लगा, दिल मजबूत था। अगर उन्होंने फिर मेरी फजीहत की तो साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया, मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। जवाब से यह हेकड़ी जताने का साहस न होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वो आतंक अब मुझ पर नहीं है। भाई साहब ने इसे भांप लिया, उनकी ससहमत बुद्धि बड़ी तीव्र थी और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े।
1: देखता हूं इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए तो तुम्हें दिमाग हो गया, मगर भाईजान घमंड तो बड़े बड़ों का नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती है। इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा, उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया या यूं ही पढ़ गए, महज इम्तिहान पास कर

0: के दास थे, मगर उसका अंत क्या हुआ? घमंड ने उसका नामो निशान तक मिटा दिया, कोई उसे एक चुल्लू पानी देने वाला भी ना बचा। आदमी जो चाहे करे, पर अभिमान न करे, इतराए नहीं, अभिमान किया और दीन दुनिया से गया। शैतान का हाल भी पढ़ा ही होगा, उसे यह अनुमान था कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। अंत में यह हुआ कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। शाहरूम ने भी एक बार अहंकार किया था, भीख मांग मांग कर मर गया। तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया, तब तो तुम आगे बढ़ चुके। ये समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से पास नहीं हुए हो। अंधे के हाथ बटेर लग गई, मगर बटेर केवल एक बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं। कभी कभी गुल्ली डंडे में भी अंधा चोट निशान पड़ जाता है, उससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी वो है जिसका कोई निशान खाली न जाए। मेरे फेल होने पर न जाओ, मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आएगा, जब अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं, आठ आठ हेनरी हो गुजरे हैं। कौन सा कांड किस हेनरी के समय हुआ, क्या ये याद कर लेना आसान समझते हो? हेनरी सातवें की जगह हेनरी आठवां लिखा और सब नंबर गायब, सफाचट, सिर्फ भी ना मिलेगा, सिफर भी। हो किस ख्याल में? दर्जनों तो जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम, कौड़ियों चार्ल्स, दिमाग चक्कर खाने लगता है, आंधी रोग हो जाता है, इन अभागों के नाम भी ना जुड़ते। एक ही नाम के पीछे दोयम, तेयम, चहारम, पंचम लगाते चले गए। मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता, और ज्योमेट्री तो बस खुदा की पनह, अ ब ज की जगह अ ज ब लिख दिया और सारे नंबर कट गए। कोई इन निर्दयी मुमतहिनों से नहीं पूछता कि आखिर अ ब ज और अ ज ब में क्या फर्क है, और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हो? दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या रखा है? मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह, वो तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है। चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डालें, और इसी रटंत का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। और आखिर इन बेसिरपिर की बातों के पढ़ने से क्या फायदा? इस रेखा पर वो लंब गिरा तो आधार लंब से दुगना होगा, पूछिए इससे प्रयोजन? दुगना नहीं चौगुना हो जाए या आधा ही रहे मेरी बला से। लेकिन परीक्षा में पास होना तो ये सब खुराफात याद रखनी पड़ेगी। कह दिया समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। अब कॉपी सामने खोले, कलम हाथ में लिए, उसके नाम को रोइए। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी है, इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है और उसके कारोबार में उन्नति होती है। और जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखे? जो बात एक वाक्य में कही जा सके उसे 4 पन्ने में लिखने की जरूरत, मैं तो इसे हिमाकत समझता हूं। यह तो समय की किफायत नहीं बल्कि दुरुपयोग है, व्यर्थ में किसी बात को ठूंस दिया। हम जो चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना हो चटपट कह दे और अपनी राह ले, मगर नहीं, आपके पन्ने 4 रंगने पड़ेंगे चाहे जैसे लिखिए, और पन्ने भी पूरे फुल स्केप आकार के। ये छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है? उल्टी बात या नहीं? मेरे दर्जे में आओगे लाला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे, तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। इस दर्जे में अव्वल आ गए हो तो जमीन पर पांव नहीं रखते, इसलिए मेरा कहना मानिए, 1 लाख फेल हो गया हूं लेकिन तुमसे बड़ा हूं, संसार का मुझे तुमसे ज्यादा अनुभव है, जो कुछ कहता हूं उसे गिरह बांधिए, नहीं पछताएंगे।
1: स्कूल का समय निकट था, नहीं ईश्वर जाने ये उपदेश

0: देशमाला कब समाप्त होती। भोजन आज मुझे निस्वाद सा लग रहा था। जब पास होने पर भी यह तिरस्कार हो रहा है तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले लिए जाएं। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था उसने मुझे भयभीत कर दिया। कैसे स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा यही ताज्जुब है।
1: कथा सुधा में आज आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी बड़े भाई साहब। आज आपने सुना इस कहानी का पहला भाग। पात्र परिचय इस प्रकार है: छोटे भाई जयंत पात्रिकर, बड़े भाई साहब जी श्याम, संकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी, प्रस्तुति अनु

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गटिले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
2: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
3: चिट्ठी ना कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: इस संदेश से पहले सखियों आपने कथा सुधा में सुना बड़े भाई साहब की पहली कड़ी और अब एक अंतराल का समय हो चुका है।

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
2: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: बहुत ही खूबसूरत गीत और वैसे ही खूबसूरत संदेश भी हमें मिले हैं अपनी
1: बहुत सारे
0: सखी।
1: संदेश, और पुनः हम सभी अपनी सखियों को, श्रोता भाइयों को गणेश चतुर्थी और ये आने वाले 10 दिनों तक जो आप हर्षोल्लास के साथ मनाने वाले हैं इस त्योहार को, उसके लिए शुभकामनाएं देते हैं। और पहला संदेश हम पढ़ रहे हैं कि गणपति की स्थापना केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि घर आंगन में खुशियों, शांति और समृद्धि के आगमन का शुभ अवसर है। बप्पा के स्वागत के साथ वातावरण भक्ति और उल्लास से भर उठता है, और साथ में ये भी लिखते हैं कि उनके आगमन से परिवार में प्रेम, एक उत्साह की नई रोशनी फैलती है। और आइए श्रद्धा और विश्वास का हम स्वागत करें इसी भावनाओं के साथ। बहुत सारे संदेश
0: हाँ, और हमारे एक श्रोता भाई ने या सखी है, उन्होंने ये भी लिखा है कि महाराष्ट्र में ये उत्सव बड़े हर्षोल्लास से, जोरों शोरों से और बहुत बहुत विशाल तरीके से मनाया जाता है। बड़े बड़े पंडालों में गणपति की मूर्ति स्थापित की जाती है, लोग अपने परिवारों के साथ इस मंडप में भी जाते हैं, दर्शन करते हैं और पूरे परिवार के लिए मंगल कामनाएं मांगते हैं। और हमारे संदेश में हमारे शोधा बहन लिखती हैं कि हमारे बेटे बहू ने भी गणपति महाराज की स्थापना की है, गणपति भगवान सभी की मनोकामना पूरी करें।
1: और इसी की बातों के साथ एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि बहुत जरूरी है कि हम सब इको फ्रेंडली गणपति का इस्तेमाल करें, और जितना हो सके इस बार अपने घर को इको फ्रेंडली अपने घर पर लेकर आए उनकी मूर्ति, और उसी तरह से सजावट भी करें। तो भाई ये बात पे ध्यान रखने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यकता है।
0: तो आपने बात पर ध्यान देने की बात की, मेरा ध्यान गया एक ऐसे संदेश पर जिसमें लिखा गया कि पिछले कई सालों से गणेश चतुर्थी के दिन हम घर पट्टी लाकर गणपति जी की मूर्ति बनाते हैं।
1: क्या बात है।
0: ये अजमेर के श्रोता भाई हमारे श्रोता हैं, और इन्होंने बताया है कि पूजा के रूम में उनको विराजमान करते हैं, 11 दिनों तक उनकी पूजा की जाती है, मोदक का भोग लगाया जाता है और पूरे विधि विधान से अनंत चतुर्दशी के दिन उनका हम घर में ही अपने बगीचे में विसर्जन भी करते हैं।
1: कितनी अच्छी बात है। देखिए हमारे ही बीच में अगर एक कोई बात समझा रहा है तो एक और हमारे घर सखी है या श्रोता है जो हमें उस बात को करके भी दिखा रहे हैं। तो अपना परिवार इसी तरह से सखी सहेली का समृद्ध परिवार है।
0: और लगभग ये मिली जुली बात हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखी है कि घर में हर्षोल्लास का माहौल रहता है, सकारात्मकता आती है, नई ऊर्जा आती है। तो इसी ऊर्जा के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले गीत की तरफ।

0: कितने अच्छे शब्द थे इस गीत के और बहुत सुंदर हिंदी का लालित्य इसमें देखने को मिला। और आज 14 सितंबर है और ये सिर्फ एक तारीख नहीं होती दीपा कि बस कैलेंडर पे हमने जो तारीख देखी उस तरह से नहीं है, बल्कि अपनी भाषा, संस्कृति और पहचान को याद करने का भी बहुत सुंदर अवसर होता है और 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं।
1: बिल्कुल, हिंदी यानी एक ऐसी भाषा जिसमें अपनापन है, भावनाओं की गर्माहट है और दिल की बात को सहजता से कह देने की ताकत भी होती है।
0: बिल्कुल,
1: कभी ये माँ की लोरी बन जाती है और अपने कानों में उतरती है, कभी कविता बनकर मन को छू जाती है और कभी किसी कहानी के किरदारों में हमें अपना जीवन दिखाई देने लगता है, या कभी किसी गीत के बोल जैसे सीधे अपने दिल को उतर जाते हैं ना, बस कुछ ऐसी ही है ये भाषा।
0: और 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को देवनागरी लिपि में भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। इस ऐतिहासिक दिन की याद में ही हर साल 14 सितंबर के दिन को हिंदी दिवस के रूप में हम मना लेते हैं। और हिंदी बहुत खूबसूरती सिर्फ उसके इतिहास में नहीं है इसकी, बल्कि उसकी क्षमता में है जो अलग अलग लोगों को एक दूसरे से जोड़ देती है।
1: बिल्कुल, और हिंदी ने दूसरी भारतीय भाषाओं से बहुत कुछ ग्रहण भी किया है और बदले में उन्हें भी अपने शब्दों और अभिव्यक्तियों से समृद्ध किया है। यही तो हमारे देश की खूबसूरती है चंचल, कि यहाँ भाषाएं अलग हो सकती है लेकिन भावनाएं हमेशा एक दूसरे से जुड़ी रहती है।
0: और हिंदी का रिश्ता पता है हमारे फिल्मी गीतों से भी बड़ा गहरा था।
1: हाँ।
0: अभी जो हम गीत सुन रहे थे उसमें बड़ा अच्छा लालित्य था कविता का। और रेडियो पर जैसे ही कोई पुराना गाना बजता है, चाहे उसमें प्रेम हो, विरह हो, जीवन की उम्मीद हो, मतलब हर भावना को बहुत खूबसूरती से हमारे सामने परोसा जाता है और बहुत मधुर संगीत होता है। बरसों पुराने गीत जब हम सुनते हैं ना, तो हमें हमेशा अपने से लगते हैं।
1: बिल्कुल, ये बात तो
0: क्योंकि मिट्टी से जुड़े हुए लगते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और आज हिंदी सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है चंचल, दुनिया के बहुत सारे देशों में हिंदी बोली पढ़ी और समझी जाती है। इंटरनेट हो या सिनेमा, टेलीविजन या सोशल मीडिया ने हिंदी को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने में एक नई भूमिका इन सब ने निभाई है।
0: तो देखो एक कितना सुंदर संदेश हमें मिला है, हिंदी महज भारत की नहीं बल्कि दुनिया की प्रमुख भाषाओं में से एक है। हिंदी भारत की पहचान भी है और सम्मान भी है। और जो अन्य भारतीय अन्य देशों में बसे हुए हैं उनको जोड़ने का एक काम करती है। वैसे तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के तौर पर मनाया जाता है, लेकिन उन्होंने 10 जनवरी गलत तारीख लिखी है। आगे लिखते हैं कि लेकिन भारत में हिंदी दिवस को एक खास दिन तय किया गया है। भारत में 22 भाषाएं और 72,507 लिपि हैं। बहुत बड़ा एक आंकड़ा है, उन्होंने लगभग कि हम कह सकते हैं कि ऐसा है। और इतनी सारी भाषाओं की विविधता के बीच हिंदी ऐसी भाषा है जो पूरे हिंदुस्तान को जोड़ देती है।
1: ये बात तो बिल्कुल सही है। और एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि इस दिन हिंदी भाषा के सम्मान, उसके प्रचार प्रसार और राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए ये दिन समर्पित है। शिक्षण संस्थाओं में इस दिन हिंदी दिवस पर भाषण होते हैं, निबंध लेखन, वाद विवाद और कविता पाठ जैसी प्रतियोगिताएं ये आयोजित की जाती हैं संस्थानों में, और भाषा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न सम्मेलन और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जाते हैं।
0: और दीपक, कोई भी भाषा तब तक जीवित या समृद्ध रह सकती है तब तक उसे हम अपने रोजमर्रा के जीवन में सम्मान के साथ इस्तेमाल नहीं कर पाते।

0: जाते हैं। दूसरी भाषाएं सीखना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन अपनी भाषा से जुड़े रहना ये बहुत जरूरी चीज़
1: है, बहुत ज्यादा जरूरी है। हम विदेश की भी कई भाषाएं सीखते हैं क्योंकि काम काज के चलते आजकल वैसे भी जरूरत हो गई है, लेकिन बाहर जो देश के विदेश में रहते हैं हमारे परिवार के कोई जन, तो ये देखा सुना है कि वो लोग घर में हमेशा कहते हैं कि नहीं, हमारी जो भाषा है, जो हमारे घर की जो भाषा है हिंदी भाषा, वो अपने बच्चों को आना बहुत ज्यादा जरूरी है।
0: बिल्कुल, क्योंकि ये भाषा केवल शब्दों का समूह नहीं होती, हमारी स्मृतियां होती हैं और हमारे संस्कार होते हैं। और देखिए संदेश भी बड़े अच्छे अच्छे आ रहे हैं। कितनी सुंदर दो पंक्तियां लिखी हैं हमारे किसी श्रोता ने, निज भाषा उन्नत है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय की सूल। और आगे इन्होंने सभी को हिंदी दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं दी हैं, बहुत सारे संदेश हैं, लेकिन पहले एक गीत सुन लेते हैं जो इसमें भी हिंदी का बड़ा सुंदर लालित्य देखने को मिलता है।
1: चलिए

0: आमंत्रित कलाकार हैं
1: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
0: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
1: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर
0: सिर्फ विविध भारती पर।
2: तो भाई अब हम थोड़ी सी व्यंजन की बात कर लें। खाने पीने की बात हुई, मोदक की बात अलग हुई, लेकिन कुछ अलग व्यंजन भी तो होना चाहिए। और क्योंकि अभी श्रृंखला कश्मीरी व्यंजन की है तो कश्मीर में ना कमल ककड़ी बहुत होती है।
3: बहुत होती है और बहुत प्रकार से वो बनी जाती है।
2: हाँ,
3: लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं
2: मतलब इसका सूप भी बना सकते हैं, पकौड़े भी बना सकते हैं, इवन सब्जियां भी बहुत सारे तरह से लोग बनाते हैं अपने अपने तरीके से।
3: और खासतौर पर चंचल जिनको जिनके घर में प्याज और लहसुन नहीं खाया जाता है, नहीं पसंद कर रहे या किसी कारण से कुछ दिनों के लिए बंद है, तो वो नदरू यखनी बना सकते हैं
2: जी।
3: ये जो कश्मीरी का बहुत ही प्रसिद्ध व्यंजन है, ये दही की ग्रेवी में बनाया जाता है जो कि बिना प्याज लहसुन के, जैसे अभी हमने आपको बताया। क्या लेना है इसमें, 500 ग्राम आप नदरू यानी कमल ककड़ी लीजिए, दही लेना है 500 ग्राम अच्छा सा फेटा हुआ, घी या तेल ले सकते हैं 3-4 बड़े चम्मच, हींग लेना है थोड़ा सा, तेज पत्ता, बड़ी इलायची, हरी इलायची, ये सब दो तीन लौंग 4-5, दालचीनी 1 इंच का टुकड़ा, सौंठ का पाउडर लेना है छोटा सा चम्मच 1, और सौंफ पाउडर अगर आपको पसंद है तो 2 बड़े चम्मच ले लीजिए, बेसन 1 बड़ा चम्मच, दही को फटने से बचाने के लिए, जो दही को हमें फेंटना है ना तो फटे ना, इसलिए हमें उसमें डालना है। अब बनाने की विधि यूं
2: और
3: है,
2: जो भी हम सामग्री हमने बताई है अपने स्वाद के अनुसार अब इसे थोड़ा सा घटा बढ़ा सकते हैं।
3: बिल्कुल। अब सबसे पहले नदरू को साफ करना होता है क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत होती है।
2: हाँ।
3: तो इसको छील करके अच्छे से धो लीजिए और इसे तिरछा या गोल टुकड़ों में अगर काटते हैं ना तो पूरी अंदर तक की मिट्टी, जो
2: उसके छेद में अंदर मिट्टी घुस जाती है, चिकनी मिट्टी होती है,
3: चिकनी होती है, तो वो सब बाहर निकल
2: आसानी से निकल
3: जी। अब उबालना है इसे, तो कटे हुए नदरू को पानी में 10 मिनट तक उबाल लें, इसके बाद इन्हें पानी से निकालकर छान लेना है। अब एक कुकर या कढ़ाई में घी गर्म करें, इसमें हींग और सारे खड़े मसाले जो आपके घर में पसंद किए जाते हैं वो सब डाल लीजिए। फिर मसाला मिलाना है तो उबले हुए नदरू को घी में डालें और 2 मिनट तक भून लीजिए। अब इसमें सौंठ पाउडर, सौंफ पाउडर और थोड़ा सा नमक मिलाकर अच्छी तरह चला लीजिए। थोड़ा पानी डालकर कुकर की 2-3 सीटी आने तक बनाए पका लीजिए, या तब तक की जब तक की कमल ककड़ी थोड़ी नरम ना
2: हो जाए
3: जी। जो दही का मिश्रण अब तैयार करना है, 1 कटोरे में फैटा हुआ दही और बेसन को थोड़ा सा पानी मिलाकर अच्छी तरह फैट लेना ताकि कोई गांठें उसमें ना पड़े। उसके बाद ग्रेवी बनानी है तो कुकर का प्रेशर जब खत्म हो जाए तो ढक्कन खोल लीजिए और गैस को धीमा करें या चालू रखें और लगातार चलाते हुए दही का मिश्रण इसमें धीरे धीरे कढ़ाई में या कुकर में, अगर आप बना रहे हैं तो कुकर में ही डालना है, लगातार चलाते रहना है ताकि दही इसमें फटे ना। और जब ग्रेवी में उबाल आ जाए और ऊपर घी या तेल ऊपर तैरने लगे तब 5-7 मिनट तक धीमी आंच पर और पकने दीजिए, आपकी नदरू यखनी तैयार है।
2: एक और कश्मीरी व्यंजन हमारे पास आई है विधि इसकी। इसमें बताया गया है कि कमल ककड़ी एक
3: इंग्लिश में लोटस स्टेम भी बोलते
2: हैं। हाँ, और वहां की ये पारंपरिक शाकाहारी डिश है और इसे दही की ग्रेवी में पकाया जाता है अक्सर। और इसको पकाने के लिए 2 से 3 कप कटी हुई ताजी दही, 1 कप सरसों, लगभग उसी तरह की ये विधि इन्होंने बताई है। और इन्होंने बताया कि मध्यम आकार के टुकड़े काटकर उबाल लें और फिर 10 मिनट तक पानी में उबालें, जैसा कि पिछली रेसिपी में भी था, लेकिन इसमें ये बताया गया कि ये खासतौर पर घी या सरसों के तेल में से पकाया जाता है, उससे इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। और जैसा कि इसमें पहले आपने बताया कि बेसन इसलिए मिलाना है ताकि दही ना फट जाए
3: जी।
2: तो अगर कमल ककड़ी आपको बनानी है तो इन सब बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा क्योंकि हमारे पास रेसिपी सिर्फ सब्जी की आई है, आप कमल ककड़ी के बहुत स्वादिष्ट पकौड़े भी बना सकते हैं, इसका कमल ककड़ी का सूप भी बन सकता है। तो ये तो ही कमल ककड़ी के अलग अलग व्यंजन की बात।
3: कमल ककड़ी और चने की दाल, उसको मिला के दाल भी बनती है।
2: हाँ, तो अलग अलग संयोजन से अलग अलग एक स्वाद तैयार हो जाता है। इसी तरह से हमारी बात, रेसिपी, श्रोताओं के संदेश और गीतों को मिलाकर हमारे जो प्रोग्राम का जायका है वो बन जाता है। तो गीत सुन ले,
3: चलिए।

0: प्रेम पुजारी फिल्म के लिए इस गीत को गाया था किशोर कुमार ने, और इस गीत को लिखा था गोपाल दास नीरज ने। और जब मैं इस गीत को सुन रही थी ना, तो मुझे याद आया कि आज हिंदी दिवस है, और हमने भी कोशिश की कि हम कुछ ऐसे गीत बजाएं जिसमें हिंदी का बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया, ऐसा ही ये गीत था।
1: बिल्कुल
0: और गोपाल दास नीरज ने बहुत सारे गीत ऐसे लिखे हैं ना जिसमें हिंदी की इतनी सुंदर शब्द रचना है, और बाद में उन शब्द रचनाओं के, यानी कि जो भी उनके लिखे गीत थे या कविताएं थी, उन्हें इतने सुंदर तरीके से गीतों में ढाला गया ना, वो गीत आज भी यादगार बन गए
1: बिल्कुल।
0: हैं।
1: और नीरज जी के साथ और भी फहरिस्त में लंबी लंबी फहरिस्त है, जैसे कि भरत व्यास, पंडित नरेंद्र शर्मा, कवि प्रदीप, शैलेंद्र, वसंत देव, ये सारे वो गीतकार हैं जिन्होंने हमारी हिंदी फिल्मों के लिए सुंदर रचनाएं दी हैं। चंचल,
0: तो भाई इन रचनाओं को तो हमने सुना, और इतना समय नहीं कि बहुत सारी रचनाएं हम सुना सके, लेकिन कुछ चुनिंदा गीत हमने शामिल किए, और बहुत सारी बातें करते, गीत सुनते, कार्यक्रम का समय पूरा हो गया, और घड़ी की सुइयां भी इशारा कर रही हैं कि हमारे जाने का समय हो गया। तो बस लेते हैं विदा,
1: आप सभी को दीपा माहेश्वरी
0: और
1: और
0: चंचल वर्मा का
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।

0: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
1: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
1: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
1: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
2: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
3: श्रोताओं नमस्कार, सेहतनामा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। न्यूट्रिशन अर्थात पोषण, इस विषय पर आहार विशेषज्ञ और न्यूट्रिशनिस्ट अदिति प्रभु से ममता सिंह की बातचीत, और इस बातचीत की दूसरी कड़ी लेकर हम हाजिर हैं। तो चलिए सुनते हैं।
4: अदिति जी, ये जो कार्यक्रम है, हमारे बहुत सारे श्रोता सुनते हैं, ग्रामीण श्रोता भी सुनते हैं और शहरी श्रोता भी सुनते हैं। पोषण सप्ताह मनाया जाता है, तो पोषण सप्ताह आप अपने पैमाने पर भी मनाती होंगी, क्या कुछ शामिल करती हैं इसमें, किस तरह से लोगों को जोड़ पाती हैं?
5: पोषण सप्ताह सितंबर के पहले हफ्ते में मनाया जाता है, 1 से 7 तारीख के बीच में, और ये कई सालों से चल रहा है
4: जी।
5: और इस सप्ताह में हम बहुत जनहित के लिए प्रचार करते हैं, बहुत ज़्यादा रोड स्किट्स होते हैं ग्रामीण लेवल पे या आदिवासियों के लेवल पे, हम जाके वहाँ पे कैंप्स करते हैं या हेल्थ कैंप्स होते हैं सोसाइटीज़ में, ऐसे बहुत सारी चीज़ें चलती है। हर डाइटिशियन अपने तरीके से कुछ ना कुछ करती रहती है, वो चाहे अपने क्लिनिक में थोड़े से छोटे मोटे कैंप हो या कॉलेज में जाके सिखाना हो या कॉरपोरेट जॉब्स हैं जहाँ पे, वहाँ पे जाके आहार के ऊपर बातें करनी हो, ताकि लोगों को आहार के बारे में और आहार के महत्व के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले और उनको ये पता चले कि कहाँ और किसके पास जाना है सही जानकारी मिलने के लिए। ये इस चीज़ के लिए हम ये पूरा सप्ताह इस्तेमाल करते हैं। ये हम कई सालों से कर रहे हैं, मगर पिछले कई सालों से पोषण माह ज्यादा करके मनाया जाता है, जो कि सितंबर का पूरा महीना होता है। इसका मतलब अब हम एक हफ्ता नहीं, पूरा महीने भर हम कुछ करते रहते हैं, जैसे कुछ छोटा मोटा कुछ भी हो जो जनरल पॉपुलेशन या लोगों के लिए फायदेमंद हो, ये हम ज्यादा इसके ऊपर ध्यान देते हैं
4: जी। बिल्कुल, भारत सरकार की ओर से एक मुहिम चलाई जाती है, बहुत सारी कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं, क्योंकि बहुत सारा वर्ग कुपोषण का शिकार है आज भी, तो उन्हें पोषक तत्व मिले और कुपोषण से रहित अपना देश हो जाए, ये एक मुहिम है। और अब हमें बताइए कि ये जो वर्किंग वुमेन होती हैं और जो हाउसवाइफ होती हैं, तो उनके लिए किस तरह के पोषक तत्व जरूरी है, किस तरह के न्यूट्रिशन उन्हें लेने चाहिए?
5: अगर हम पोषण के बारे में बात करें और औरतों के बारे में बात करें, तो मेरी हमेशा एक बड़ी शिकायत होती है कि औरतें जो होती हैं वो सबका करने में इतनी मशरूफ हो जाती है, वो हमेशा खुद को भूल जाती है। भले आप हाउसवाइफ हैं या भले आप जॉब करते हैं, दोनों तरीके से आप बहुत ज्यादा काम करते हो
4: जी जी,
5: कोई भी किसी से कम नहीं होता। बहुत बार हमें लगता है अरे ये कुछ नहीं कर रहे, ये तो हाउसवाइफ है, इनको घर संभालना है। नहीं, अगर आप देखें कई बार हाउसवाइफ जो है पूरे दिन में इतना काम करती है, उनको अलग से वर्कआउट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती
4: जी। बिल्कुल,
5: और दोनों के लिए अपना सही वक्त पे खाना, सही मात्रा में खाना बहुत जरूरी हो जाता है
4: जी।
5: अगर आप वर्किंग हैं तो अक्सर ये दिक्कत आती है कि सुबह उठे, डब्बा बनाया तो अपना नाश्ता भूल गए, तो अपने नाश्ते का समय निकाल के फुर्सत से बैठ के नाश्ता करना जरूरी है। फिर उसके बाद आपके खाने में प्रोटीन की मात्रा, फाइबर की मात्रा सही है कि नहीं, ये देखना जरूरी है। और पूरे दिन में पानी के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। वैसे ही घर की जो औरतें हैं, जो घर संभालती हैं, उनको ये देखना बहुत जरूरी है कि क्या वो वक्त पे खा रही हैं या क्योंकि वो किचन में काम करिए बहुत बार छोटा मोटा खाया जा रहा है और उसके वजह से भी तबीयत खराब हो रही है, क्योंकि हमें चखने की तो बहुत आदत होती है। चलो ये खा लिया, वो कर लिया, वो कर लिया, इसमें दिक्कत हो जाती है।
4: जी बिल्कुल।
5: तो औरतों को अपनी सेहत का ध्यान रखना जरूरी है, उनको ये देखना जरूरी है कि क्या उनको 7 से 8 घंटे नींद मिल रही है, 2 से 3 लीटर उनका पानी दिन का जा रहा है, क्या उनका शारीरिक काम हो रहा है, जैसे चलना हो गया, जिम जाना जरूरी नहीं है बट कोई तो एक्सरसाइज होनी चाहिए, वो भले 10-15 मिनट हो मगर खुद के लिए वक्त निकालना उतना जरूरी है। और उसके अलावा सही वक्त पे खाना और संतुलित खाना, जहाँ पे वो ध्यान दे कि उनके खाने में प्रोटीन हो, फाइबर हो, आयरन युक्त जैसे मोरिंगा हो गया या फिर हलीम या अलीव के बीज हो गए या फिर अनार हो गए, ये थोड़ी सी चीजें आपको खाने में होनी चाहिए, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद ठहरता है।
4: जी, आपने कहा पानी पीना चाहिए प्रचुर मात्रा में। कुछ लोगों को देखा है पानी एक साथ गट गट गट गट पी लेते हैं, एक बोतल या 2-3 गिलास पानी, तो ये तरीका सही है? थोड़ा तरीका भी बताइए किस तरह से पीना चाहिए पानी।
5: कुछ लोग बहुत जल्दी में पानी पी लेते हैं, कुछ लोग सुबह उठ के पानी पी लेते हैं और पूरा दिन पानी नहीं पीते। हमारा शरीर इस तरीके से काम नहीं करता
4: जी, सही
5: उसको सही वक्त पे पानी की जरूरत होती है। आपको प्यास लग रहा है इसका मतलब आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है, मतलब पानी की मात्रा आपके शरीर में कम हो गई है। प्यास लगने तक राह ना देखिए,
4: बिल्कुल
5: धीरे धीरे थोड़े थोड़े वक्त पे थोड़ी थोड़ी घूंटों में पानी पीजिए। और मैं हमेशा बोलती हूँ पानी हमेशा ग्लास में लेकर पीजिएगा,
4: जी जी,
5: ना बॉटल से। आप बैठकर पियो, खड़े रहकर पियो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट ग्लास में इसलिए ताकि आपको एक क्षण की क्यों ना हो थोड़ी सी एक पॉज मिल जाए, एक ठहराव मिल जाए, जो कि आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है भागदौड़ की जिंदगी में, कि आप वो 1-2 सेकंड का काम है कि थोड़ा सा रुक लो, थोड़ा ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान दो, आप किस तरीके से पूरे दिन में सांसें अंदर बाहर कर रहे हैं, थोड़ा सा ठहराव आने दो, पानी पी लीजिए और फिर अपने काम पे आगे बढ़ जाइए। कहीं अगर हम देखें तो अगर हम 2-3 लीटर की बात करें पूरे दिन में, तो आपको 1 ग्लास 1 घंटे में धीरे धीरे करके पी लेना चाहिए, धीरे धीरे, ये जरूरी है। गर्म पानी पिए, ठंडा पानी पिए, वो आपके ऊपर है, आप बैठकर पियो, खड़े रहकर पियो, वो आपके ऊपर है, मगर धीरे धीरे पीना बहुत जरूरी है।
4: जी, बहुत भ्रांति थी, बहुत बड़ी आपने दूर की। एक गाना सुनते हैं यहाँ पर।

0: और अब हमारे श्रोताओं को बताइए कि आज एक बहुत बड़ी समस्या और है, डायबिटीज के मरीज बढ़ रहे हैं और थायराइड की समस्या ज्यादातर हो रही है, तो क्या आहार के जरिए, सही न्यूट्रिशन के जरिए क्या इस पर नियंत्रण किया जा सकता है?
1: अगर हम डायबिटीज़ की बात करें तो अगर आपके फैमिली में या आपके परिवार में माता पिता को, चाचा चाची को, जो इमीडिएट फैमिली होती है, तुरंत आपके माता पिता, भाई बहन, किसी को भी डायबिटीज़ है, आपको डायबिटीज़ होने का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आपको ये जानकारी है तो आपको आपके आहार या पोषण का ध्यान पहले से रखना शुरू कर देना चाहिए। आपके खाने में क्या होना चाहिए ये आप समझ गए तो आप अपने ब्लड शुगर को आराम से मैनेज कर पाओगे, आपको डायबिटीज के लेवल पे आप पहुंचोगे नहीं। अगर आप प्री डायबिटीज के लेवल पे किसी वजह से पहुंच गए, सही आहार से आप उसको रिवर्स कर सकते हो। अगर आपका लेवल डायबिटीज में चला गया और आपको डॉक्टर ने डायग्नोस कर लिया कि आपको डायबिटीज है या आपको शक्कर की बीमारी लग गई है, तो उस वक्त के बाद से आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते, मतलब वो चला जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता। उस लेवल के बाद से आप बस वो शक्कर की मात्रा को कंट्रोल में रख सकते हैं। तब भी आपको आहार की बहुत जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो टाइप का आपको डायबिटीज है, भले वो जेस्टेशनल डायबिटीज जो कि प्रेगनेंसी में होता है, टाइप 1 हो, टाइप 2 हो, उसके हिसाब से और आपको कौन सी दवाएं दी जा रही है और आपका करंट ब्लड शुगर कितना है, उस हिसाब से आहार को डिजाइन किया जाता है, ताकि आपका जल्द से जल्द शुगर कंट्रोल में आए, आपको दवाइयां कम लेनी पड़े, या अगर आप इंसुलिन ले रहे हैं तो वो अच्छे से आपके ऊपर काम करे कम से कम डोज में। तो आहार इतना हेल्प कर सकता है कि आपका 16-15 ऐसा HbA1c है तो वो 7-6 पे भी ले आ सकते हैं 3-4 महीने में।
0: जी बिल्कुल।
1: बट लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट दवाई ले लेंगे अगर खाना नहीं छोड़ेंगे और यहाँ पे दिक्कत आती है। बिना खाने को ठीक किए आपकी दवाई काम नहीं करने वाली है या कम काम करेगी।
0: बिल्कुल सही बात है, मतलब कि हमारे जीवन में सही और संतुलित आहार का बहुत महत्व है।
1: बहुत महत्व है।
0: अदिति जी, हमें बताइए कि सप्लीमेंट की कितनी जरूरत होती है पोषक तत्वों के साथ साथ? कई बार लोग खाना पीना तो ठीक ठाक रखते हैं, उसके बावजूद उन्हें विटामिन्स की कमी होती है, कैल्शियम की कमी है, विटामिन डी की कमी है, जिसके कारण बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो सप्लीमेंट किससे लेना चाहिए और कितना इसका महत्व है और कितनी हानि है?
1: सप्लीमेंट कुछ लोगों के लिए बहुत जरूरी हो जाता है, कुछ लोगों के लिए वो जरूरी नहीं है। अगर आप संतुलित आहार ले रहे हैं, आपका रहन सहन सही है, नींद ठीक है, पानी ठीक है, आपको कोई भी सिम्टम्स नहीं है, तो अक्सर आपको सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती है। मगर अगर आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं या आपके रिपोर्ट्स में आ गया कि आपको कोई विटामिन या मिनरल की कमी है, तो कभी कभार आपको वो लेने पड़ते हैं।
0: जी,
1: जो भी आप सप्लीमेंट ले वो हमेशा डॉक्टर या डाइटिशियन की सलाह से ले, और डाइटिशियन आपको दवाई नहीं दे सकते हैं, डाइटिशियन आपको विटामिन मिनरल के बारे में जरूर बता सकते हैं, मगर ये विटामिन और मिनरल भी एक समय के लिए लेना चाहिए, एक उसका विशिष्ट रूप होता है जिस तरीके से लेना चाहिए, और विटामिन मिनरल्स ऐसी चीज है जिसका कॉम्पोजिशन अलग अलग होता है सप्लीमेंट में, तो वो पेशेंट की जरूरत के हिसाब से हम देते हैं, बिना किसी की सलाह के, बस इसलिए क्योंकि विटामिन मिनरल मिल रहा है और किसी दोस्त ने या रिश्तेदार ने बता दिया आपको विटामिन ये लेना है, कैल्शियम ये लेना है, आपको वो अवॉइड करना चाहिए। अगर सलाह दी है तब भी ले लीजिए, और उतने वक्त के लिए ही लेना जितना बताया गया है।
0: बिल्कुल,
1: वो सही वक्त पे लेना, सही तरीके से लेना जरूरी है। अभी कौन से विटामिन मिनरल ज्यादातर लगते हैं? अगर आपकी डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा है, मतलब आपके शरीर में कोई भी विटामिन या मिनरल की कमी बहुत ज्यादा है, तब आपको सप्लीमेंट की जरूरत लगती है। उसके साथ साथ आपको आहार को भी आपके ठीक करना पड़ता है, क्योंकि आपका जो रोज का आहार है वो आपके रोजमर्रा की जिंदगी में आपकी जरूरतें पूरा करेगा। सप्लीमेंट जो कि आपका बैकलॉग है, जो कि आपके शरीर में ऑलरेडी कम है, वो चीज को भरेगा, तो वो सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होता है। वैसे ही जैसे विटामिन डी की बात करें, तो विटामिन डी का मेन तो धूप से मिलता है, मगर हम आजकल धूप में ज्यादातर जाते नहीं
0: जी,
1: हैं,
0: बिल्कुल।
1: या फिर हम पूरे कपड़े पहनते हैं, या ऐसे कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, क्रीम्स या कुछ भी शरीर पे, जिससे विटामिन डी अब्जॉर्ब नहीं होता।
0: अच्छा,
1: और खाने में विटामिन डी की मात्रा कम है तो आपको सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ जाती है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप विटामिन डी बहुत, क्योंकि कम है, सबको कम होता है, हम हर रोज लेंगे या हर हफ्ते लेंगे, ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि विटामिन डी फैट सॉल्यूबल है, उससे आपकी बॉडी में विटामिन डी स्टोर हो सकता है और आपको टॉक्सिसिटी हो सकती है। सो बिना सलाह किए कभी भी उनको नहीं लेना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: दूसरी चीज, आप कोई भी डॉक्टर के पास जा रहे हैं या कोई डाइटिशियन के पास जा रहे हैं, आप जो भी सप्लीमेंट ले रहे हैं, एक चिट्ठी पे लिख के उन डॉक्टर को थमा दीजिए कि मैं ये ऑलरेडी ले रहे हैं।
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि दिक्कत ये हो जाती है, आप एक डॉक्टर के पास गए, उन्होंने भी कैल्शियम दिया, किसी और ने भी कैल्शियम दिया, और आपने उनको बताया नहीं, तब भी ज्यादा हो सकता है आपके लिए। तो सप्लीमेंट कभी भी, कितने भी आसानी से मिले, कितने भी करीबी रिश्तेदार ने आपको बताए हो, बिना जांच पड़ताल या बिना कोई प्रोफेशनल सलाह के नहीं लेने चाहिए।
0: जी बिल्कुल। एक गाना सुनते हैं यहाँ पर।
1: जी,
0: कौन सा गाना आपके पसंद का?
1: आजकल तेरे मेरे प्यार।
0: जब सेहत सही रहती है तो भाई जाहिर सी बात है मन ठीक रहता है।
1: हाँ जी।
0: मन में अच्छे विचार आएंगे, अच्छे विचार आएंगे तो प्यार की भावना भी उपजती है। सुनते हैं ये गाना।

0: अदिति जी, हमें बताइए कि कुछ लोगों का ये मानना होता है कि खाने से पहले एक गिलास पानी पी लो, खासतौर से वो लोग जो वजन घटाने की मुहिम चला रहे होते हैं। और कुछ लोगों का ये मानना होता है कि खाने के बीच बीच में पानी पीते जाओ थोड़ा थोड़ा। और कुछ लोग ये मानते हैं कि खाना खाने से पहले ना तो पानी पीना है, ना खाने के दौरान, ना खाने के बाद। ये जरा स्पष्ट कीजिए, क्या करना चाहिए?
1: इस सवाल का जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल है और मैं वही सोच रही हूँ कि सही अल्फाज क्या है इसके लिए, थोड़ा स्पष्टीकरण देने के लिए, क्योंकि ये सब विचारधारणा है। ये किसी किसी को आप अप्लाई कर सकते हो, हर किसी के लिए नहीं है। सीधी बात है, आपको पानी लगता है, आप पानी पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप खाने के पहले एक गिलास पानी पियोगे, क्या हो जाएगा, आपके खाने पे असर पड़ेगा,
0: भूख कम हो जाएगी
1: आपकी
0: तुरंत।
1: भूख कम तो हो जाएगी, मगर ऐसा भी हो सकता है आप कम भूख के कारण खाने की कोई विशिष्ट चीज जो आपके शरीर के लिए बहुत जरूरी है आप
0: जरूरी
1: उसी को निकाल दो।
0: जी।
1: जैसे भूख कम हो गई तो आपने रोटी सब्जी कर ली, दाल छोड़ दी, तो आपको दिक्कत देगा। अगर आप कर रहे हो तो उसके पीछे का शास्त्र समझ लो कि आप पानी पी रहे हो ताकि आपकी थोड़ी भूख कम हो जाए, मगर ऐसा करने के बाद अगर आपको 4 बजे बड़ी जोर की भूख लग रही है तो फिर क्या ही फायदा उस चीज करने का।
0: बिल्कुल।
1: वैसे ही आप पानी आधा घंटे पहले मत पियो, आधा घंटे बाद मत पियो, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। पानी किसको संभाल के पीना चाहिए? कुछ लोग जो होते हैं ना, जो खाना खाने के वक्त पे

0: घूट घूट लेके पानी पी रहे खाने के दौर में, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी।
1: जी बिल्कुल। और एक सवाल और है, वो ये कि एक वक्त में दो अनाज खाएं, एक अनाज, जैसे कि या तो दाल चावल खाएं या फिर रोटी सब्जी खाएं, रोटी सब्जी शाम को खा लें, दिन में दाल चावल खा लें, ऐसा लोग बोलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पूरी थाली, जैसे पुराने जमाने में पूरी थाली सजा के खाई जाती थी, तो आपका क्या कहना है?
0: इसमें सीधी सी बात है, धान धान होता है, आपको आखिर में देखना है धान की मात्रा आपकी थाली में कितनी है। आप अगर रोटी भी कर रहे हैं और चावल भी कर रहे हैं और आपकी आधी थाली उसी से भर रही है, तो उसमें दिक्कत है। हमने क्या बात की थी कि थाली में एक चौथाई धान होना चाहिए। तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है कि आप रोटी सब्जी अलग करें, दाल चावल अलग करें या साथ में करें। प्रॉब्लम ये आती है या दिक्कत ये आती है जब आप उसका प्रमाण बदल देते हो। अगर आपकी थाली में रोटी सब्जी है मगर आप सब्जी को अचार की तरह इस्तेमाल कर रहे हो, और दाल चावल है मगर आप दाल को अचार की तरह इस्तेमाल कर रहे हो कम मात्रा में,
1: जी
0: तब आपकी थाली का संतुलन बदल जाता है।
1: जी
0: और 90% लोगों का यही इश्यू होता है कि उनकी थाली में आधे से ज्यादा धान होता है, एक छोटी मात्रा में सब्जी होती है और बहुत कम मात्रा में प्रोटीन होता है।
1: जी खाने का सही तरीका बहुत जरूरी है, और जिसको पित्त की समस्या, एसिडिटी की समस्या हो, तो उसे तो बहुत ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत गलत फहमी है लोगों में कि कब क्या खाएं, दो भोजन के बीच में कितना गैप होना चाहिए।
0: इसका कोई एक सरल फॉर्मूला तो है नहीं, क्योंकि हर इंसान अलग होता है। किसी किसी को दिन में 3 बार खाने की आदत होती है, किसी को 5 बार खाने की आदत होती है। मुझे ऐसे लगता है और मैं हमेशा पेशेंट्स को भी यही बताती हूँ कि आपकी जो जिंदगी है, आपका जो रूटीन सेट है, आप उस तरीके से काम करो। अगर आप 3 बार खाते हो 3 बार खा लीजिए, मगर ये देखिए कि वो आहार संतुलित हो। अगर हम बात करें भूख की, दिक्कत ये है शहर में आजकल लोगों को यही समझ नहीं आता भूख कब लग रही है और प्यास कब लग रही है। बस 1 बज गया है तो अभी लंच करने जाना है, ये समझ में आता है। तो सबसे पहले आपको अपने शरीर को समझना जरूरी है कि मुझे भूख कब लग रही है, मुझे प्यास कब लग रही है।
1: तो क्या जब भूख लगे तभी खाना चाहिए या
0: ऐसा
1: टाइम?
0: जरूरी नहीं है, शरीर को जरूरत है उसकी समझे और आप अपना रूटीन सेट करें उस हिसाब से। मैं ये कहूंगी पहले तो रूटीन सेट करिए और उस वक्त पे आपके बॉडी को ट्रेन करिए कि आपको उस वक्त पे भूख लगे, मगर भूख लगना उस वक्त पे जरूरी है। बस 1 बजा है इसके लिए मुझे खाना है, ये नहीं होना चाहिए। मुझे 1 बजे भूख लगनी चाहिए क्योंकि मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, ये होना चाहिए। जब आपको भूख लगेगी वही अनाज वही थाली आपको अच्छे से शरीर आपका उसको एब्जॉर्ब करेगा। आपके दो खाने के बीच में कितना गैप होना चाहिए ये निर्भर करता है आप कितनी मात्रा में खाते हो। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग क्वांटिटी में ज्यादा खाते हैं, खाने की मात्रा उनकी ज्यादा होती है, और कुछ लोग होते हैं जो एक वक्त पे एक रोटी या दो रोटी के ऊपर नहीं खा सकते। जो कम खाते हैं उनको कई बार थोड़े थोड़े अंतर पे खाना जरूरी है। तो 2-3 घंटे के अंतर पे आप थोड़ा थोड़ा खा लेंगे अच्छा रहता है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपकी खाने की मात्रा ज्यादा है तो आप दिन में 3 बार खा लोगे आप ठीक रहोगे। अगर आपको जैसे एसिडिटी या गैस की दिक्कत है तो आपको थोड़ा थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए। आपको ब्लड शुगर की इश्यू है तब भी आपको थोड़ा थोड़ा करके खाना चाहिए ताकि आपका शुगर स्टेबल रहे। अगर आप दिन में 3 बार खा रहे हो जस्ट इसलिए कि अभी ट्रेंड चल रहा है दिन में 1 बार खाने का, आप डायरेक्टली 3 से 1 पर आ गए, वो दिक्कत करेगा
1: जी। अभी दो टाइम का भी चल रहा
0: बहुत
1: है फैशन
0: ज्यादा।
1: कि सिर्फ दो टाइम खाना खा रहा है। यहाँ पर एक जरूरी बात जहन में आई है, वो ये कि कई बार लोग एक साथ खाना खाने बैठते हैं तो सलाद भी रख लिया, दही भी रख लिया, फल भी रख लिया काट के, और पूरी थाली भी।
0: हाँ
1: तो क्या फल और खाना एक साथ खाना चाहिए या उसे बीच में गैप देना चाहिए?
0: हमेशा मुझे ऐसे लगता है कि फल ऐसी चीज है जो हमारे पूरे खाने में हम उसे बिना पकाए खाते हैं,
1: जी।
0: तो उसे ऐसे वक्त पे खाएं जहां आप उसका मजा अलग से ले पाए।
1: जी
0: जहां पका हुआ खाना जा रहा है वहां पे वो होना चाहिए। सलाड आपके खाने में जा सकता है, वो कच्चा होता है, मगर सलाड हर किसी को सूट करता है ऐसा नहीं है। इसका मतलब कच्चा खाना सबके लिए है नहीं।
1: जी जी बिल्कुल,
0: आपकी सेहत के हिसाब से, आपके पेट कैसा काम कर रहा है उस हिसाब से आपका सलाड पका हुआ हो या कच्चा होना चाहिए ये देखना आपको जरूरी होता है। फल आपको हमेशा अलग से ही खाने होते हैं, और कभी भी फल के साथ आपके नट्स

0: जाने चाहिए। अगर हम छोटा सा एग्जाम्पल ले लें कि नॉर्मली लोग 8-9 बजे नाश्ता कर लेते हैं, 1 बजे खाना खाते हैं, और जो रात का खाना होता है वो अक्सर 8-10 बजे चला जाता है, तो आपके दोपहर के खाने और रात के खाने में बहुत बड़ी गैप हो जाती है। तो ऐसे वक्त पे इसके बीच में वहां पे फल और आपका जो नट्स है वो बहुत आसानी से इस्तेमाल हो सकता है। अभी आपको ये भी देखना है कि 5 से 7 के बीच में ही आपको समोसे चाट की जरूरत पड़ती है, तो वो भूख लगने के पहले और आपके दोस्त आपको बताने के पहले कि चलो हम जाके समोसा खाते, उस वक्त पे आपका फल और नट्स खा लीजिए और आपकी सेहत बढ़िया रहेगी।
1: जी जी, एक गाना सुने
0: जी,
1: कौन सा?
0: क्यों ना ये जीवन है, पिया का घर
1: जी, इस जीवन का यही है रंग रूप।

0: और कुछ लोगों का ये भी मानना है रोटी के मामले में कि गेहूं की रोटी नहीं पचती है।
1: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखे हैं कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
2: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
3: से दूर रहने की कोई जरूरत नहीं है। कि आप गेहूं कौन से तरीके का यूज कर रहे हो ये देखिए।
0: जी जी।
3: जिसमें आपके पास खपली गेहूं है जो सबसे बेहतर है, उसके बाद आपके पास अलग अलग तरीके के गेहूं हैं, आप कौन सी वैरायटी यूज कर रहे हो ये भी देखिए, और उसमें आप जो गेहूं के ऊपर का छिलका होता है, ब्रान होता है, वो इस्तेमाल कर रहे हो कि नहीं खाने में, रोटी में, ये देखिए, आप सही रहोगे। रोटी गलत नहीं है, रोटी हर किसी को तकलीफ देती है ऐसा भी नहीं है। अगर हम ज्वार बाजरा की बात करें, मिलेट्स बहुत ज्यादा चर्चा में है एक दो सालों से, और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो मिलेट्स हम पहले से ही इस्तेमाल कर रहे हैं अपने देश में, आज उसकी मात्रा बहुत बढ़ गई है, मगर लोगों को उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना आज भी नहीं आता। ये जो मिलेट है या मोटे अनाज है, ये बहुत बार आप देखोगे थोड़े सूखे या ड्राई टेंडेंसी के होते हैं, ये कम खाएंगे तब भी आपको एकदम ऐसे लगेगा कि भरा भरा पेट लग रहा है या पेट बहुत टाइट हो रहा है, या आप और एक ज्वार की रोटी के ऊपर नहीं खा सकते। अच्छे हैं मगर वो भी सही मात्रा में आपके दिन में होने चाहिए, ऐसा ना हो कि आपको थायराइड जैसा इशू हो और आप पूरी तरीके से मिलेट्स पे रह जाए, आपको दिक्कत होगी। तो एक संतुलन गेहूं और मिलेट्स के बीच में रखना, चावल के बीच में रखना बहुत जरूरी है। अगर आपने वो संतुलन जमा लिया तो आपका पेट सही रहेगा। दूसरी चीज मुझे ये हमेशा दिखती है कि कुछ लोग जो होते हैं ना, आंकड़ों के पीछे पड़े रहते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि उनकी प्लेट में उनको या थाली में उनको दो रोटी चाहिए होती है, उनको फर्क नहीं पड़ता कि वो गेहूं की है, ज्वार की है, बाजरा की है। अभी ये दिक्कत है कि एक फुल्का या एक रोटी जो है 20 से 30 ग्राम आटे की बनती है, और एक ज्वार की रोटी जो है 50 से 60 ग्राम आटे की बनती है।
0: बिल्कुल।
3: तो यहाँ पे क्या हो गया कि आपने ज्वार बाजरा जो भी है वो बहुत ज्यादा मात्रा में खा लिया, जहाँ की आप रोटी एकदम हल्के फुल्के में काम चला लेते हैं
0: तो पाचन पर असर पड़ेगा।
3: जी, तो ये लोग सोचते ही नहीं है क्योंकि ये उन्होंने कभी उस तरीके से सोचा ही नहीं है। तो ये आपको देखना जरूरी है कि आपकी पाचन क्रिया कैसी है, आपका पेट कैसा है, क्या आप मिलेट्स को डाइजेस्ट कर पा रहे हो, और अगर आप मिलेट्स को आपके खाने में, रोजमर्रा की जिंदगी में इंट्रोड्यूस करना चाहते हो या डालना चाहते हो, आप किस तरीके से डाल रहे हो।
0: जी,
3: आप अगर मिलेट्स बिल्कुल भी नहीं खा रहे तो तुरंत से पूरे हफ्ते मिलेट्स ना करें, हफ्ते में एक दो बार करें, फिर तीन चार बार करें, धीरे धीरे मिलेट्स की आदत लगाएं। और ज्वार बाजरा नाचनी के आगे भी हमारे पास धान है, उसका भी इस्तेमाल करें, जैसे कोड़ो हो गया, कांग हो गया, पोर्सो हो गया, महाराष्ट्र में वरी हो गया, ये सारे भी तो धान हैं, वो भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं। सूडो मिलेट्स हैं जैसे कि किनवा हो गया, कुट्टू हो गया, बकवीट जिसे बोला जाता है। किनवा को तो हिंदी मराठी नाम है नहीं, किनवा को किनवा ही बोलते हैं।
0: सावा
3: नहीं, सामा है जो कि होता है महाराष्ट्र में वरी, बानियार्ड मिलेट।
0: जी जी।
3: तो
0: जी,
3: ये सारी चीजें भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। हमें सिर्फ रोटी और उसके आगे ज्वार बाजरा नाचने की जरूरत नहीं है, हमारे पास बहुत कुछ है, हमें बस कुछ चीजें पता नहीं है और कुछ चीजें हमें इस्तेमाल करनी नहीं आती। तो आप सही तरीका सीख लो तो हो जाएगा। जब भी आप मोटे धान की बात करें, और आप अगर अक्खा धान यूज कर रहे हैं तो उसको अच्छे से 4 से 6 घंटे भिगो के रखना बहुत जरूरी है, और सही मात्रा में पानी डाल के उसको पकाना बहुत जरूरी है। उसके साथ आप किस तरीके की सब्जी खा रहे हो, अगर आप मोटा धान इस्तेमाल कर रहे हो तो उसके साथ जो सब्जियों में पानी का अंश ज्यादा होता है, जैसे दूधी हो गया, कद्दू हो गया, पेठा हो गया, इसका इस्तेमाल ज्यादा करें, तो वो आपका सूखी रोटी और उसके साथ गीली सब्जी, ये थोड़ा सा बैलेंस आपके पेट के लिए बहुत अच्छा ठहरता है।
0: अच्छा, क्या बात है।
3: तो ये थोड़ा संतुलन आपको समझना चाहिए और आपको धीरे धीरे अपने खाने को उस तरीके से बदलना जरूरी है।
0: एक गाना सुने
3: जी।
0: कौन सा
3: आप भी बता दीजिए कोई गाना।
0: सुनते हैं ये गाना।
3: एक

0: जो आप धान की बात कर रही थी, धान में ये सारी चीजें आती हैं। धान में सिर्फ वो चावल जो हम रोज खाते हैं वो नहीं, हाँ। बल्कि ये कोदो और जो नाम
1: बहुत ज्यादा है। और आप अगर चावल की ही बात करें तो भारत ऐसा देश है जहाँ हमारे पास 150-200 तरीके के चावल है,
0: बिल्कुल,
1: मगर हम एक ही चीज जानते हैं,
0: खुशबूदार
1: सफेद चावल,
0: चावल बिल्कुल,
1: और खुशबूदार चावल, बासमती चावल, इतना ही जानते हैं। थोड़ा हमारे जो चावल के अनाज है जो हमारे पास है, जैसे अंबे मोहर है, मट्टा है केरला का, या असम का ब्लैक राइस है, जो आपके यहाँ है, या कृष्ण कमोद है, आप वो चावल का इस्तेमाल करें। ब्राउन राइस आता है, मगर उससे अच्छा हमारे पास बहुत सारे चावल है, अनपॉलिश्ड वैरायटी का चावल इस्तेमाल करें, या सेमी पॉलिश्ड वैरायटी इस्तेमाल करें। बहुत खुशबूदार, बहुत फ्लेवरफुल चावल आते हैं हमारे पास। सफेद चावल में कोई भी न्यूट्रिशन नहीं रहता है,
0: अच्छा।
1: उसका सब कुछ निकाला हुआ होता है, बस हल्का सा बी विटामिन आपको मिल जाएगा, बाकी सब वो स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट है।
0: क्या बात है, बहुत सही जानकारी आपने दी है। पहले ग्रामीण इलाकों में आज भी
1: वही
0: धान को उबाल कर चावल बनाया जाता है, वो उसको उसना चावल कहते हैं।
1: हाँ, हमारे यहाँ उकड़ा तांदूल बोलते हैं, महाराष्ट्र में, जहाँ हम वही राइस को यूज करते
0: जी,
1: हैं,
0: जी, जी।
1: जिसमें अच्छा ब्रान भी होता है, विटामिन भी होते हैं, वो मोटा होता है तो आप कम भी खाते हो।
0: अदिति जी, बहुत जरूरी मुद्दा है आजकल तेल के बारे में, कि पुराने जमाने में तो हम सबको याद है कि सरसों का तेल सब्जियों में इस्तेमाल होता था, और कुछ जगहों पर नारियल का तेल, साउथ में खासतौर से, अलग अलग जगहों पर। और आजकल तरह तरह के तेल हैं, मूंगफली का तेल, सोयाबीन का तेल, सनफ्लावर, राइस ब्रॉन, तो बताइए कि कौन सा तेल सब्जियों के लिए सही होता है इस्तेमाल करना।
1: आप जिस जगह रहते हो उस जगह आपके आजू बाजू में कौन से पेड़ ज्यादा है, उस हिसाब से उस इलाके में वो तेल ज्यादा इस्तेमाल होता है। जैसे आप नॉर्थ ईस्ट की बारे में बात करें तो वहाँ पे आपको सरसों का इस्तेमाल ज्यादा मिलेगा, महाराष्ट्र की बात करें या साउथ की बात करें तो नारियल का तेल ज्यादा मिलेगा। आज ग्लोबलाइजेशन का जमाना है तो ये सारे तेल अभी हम सबको मिल रहे हैं, कोई तेल बुरा हम नहीं बोल सकते, हर तेल अपने तरीके से सही है, किसी के लिए वो अच्छा हो सकता है, किसी के लिए वो बुरा हो सकता है। मुख्य क्या होता है कि आपके खाने में तेल की मात्रा कितनी है। आप अगर आपके खाने में, जैसे एक इंसान को पूरे दिन में तेल की मात्रा 3 से 4 चम्मच रखनी चाहिए, छोटे चम्मच, 5 ml के चम्मच, उसके ऊपर नहीं
0: जी।
1: मगर हम कभी गिन के थोड़ी ना तेल इस्तेमाल करते, अंदाजे से भिंडी की सब्जी को थोड़ा ज्यादा तेल डाल दिया, पत्ते की सब्जी है तो उसमें कम तेल डाल दिया, हम स्वाद अनुसार तेल इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। अगर हम तेलों की बात करें कि कौन सा सबसे अच्छा होता है, सबसे पहले आप देखिए कि आपको मेडिकल इश्यूज है या नहीं। कुछ मेडिकल इश्यूज में कुछ तेल हम मना कर देते हैं, बाकी केस में अगर आपको कोई इश्यूज नहीं है, आप सेहतमंद है, आपको बस आपकी तबीयत का ख्याल रखना है, तो इसका सिंपल तरीका यह है कि आप पारंपरिक तौर से आप जो तेल खा रहे हो उसका इस्तेमाल करें, बाकी तेल भी अपने रूटीन में रखें, उसको थोड़ा सा साइकिल करें, मतलब अगर एक महीना आप सरसों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो थोड़ा सा फिर राइस ब्रैन को लेकर आए, फिर आप सरसों पे चले जाए, फिर सनफ्लावर का इस्तेमाल करें, ऐसे थोड़े आप बदलाव लेकर आ सकते हैं। आखिर में आपकी तेल की मात्रा कितनी है ये मायने रखता है
0: जी।
1: कुछ तेल होते हैं जिनको बहुत बुरा नाम पड़ा है, जैसे पाम ऑयल है, क्योंकि ये ज्यादा करके पैकेज फूड, बेकरी आइटम्स में इस्तेमाल किया जाता है, तो हाँ ये बुरा है क्योंकि उसकी जो गुणधर्म है वो आपको तकलीफ दे सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि आप पैकेज फूड और प्रोसेस फूड कितना खा रहे हैं।
0: जी बिल्कुल,
1: आखिर में गिन के आप पूरे दिन में तेल कितना खा रहे हो। और तेल भी दो तरीके से हम देखते हैं, नॉर्मल लोग सिर्फ तेल को गिनते हैं, हम डाइटिशियंस दो तरीके से देखेंगे, विजिबल सोर्सेस जो कि दिखते हैं, मतलब आपका तेल, घी, बटर, चीज, और दूसरा होता है इनविजिबल सोर्सेस, मतलब दूध में से आने वाला फैट, आपके नट्स में से आने वाला फैट, ये भी तो जरूरी है
0: जी जी।
1: तो अगर आप पूरे दिन में 2 मुट्ठी ड्राई फ्रूट ही खा रहे और आपकी सब्जी तेल में तैर रही है,
0: बिल्कुल,
1: तो आप ज्यादा तेल खा रहे हो, आपको तकलीफ होने ही वाली है। आखिर में तेल की मात्रा कितनी है वो ज्यादा मायने रखती है। और अपने तेल को बदलते रहिए, कौन सा तेल अच्छा है, क्या केमिकली रिफाइंड तेल अच्छा है, फिजिकली रिफाइंड अच्छा है, वुड प्रेस्ड अच्छा है, कोल्ड प्रेस अच्छा है। तो फिजिकली रिफाइंड या घानी, वुड प्रेस, कोल्ड प्रेस, ये अच्छे हैं। जितना हो सके केमिकल जो फिल्टर्ड होता है वो थोड़ा सा दूर रखें। अगर शहर में रह रहे हैं या आपको दिक्कत है, आपको एक्सेसिबिलिटी या फाइनेंस का इशू है, तो आप जो भी तेल मिल रहा है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको फाइनेंशियली अफोर्डेबल है तो घानी का तेल, कोल्ड प्रेस ऑयल, वुड प्रेस ऑयल, इसकी तरफ थोड़ा सा मुड़ जाइए। वो तेल थोड़ा सा गाढ़ा भी होता है, तबीयत के लिए भी अच्छा होता है और उसमें गुणधर्म भी अच्छे खासे होते हैं।
0: जी जी,
1: तो
0: जी,
1: वो इस्तेमाल आप कर सकते हो।
0: जी बिल्कुल, घानी का तेल यानी जो कोल्हू के बैल से निकाला जाता है ताजा तेल, सरसों का तेल खास तौर से होता है। एक गाना सुनते हैं यहाँ पर।
1: जी।

0: और घी के बारे में भी बताइए। घी के बारे में भी बहुत सारी भ्रांतियां, लोग चुपड़ के घी खाते हैं कुछ लोग, कुछ लोग कहते हैं कि अरे इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, घी खाते ही नहीं। तो घी क्या है बताइए।
1: घी भी फैट का एक ही रूप है। आप तेल खाओ, घी खाओ, बटर खाओ, चीज खाओ, उसके रूप अनेक है।
0: अच्छा।
1: आखिर में मात्रा आपकी मैटर करती है। जो कि मैंने आपको बताया कुछ देर पहले कि दिन में आपकी 3 से 4 चम्मच तेल होना चाहिए, उसमें घी भी आता है। आप 4ों चम्मच घी इस्तेमाल करना चाहते हो या उसमें से 1 चम्मच घी इस्तेमाल करना चाहते हो, ये आपके ऊपर निर्भर है। क्या घी खाने से फायदा है? हाँ, पेट के लिए अच्छा है, तबीयत के लिए अच्छा है। आप वेट गेन करने की कोशिश कर रहे हो तब भी आपको फायदेमंद ठहरेगा। अगर आपको ब्लॉकेज इश्यूज है, हार्ट इश्यूज है, या आपको कोई मेडिकल बाकी के कंडीशन है, तो आपको घी को थोड़ा कंट्रोल में रखना जरूरी है। अगर आप घी नहीं खाते हो, क्या आपको कोई नुकसान है? नहीं, बिना घी खाए भी आप अच्छे खासी जिंदगी निकाल सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको घी खाना जरूरी है जिंदगी में। तो आखिर में आप कितनी मात्रा में खा रहे हो, ये महत्वपूर्ण है।
0: जला हुआ घी नहीं खाना चाहिए पराठे के रूप में,
1: जी,
0: पूड़ी और पराठे के रूप
1: बहुत ज्यादा।
0: में। अदिति जी, घी तेल सब कुछ शामिल हो गया और हर खाने में मिठाई भी शामिल होता है। कुछ लोगों के साथ तो ये दिक्कत है कि हर खाने के बाद उनको मीठा चाहिए, तलब होती है। तो ये मिठाई के खाने के बारे में बताइए कि खाने के बाद, खाने के साथ खाना जरूरी है, खाने से पहले या बाद में, या नहीं खाना चाहिए?
1: अगर आप मिठाई खाएंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको मिठाई की जरूरत नहीं है। शक्कर कम खाने से आपकी शक्कर कम नहीं होने वाली। मिठाई भी शक्कर का ही एक अलग रूप है, जिसे हम कार्बोहाइड्रेट ही कहते हैं। अगर आपके पूरे दिन में, आपके आहार में कार्बोहाइड्रेट का प्रमाण बहुत ज्यादा है, तो मिठाई उसे और बढ़ाएगा। और मिठाई जो है, छोटा बम बड़ा धमाका है।
0: तो
1: छोटे से बाइट में बहुत ज्यादा कैलोरीज होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा फैट भी होता है, और उतनी ज्यादा आपको कार्बोहाइड्रेट भी मिल जाते हैं। तो क्या मिठाई जरूरी है? नहीं। अगर आप मिठाई हर खाने के बाद खाना चाहते हो तो ये आपको कम करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के हिसाब से, आपकी तबीयत के हिसाब से। तो एकदम से अचानक से अगर आप बंद नहीं करना चाहते, पहले तो दिन में एक ही बार कर लीजिए, और फिर उसी मिठाई के थोड़े से हेल्दी रूप थोड़े से देख लीजिए। जैसे आपको खजूर मिल जाएगा, या आपने थोड़ा चना और गुड़ ले लिया, या आपने छोटा चिक्की का टुकड़ा ले लिया, आप इसका इस्तेमाल करें, ना कि गुलाब जामुन या और कोई तली हुई मिठाई, मावा जलेबी, इसका इस्तेमाल करें। जैसे मैंने कहा, आखिर में पूरे दिन में आपने कार्बोहाइड्रेट कितने खाए हैं वो मायने रखता है। कुछ लोग जो है खाने में भी शक्कर और गुड़ का इस्तेमाल बहुत करते हैं। तो मतलब आप चाय में शक्कर गुड़ खा रहे हैं, आपके खाने में गुड़ और शक्कर जा रहा है, और फिर आपकी मिठाई में भी शक्कर है। तो आपने यहाँ फॉर्मूला बना लिया आपका ब्लड शुगर बढ़ाने का।
0: जी जी।
1: इससे आपका ब्लड शुगर बढ़ेगा, क्योंकि आप हर जगह पे मिठाई खा रहे हो। अभी कुछ लोग बोले, मैं तो ब्लड शुगर नहीं है, हम तो जिंदगी भर खा रहे हैं। कोई बात है, हो गए, आपकी तबीयत उतनी अच्छी है, हो गया। मगर क्या ये हर कोई कर सकता है? नहीं, किसी को तकलीफ दे सकता है।
0: जी।
1: तो मिठाई भी आखिर में आपको ये देखनी है कि ये मेरे को फायदा देने वाली है। आज के टाइम में हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी मिठाई आ रही है, जो कि आपकी तबीयत को भी संभाल सकती है और मीठे की क्रेविंग को भी संभाल सकती है। जैसे डार्क चॉकलेट हो गया, या आप छेना इस्तेमाल करो, रसगुल्ले का छेना वो आप यूज करो,
0: खीर घर में बना के।
1: खीर भी आखिर में दूध और शक्कर ही आई, और उसमें अगर आपने साबुदाना डाल दिया तो खत्म। तो आपने एकदम ऐसा फॉर्मूला बना दिया जहाँ पे शक्कर बढ़ जाएगा। तो ये कितने मात्रा में है, दिन में कितनी शक्कर गुड़ जा रही है, और ओवरऑल आपका कार्बोहाइड्रेट इंटेक कितना है, इस पे निर्भर करेगा कि क्या आप मीठा खा सकते हो या नहीं। दूसरी चीज ये है कि बहुत ज्यादा मीठा खाने से ना, कुछ लोग कई सालों तक उनको आदत होती है मीठा मीठा खाने की, कार्बोहाइड्रेट खाने की, इसी वजह से उनकी टेस्ट बड्स जो वो भी थोड़े चेंज हो गए। उनको हर चीज उस तरीके से टेस्ट नहीं आती, तो जब वो मिठाई थोड़े दिन के लिए निकल लेते हैं, तब उनको वही मिठाई कितनी मीठी है वो पता चलेगी। जैसे कुछ लोग जो मिठाई बिल्कुल नहीं खाते हैं, वो फटक से बोलेंगे आपकी 1 चम्मच शक्कर भी बहुत ज्यादा है। वो क्यों बता पा रहे हैं? क्योंकि उनके टेस्ट बड अभी वापस ट्रेन हो गए कि जो निसर्ग में जो चीजें जैसी है वो उनके फ्लेवर्स का मजा उस तरीके से ले ले। तो हमें उस चीजों पे ज्यादा ध्यान दे।
0: मतलब ये भी है कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम खाना कम खा लें, मिठाई ज्यादा खा लें,
1: हाँ,
0: तो वो भी ठीक नहीं है।
1: ठीक नहीं है,
0: क्योंकि मीठा तत्व तो आपके हाँ, शरीर में जा रहा है जो
1: हानिकारक। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि मैं तो सब कुछ कर रही हूँ, डाइट भी कर रही हूँ, मगर वेट लॉस नहीं हो रहा है या मेरी शक्कर कम नहीं हो रही है, तभी भी अक्सर गुनहगार वो मिठाई ही होती है।
0: बिल्कुल। तो अब इस मिठाई के साथ ही मीठी मीठी बातों को हम विराम दे रहे हैं। अदिति जी, बड़ी ढेर सारी जानकारी आपने साझा की हमारे श्रोताओं के साथ। एक गाना सुने
1: जी।

पोषण माह के उपलक्ष्य में सेहतनामा कार्यक्रम में आज आपने सुना न्यूट्रिशन अर्थात पोषण। इस विषय पर आहार विशेषज्ञ और न्यूट्रिशनिस्ट अदिति प्रभु से ममता सिंह की बातचीत की दूसरी और अंतिम कड़ी। इस कार्यक्रम के लिए तकनीकी सहयोग मिला मंगेश सांगले से। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
1: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
2: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी इंटरनेट स्ट्रीमिंग और...
3: अभी आप सुन रहे थे देश की सुरीली धड़कन, विविध भारती मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित कार्यक्रम। श्रोताओं, हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं, FM 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5 बजे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम युवावाणी।

भारत माँ की शान है हिंदी, हम सबका अभिमान है हिंदी, जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जी हाँ दोस्तों, 103.7 मेगाहर्ट्ज पर स्वागत है आपका। आप सुन रहे हैं युववाणी, मैं हूँ कंचन रोशन। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। दोस्तों आज है 14 सितंबर, यानी कि एक बेहद खास और गौरवशाली दिन। आज पूरा देश मना रहा है हिंदी दिवस। आप सभी श्रोताओं को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। निज भाषा उन्नति अहि, सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिए को शूल। जी हाँ दोस्तों, सही कहा गया है कि जो अपनी भाषा है उसमें हम बहुत उन्नति प्रगति पा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, और जो हमारी समस्याएं हैं उनको कहने की, हमारी जो पीड़ा है उसको व्यक्त करने की जो भाषा है वो हमारी निज भाषा, यानी कि जो हमारी भाषा होती है, हमारी हिंदी भाषा जिसे हम कहते हैं मातृभाषा, भी वो ही व्यक्त कर सकती है, उसके द्वारा ही बयां किया जा सकता है। और जो अपनी भाषा को भूल जाते हैं उनके द्वारा हम ये नहीं कह सकते कि वो प्रगति और उन्नति को पाएंगे, विशेष तौर पर उस नैतिक, उस मानवीय उन्नति और प्रगति को कभी नहीं प्राप्त कर सकते। फ्रेंड्स, हिंदी सिर्फ एक भाषा ही नहीं बल्कि हम सब की पहचान है, हमारी संस्कृति की धड़कन है, जिसके द्वारा संस्कृति के हर एक प्रतिबिंब को हम महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे हिंदी के बदलते स्वरूप की। आज ही के दिन 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया था। तब से लेकर आज हिंदी हम सब के साथ गहराइयों से जुड़ी है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, जब भी अपने मन की बात बयां करने की बात हो या किसी भी प्रकार की समस्या की बात, तो निश्चित रूप से हिंदी के द्वारा ही हम व्यक्त करते हैं, उसी भाषा को याद करते हैं और उसी के द्वारा हमारी अभिव्यक्ति हो पाती है। निश्चित रूप से हमें हर एक भाषा का सम्मान करना चाहिए, उसे सीखना चाहिए, और जिस भी रूप में, जिस भी तरीके से हमें जिन जिन भाषाओं की आवश्यकता है उनके, हम यूँ बात करें कि उनकी शब्दावली को जानने की हो या उनके प्रति जो ज्ञान अर्जित करने की बात हो, वहाँ हमें बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना। लेकिन जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी भाषा है, हमारी मातृभाषा है, उसे भूलकर भी हम कहीं नहीं पहुँच सकते दोस्तों, क्योंकि जो हमारी ज़मीनें हैं वो ही हमें ऊँचाइयों पर ले जा सकती है और बनाए भी वही रखेगी। निश्चित रूप से हमारी बात अपनी हिंदी और हिंदी के विकास, हिंदी की उन्नति समृद्धि और उसकी गौरवशाली इतिहास को लेकर चल रही है। विविधताओं से भरे इस देश में जो हर भारतीय को एकता के सूत्र में पिरोती है, वो हमारी प्यारी हिंदी है। श्रोताओं, 14 सितंबर हिंदी दिवस के दिन निश्चित रूप से हमारे मन में एक सवाल उभरता है कि क्या आज के इस डिजिटल युग में हमारी राजभाषा पीछे छूट रही है, या फिर इंटरनेट की जो इस जादुई दुनिया की हम बात कर रहे हैं, हिंदी ने अपनी एक नई और बुलंद पहचान बना ली है। आज की हमारी इसी प्रकार की बातचीत में राजभाषा हिंदी और इंटरनेट की दुनिया में इसके नए आयाम के बारे में अगर हम डिस्कस करें, तो दोस्तों हिंदी आज से फाइलों और किताबों से निकलकर पूरी दुनिया के डिजिटल स्पेस पर भी राज कर रही है। किस प्रकार से, निश्चित रूप से हम अलग अलग माध्यमों से इसे समझ सकते हैं। एक दौर था जब इंटरनेट का मतलब सिर्फ अंग्रेजी समझा जाना होता था, लेकिन आज वक्त पूरी तरह बदल चुका है। गूगल की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में इंटरनेट पर हिंदी में सर्च करने वाले लोगों की जो तादाद है वो अंग्रेजी से कहीं ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। आज हमारी राजभाषा सिर्फ सरकारी दफ्तरों के कामकाज तक सीमित नहीं है, बल्कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI, सोशल मीडिया और ई कॉमर्स की भी मुख्य भाषा बन चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आज देश के दूरदराज के गांव में बैठा व्यक्ति भी हिंदी वॉइस कमांड देकर अमेजन या अलग अलग प्रकार के प्लेटफॉर्म से भी सामान मंगवा सकता है। UPI और नेट बैंकिंग ऐप अब पूरी तरह हिंदी में भी उपलब्ध है, जिसने डिजिटल क्रांति को जन जन तक पहुंचाने का काम भी किया है।
इसी प्रकार से अलग अलग प्रकार के सर्च इंजन्स भी हिंदी कंटेंट क्रिएटर्स का दबदबा बनाए हुए हैं। देश की एक बहुत बड़ी आबादी अपनी भाषा में जानकारी और मनोरंजन देखना पसंद करती है, जिससे कि अरबों रुपए की कंटेंट इकोनॉमी खड़ी हो रही है। साथ ही आज चैट जीपीटी और गूगल जेमिनी जैसे बड़े एआई टूल्स न सिर्फ हिंदी समझ रहे हैं, बल्कि शुद्ध और सटीक हिंदी में जवाब भी दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारी बातें आगे भी जारी रहेगी। अभी सुनते हैं प्यारा सा ये गीत।

कोई दुख संताप

0: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
1: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
0: हाँ।
1: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
0: हाँ।
1: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
0: हाँ? पता नहीं।
1: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
3: दोस्तों, आज पूरे देश में विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की आराधना का महान पर्व अत्यंत हर्ष उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। गली मोहल्लों से लेकर बड़े बड़े पांडालों तक हर तरफ गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे गूंज रहे हैं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। आज सुबह से ही भक्तों ने शुभ मुहूर्त में बप्पा की प्रतिमा स्थापित की। वेदों और पुराणों में गणेश जी को प्रथम पुण्य माना गया है। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत हम उन्हीं के स्मरण से करते हैं। दोस्तों, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने सार्वजनिक गणेशोत्सव की शुरुआत करके इसे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राष्ट्रीय एकता का माध्यम बनाया था। आज भी ये पर्व जाति, धर्म और वर्ग से ऊपर उठकर लोगों को आपस में जोड़ता है। जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम, रक्तदान शिविर और सामाजिक जो आयोजन हैं वो किए जा रहे हैं। दोस्तों, हम यहाँ सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: दोस्तों बात करते हैं खेल जगत की। 13 सितंबर को शुरू हुई सीरीज के पहले T20 मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया है। अभिषेक शर्मा ने 32 गेंदों में 82 रनों की शानदार पारी खेली है। ईशान किशन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में साल 2026 में अपने 1000 रन पूरे करने का टारगेट हासिल किया है। साथ ही बाबर आजम, विराट कोहली और रिंकी पोंटिंग की क्लब में शामिल हुए हैं। श्रीलंका ने असलंका को वनडे और T20 का नया कप्तान बनाया है। भारत ने हॉकी और अन्य स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन करते हुए धीरज ने तीरंदाजी में ऐतिहासिक प्रदर्शन दर्ज किया है। साथ ही दोस्तों साल का जो आखिरी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है US Open 2026 न्यूयॉर्क में संपन्न हुआ, जिसमें जर्मनी के शीर्ष वरीयता प्राप्त एलेक्जेंडर ने घरेलू खिलाड़ी बेन शेल्टन को 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 से हराकर अपने करियर का पहला US ओपन खिताब और इस साल का दूसरा ग्रैंड स्लैम जीता है। साथ ही महिला सिंगल्स में कजाकिस्तान की एलेना रिबाकिना ने बड़ा उलटफेर करते हुए 2 बार की डिफेंडिंग चैंपियन आर्यना को हराते हुए मात दी है। इस जीत के साथ ही रिबाकिना दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी भी बन गई है। धीरज ने मेक्सिको में आयोजित आर्चरी वर्ल्ड कप फाइनल 2026 में इतिहास रचते हुए रोमांचक शूट ऑफ मुकाबले में जापान के जूनिया को 6-5 से हराकर गोल्ड मेडल जीता है। धीरज ये उपलब्धि हासिल करने वाले भारत के पहले पुरुष रिकर्व चैंपियन बने हैं। दोस्तों ये तो बातें हुई खेल जगत की, अब हम सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत।

दोस्तों, फॉर्मूला वन रेस में मर्सिडीज के उभरते सितारे किमी एंटोनेली ने मैड्रिड में आयोजित पहली स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स में शानदार जीत हासिल की है। उन्होंने रेड बुल के मैक्स को नॉरिस को पीछे छोड़ते हुए इस सीजन की अपनी 8वीं जीत दर्ज की है और चैंपियनशिप में अपनी बढ़त को भी मजबूत किया है। इसके साथ ही जापान के नगोया में 19 सितंबर से शुरू होने जा रहे एशियन गेम्स 2026 का पूरा शेड्यूल और वेन्यू आधिकारिक रूप से जारी कर दिया गया है। भारतीय टीमें और एथलीट इस महाकुंभ के लिए पूरी तरह तैयार हैं, जिसमें क्रिकेट टूर्नामेंट भी T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। तो निश्चित रूप से आज हिंदी दिवस के दिन हमें कुछ इस प्रकार की संकल्प लेने होंगे जो कि हमारी हिंदी की समृद्धि, उन्नति और प्रगति को सुनिश्चित करते हों, और हमारी भी उन्नति इन्हीं में छिपी है। निश्चित रूप से सरकारी स्तर पर भी राजभाषा विभाग ने इंटरनेट

और तकनीकी का बेहतरीन इस्तेमाल किया है। साथ ही अनेकों मोबाइल ऐप्स के जरिए भी लोग घर बैठे ऑनलाइन हिंदी सीख रहे हैं। सरकारी मंत्रालयों की वेबसाइट्स और पोर्टल अब पूरी तरह द्विभाषी यानी कि बायलिंगुअल हो चुके हैं, जिससे कि आम नागरिक सीधे सरकार से अपनी भाषा में जुड़ पा रहा है। दोस्तों, हिंदी को ग्लोबल बनाना और उसे इसी रूप में आगे बनाए रखना हम सब की जिम्मेदारी है। निश्चित रूप से आज सिलिकॉन वैली से लेकर भारत के छोटे से छोटे कस्बे तक हिंदी की गूंज डिजिटल स्क्रीन पर साफ देखी जा सकती है। ये हमारी भाषा की ताकत है, जो परंपरा को आधुनिकता से जोड़ती भी हमें नज़र आ रही है। निश्चित रूप से राजभाषा हिंदी, हमारी मातृभाषा हिंदी, उन्नति को पानी चाहिए और हम सब की उन्नति भी इन्हीं में सुनिश्चित होनी होगी। दोस्तों, अब समय हो चला है कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। आपकी दोस्त को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

युववाणी, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। श्रोताओं, आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। शाम के 5:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम महिला जगत।

रात नहीं सपने बदलते हैं, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। जज्बा रखो हमेशा जीतने का, क्योंकि नसीब बदले ना बदले लेकिन वक्त जरूर बदलता है। जी हाँ, महिला जगत कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों को आपकी अपनी रेडियो दोस्त बबीता सोनी का प्यार भरा नमस्कार। सखियों, गणेश चतुर्थी हिंदुओं का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। ये हिंदू धर्म के लोगों द्वारा हर साल बहुत साहस, भक्ति और उल्लास के साथ मनाया जाता है। ये भारत में विनायक चतुर्थी के नाम से भी लोकप्रिय है। ये प्राचीन काल से पूरे भारत में हिंदुओं के सबसे महत्वपूर्ण देवता भगवान गणेश जी, जिन्हें विघ्नहर्ता, विनायक, बुद्धि के देवता, प्रथम पूज्य आदि के नाम से जाना जाता है, को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार ये अगस्त सितंबर के महीने के बीच में भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है, जो कि आज है। सखियों, गणेश चतुर्थी का त्यौहार कई रस्में, रीति रिवाज हिंदू धर्म के लिए महत्व रखता है। विनायक चतुर्थी की तारीख करीब आते ही लोग अत्यधिक उत्सुक हो जाते हैं। अधिक समय में लोग घर के लिए सार्वजनिक पांडालों को भगवान गणेश की मिट्टी की मूर्ति लाने, 10 दिन के लिए पूजा करने और त्यौहार के अंत में लोग मूर्तियों को पानी के बड़े स्रोतों में विसर्जित करते हैं। सखियों, गणेश चतुर्थी हिंदुओं का एक पारंपरिक और सांस्कृतिक त्यौहार है। ये भगवान गणेश की पूजा, आदर और सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। भगवान गणेश देवी पार्वती और भगवान शिव के प्यारे बेटे हैं। गणेश चतुर्थी के त्यौहार महापुरुष भगवान गणेश है। प्राचीन काल में एक बार भगवान शिव हिमालय के पहाड़ों में अपनी समाधि के लिए चले गए। तब देवी पार्वती अकेली थी। उन्होंने कैलाश पर शिव की अनुपस्थिति में एक बलवान बेटे का निर्माण करने का सोचा। उन्होंने फैसला लिया कि भगवान गणेश के वो चंदन के लेप से, जो स्नान में इस्तेमाल किया गया था, के माध्यम से बनाया गया और उस मूर्ति में जीवन डाल दिया। उन्होंने उस महान बेटे गणेश के लिए एक कार्य कर दिया। उन्हें गणेश से कहा, एक दरवाजे पर, इस दरवाजे पर रहो और किसी को भी अंदर प्रवेश मत करने की अनुमति मत देना, जब तक कि मेरा आदेश ना हो। और ये कहकर बेटे के पहरे में अंदर नहाने चली गई। जल्द ही भगवान शिव अपनी समाधि से वापस आए और कैलाश पर नए लड़के को देखा, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि गणेश उन्हीं के ही पुत्र हैं। शिव अंदर आने लगे तो उन्हें आने से रोका गया। उन्होंने कहा, माता अंदर नहा रही है, आप अंदर तभी जा सकते हैं जब वो मुझे आदेश देगी। भगवान शिव ने बहुत अनुरोध किया, पर उनके बेटे ने उनको अनुमति नहीं दी। जल्द ही सभी देवताओं ने मिलकर गणेश को वैसा ही अनुरोध किया। सखियों, उन्होंने गणेश को बताया कि भगवान शिव तुम्हारे पिता है, उन्हें अनुमति दे, क्योंकि ये तुम्हारी माता से मिलने का अधिकार रखते हैं। किंतु गणेश ने इनकार कर दिया और कहा कि मैं पिता का आदर करता हूँ, पर क्या मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे तो मेरी माता द्वारा कड़ा आदेश दिया गया है कि दरवाजे से अंदर किसी को नहीं अंदर आने दिया जाए। भगवान शिव बहुत क्रोधित हो गए। तभी सभी देवताओं ने उनसे वहां से जाने की प्रार्थना की और कहा कि हमें एक और बार प्रयास करने दो। शिव के अनुयायियों गणों, विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, नारद, सर्पों आदि द्वारा ने बच्चे को शिष्टाचार सिखाना शुरू किया। इंद्र बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने उस बच्चे पर पूरी शक्ति से हमला किया। हालांकि गणेश बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे, क्योंकि वे शक्ति के अवतार के रूप में थे। गणेश ने सभी को हरा दिया। भगवान शिव दोबारा आए, क्योंकि यह उनके सम्मान का मामला था। वह नाराज हो गए और त्रिशूल से गणेश का सिर काट दिया। जैसे ही माता पार्वती बाहर आई, ये घटना को देखकर वह बहुत क्रोधित हुई। उन्होंने गणेश के सिर और शरीर को गोद में लेकर रोना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे किसी भी कीमत पर अपना बच्चा वापस चाहिए, अन्यथा मैं पूरे संसार को नष्ट कर दूंगी। सखियों, माता पार्वती के निर्णय से सभी देवी देवता ऐसे डर गए, उन्होंने भगवान शिव से कुछ करने की प्रार्थना की। शिव ने कहा कि अब पुनः इसी सिर को जोड़ना तो नामुमकिन है, किंतु किसी और के सिर को गणेश के शरीर पर जोड़ा जा सकता है। उन्होंने अपने अनुयायी गणों को सिर की खोज में भेज दिया। उन्होंने कहा, किसी भी ऐसे का सिर लेके आओ जो उत्तर की तरफ मुंह करके सोया हो और अपने बच्चे के विपरीत में सो रहा हो। शिव की बताई शर्तों के अनुसार गणों ने पूरे संसार में सिर को खोजना शुरू कर दिया। अंत में उन्हें बच्चे के विपरीत उत्तर दिशा में सोते हुए एक हाथी मिला। उन्होंने हाथी का सिर काट लिया और कैलाश पर आ गए। भगवान शिव ने गणेश के शरीर पर वह सिर जोड़ दिया। इस तरह गणेश को वापस अपना जीवन मिला। माता पार्वती ने कहा, उनका बेटा एक हाथी की तरह लग रहा है, इसलिए सब उनका मजाक बनाएंगे।
क्यों कोई उसका आदर नहीं करेगा? फिर भगवान विष्णु, शिव, ब्रह्मा, इंद्र, गण आदि सभी देवताओं ने गणेश को आशीर्वाद, शक्तियों, अस्त्र शस्त्र आदि बहुत से आशीर्वाद दिए। उन्होंने कहा कि कोई भी गणेश का मजाक नहीं बनाएगा। इसके साथ ही गणेश सभी के द्वारा भी किसी नए काम को शुरू करने से पहले पूजा जाएगा। गणेश को हर किसी के द्वारा किसी की भी पूजा में पहली प्राथमिकता दी जाएगी। जो लोग गणेश को सबसे पहले पूजेंगे वे वास्तव में ज्ञान और धन से धन्य हो जाएंगे। माता लक्ष्मी जी ने कहा कि अब से गणेश मेरी गोद में बैठेंगे और लोग ज्ञान और धन पाने के लिए मेरे साथ गणेश की पूजा करेंगे। भगवान शिव ने घोषणा की कि ये लड़का गणेश, गण प्लस ईश अर्थात गणों के भगवान कहा जाएगा। इसीलिए गणेश सब भगवानों के भगवान है। भगवान गणेश राक्षसों के लिए विघ्नहर्ता अर्थात बाधा निर्माता और अपने भक्तों और देवताओं के लिए विघ्नहर्ता अर्थात बाधाओं को नष्ट करने वाला है। उनकी कड़ी मेहनत के लिए आशीर्वाद देने वाले हैं। सखियों, ये गणेश चतुर्थी के दिन सभी पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाने वाला एक त्यौहार है और घरों में भी छोटी छोटी मूर्तियों की स्थापना की जाती है और सखियों बड़े पंडालों में भी गणेश जी का स्थापना की जाती है और बड़े तौर पर इस उत्सव को मनाया जाता है। 10 दिन बाद गणेश अनंत चतुर्दशी को गणेश भगवान का विसर्जन किया जाता है। गणेश विसर्जन हिंदू धर्म में बहुत महत्व रखता है। गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति बनी होती है जो पानी में विसर्जित की जाती है। इसका मतलब है कि इस दुनिया में सब कुछ एक दिन नष्ट हो जाएगा। गठन और बैडोल होने की प्रक्रिया कभी न खत्म होने वाला घेरा अर्थात चक्र है। हर साल गणेश जीवन के इस परम सत्य के बारे में हमें यकीन दिलाने के लिए आते हैं। तो सखियों, हमारे चिरमी चैनल परिवार की ओर से भी आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। सखियों, बातें तो आपसे यूं ही जारी रहेगी। अब आपको लिए चलते हम संगीत की दुनिया में और सुनवाते हैं ये गीत।

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा

0: राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
1: सखियों, यदि हम अपनी संस्कृति, सामाजिक प्रथाओं और रीति रिवाजों को देखें तो साफ झलकता है कि प्राचीन काल से ही महिलाएं किसी न किसी बहाने से पर्यावरण से जुड़ी हुई है। भारत में महिलाओं को पर्यावरण के प्रति मनुष्य के लगाव को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया है। आज भी महिलाओं की दिनचर्या पर गौर करें तो अपना ज्यादा समय पर्यावरण के करीब बिताती हैं। महिलाएं व्रत त्योहार के अवसर पर प्रतिदिन के कामकाज में पूजा अर्चना में अनेक वृक्षों का संरक्षण करती हैं, जैसे तुलसी, पीपल, नीम, आंवला, अशोक, केला आदि वृक्षों की देखभाल तो महिलाएं रीति रिवाज के तौर पर पीढ़ी दर पीढ़ी करती आ रही हैं। पर्यावरण संरक्षण के इतिहास पर नजर डाली जाए तो ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में नेतृत्व कर प्रकृति को बचाया है। चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, खेजड़ली आंदोलन वे आंदोलन है जिसमें महिलाओं ने पर्यावरण संरक्षण के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। सिक्यों, कार्ल मार्क्स का कथन है कि कोई भी बड़ा सामाजिक परिवर्तन महिलाओं के बिना नहीं हो सकता। पर्यावरण प्रबंधन और सतत विकास में महिलाओं का योगदान बेहद जरूरी है। इतिहास से लेकर वर्तमान तक इस कथन को कई महिलाओं ने साबित कर दिखाया है। सिक्यों, भारतीय समाज में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने और लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत भी महिलाएं बनी है। खास तौर से आदिवासी महिलाओं ने वन संपदा, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आदिवासी जनजातियों की सामाजिक, आर्थिक और समुदाय की रीति व्यवस्थाओं में पेड़ों का बहुत महत्व है। आदिवासी का समाज का रहन सहन विशेष तौर पर जल जंगल जमीन से जुड़ा हुआ है, जिसे लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखने में समुदाय की महिलाएं मुख्य भूमिका निभाती आ रही है। वर्तमान में सरकार की विकास योजनाओं के लिए जंगल की कटाई के विरोध में आदिवासी महिलाएं सबसे पहले आगे आकर इसका विरोध करती हैं। इसके लिए कई आदिवासी महिलाओं को जेल तक में डाल दिया गया था। सखियों, महिलाओं ने पर्यावरण संरक्षण में अहम भूमिका निभाई है और वर्तमान में निभा भी रही है। इसकी एक अनूठी पहल ने देश भर में पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने का काम किया है। महिलाओं ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में नई चेतना का उत्सर्जन किया है। अलग अलग आंदोलनों में ये सिद्ध कर दिया है कि जो काम पुरुष नहीं कर सकते उन्हें महिलाएं बखूबी कर सकती है। चिपको आंदोलन, खेजड़ली आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन इसका मुख्य उदाहरण है। इन आंदोलनों को जंगल में रहने वाली, पहाड़ी इलाकों में रहने वाली ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं ने सफल बनाया है, जिनसे शिक्षा अभी भी मीलों दूर है। बावजूद इन सब के उन्होंने अपने घर, अपनी जमीन को उजड़ने से पहले ही सख्त कदम उठाए। सखियों, बातों का सिलसिला तो यूं ही चलता रहेगा। अब आपको लिए चलते हम संगीत की दुनिया में और सुनवाते हैं ये गीत।

0: हेलो, हाँ हाँ आज प्रोजेक्ट देख लूंगा फिर करते हैं डील फाइनल।
1: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
1: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
1: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
2: सखियो, मोदक महाराष्ट्र का एक प्रतिष्ठित मीठा व्यंजन है जिसे भगवान गणेश को प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। कई लोगों के लिए मोदक सिर्फ एक मिठाई से कहीं बढ़कर है। ये भगवान गणेश को अर्पित की जाने वाली एक आध्यात्मिक भेंट है और समृद्धि का प्रतीक है। हिंदू परंपरा में मोदक को बप्पा का प्रिय माना जाता है, जिसे संस्कृत ग्रंथों में अक्सर मोदक प्रिय कहा जाता है। मिठाई का नाम ही मोद यानी आनंद और प्रमोद यानी प्रफुल्लता से आया है, जो परमानंद और खुशी का प्रतीक है। मोदक बनाने की मूल विधि एक ही है, एक पकौड़ी के आकार का मोदक जिसके अंदर सामग्री भरी जाती है। हालांकि अंदर भरी जाने वाली सामग्री और बाहरी परत पर आकार क्षेत्र के अनुसार विभिन्न होते हैं। उकडीचे मोदक एक मिठाई, इस मिठाई का सबसे पारंपरिक और प्रसिद्ध रूप है, जिसे चावल के आटे से बने एक पकौड़े के अंदर नारियल और गुड़ के मिश्रण को विभिन्न मसालों के साथ भरकर भाप में पकाया जाता है। जबकि उत्तर भारतीय मोदक में खोया भरा जाता है और बाहरी परत तली जाती है। प्रत्येक मोदक अपने उपयोग की सामग्री, तकनीक और परंपराओं के माध्यम से अपनी संस्कृति की कहानी बयां करते हैं। तो सखियों, आइए जानते हैं कि कई किस प्रकार तरह तरह के मोदक बनाए जाते हैं। महाराष्ट्र में उकडीचे मोदक यानी उबले हुए सबसे प्रिय प्रकार है। गणेश चतुर्थी की रस्मों का विभिन्न अंग है। चावल के आटे में बना नरम सफेद खोल पवित्रता का प्रतीक माना जाता है, जबकि गुड़ नारियल और कुछ मसालों से बनी मीठी भराई आंतरिक आनंद का प्रतीक है। मोदकों को केसर की कुछ बूंदों के साथ भाप में पकाया जाता है, जिससे उन्हें नारंगी रंग मिलता है और वे देखने में आकर्षक लगते हैं। उकडीचे मोदक को ताजे घी के साथ परोसा जाता है, जिसे भरपूर मात्रा में डालकर मीठे व्यंजन के रूप में खाया जाता है। सखियों, तले हुए मोदक। गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में लोकप्रिय तले हुए मोदक भाप में पकाए गए मोदकों की तुलना में अधिक गहरे और सुनहरे रंग के होते हैं। तले हुए मोदक ऐतिहासिक रूप से उन क्षेत्रों में प्रचलित है जहां त्योहारों की मिठाई को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए तलने का चलन था, खासकर जब तब परिवार के त्योहार के दौरान रिश्तेदारों से मिलने जाते थे। तले हुए मोदकों में भरवान अक्सर कसा हुआ नारियल होता है, जिसे चीनी या गुड़ और थोड़ी सी इलायची के साथ मिलाया जाता है। मावा या खोया मोदक। मोदक परिवार में बाद में शामिल हुआ मावा से बना मोदक 20वीं शताब्दी के दौरान उत्तर भारत में लोकप्रिय हुआ। ये मोदक शहरी मिठाइयों की दुकानों के उदय और व्यावसायिक रूप से तैयार किए जाने वाले त्योहारों के भोगों के साथ लोकप्रिय हुआ, जो लंबे समय तक चलने वाले माने जाते थे। मावा से बने मोदक भरपूर और गाढ़े होते हैं और दूध से बनी मिठाइयों के प्रति उत्तर भारत के प्रेम को दर्शाते हैं। उन्हें अक्सर मंदिरों में चढ़ाने और उपहार देने के लिए सुंदर सांचों में ढालकर बनाया जाता है। कोजू कट्टई। दक्षिण भारत में कोजू कट्टई के मोदक को काफी महाराष्ट्र के तुलना से मोदक से काफी मिलती जुलती है और विनायक चतुर्थी के दौरान भी इसे चढ़ाया जाता है। माना जाता है कि कोजू कट्टई संगम युक्त युग के त्योहारों का हिस्सा रही है, जिसमें नारियल तिल और गुड़ जैसी स्थानीय सामग्री का उपयोग करके इसकी भराई की जाती है। ये मिठाई न केवल मंदिरों में चढ़ाने के लिए बनाई गई, बल्कि पारंपरिक परंपराओं और घर पर होने वाले भव्य भोजों का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आधुनिक और फ्यूजन किस्में। आधुनिक भारत में मोदक अपने पारंपरिक स्वरूप से आगे बढ़कर चॉकलेट, सूखे मेवे और नमकीन के रूप में भी सामने आने लगे। भले इनकी उत्पत्ति प्राचीन काल से नहीं हुई हो, लेकिन ये भारतीय त्योहारों के भोजन के बदलते रूप को दर्शाते हैं, जो परंपरा के प्रति सम्मान और रचनात्मकता के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। मोदक का आधुनिक रूप दिखाता है कि भारतीय पाककला किस प्रकार रचनात्मक बनाई गई है, फिर भी सैकड़ों साल पुरानी परंपराओं का सम्मान करती है। भारत भर में मोदक का आकार भले ही एक जैसा हो, लेकिन इसके अवयव विधियों और अर्थों के क्षेत्रवार अंतर होता है। महाराष्ट्र में जो मोदक भाप में पकाया जाता है, वहीं गुजरात में तला जाता है। उत्तर भारत में खोया से बनाया जाता है। तमिलनाडु के घरों में तिल से तैयार किया जाता है। प्रत्येक प्रकार की स्थानीय उपज, जलवायु और रीति रिवाजों को दर्शाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि एक ही त्योहार की मिठाई में इतिहास की कई परतें समाहित हो सकती है। सखियों, अब आपको लिए चलते हैं हम संगीत की दुनिया में और सुनवाते हैं हमारे कार्यक्रम का ये आखिरी गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला जगत। श्रोताओं, ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। शाम के 6 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। आज हिंदी दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है और 52 करोड़ से अधिक लोगों की पहली भाषा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत की संस्कृति और साहित्य कमल की तरह हैं, जिसकी हर क्षेत्रीय भाषा उसकी एक पंखुड़ी को दिखाती है। श्री शाह ने ये बात आज नवी मुंबई में 2 दिन के हिंदी दिवस और 6ठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर कही।
1: भारतीय साहित्य एक विकसित सतदल कमल की तरह है, जिसकी प्रत्येक पंखुड़ी हमारी प्रादेशिक भाषाएं। किसी भी एक पंखुड़ी को नष्ट होने से कमल का सौंदर्य नष्ट हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि प्रादेशिक भाषाएं रानी बनकर प्रांत में विराजमान रहे और इन सभी भाषाओं के बीच में हिंदी मध्यमणि बनकर इस सतदल कमल का सौंदर्य बढ़ाती रहे।
0: श्री शाह ने कहा कि सभी क्षेत्रीय भाषाओं को पूरा सम्मान और गरिमा देते हुए हिंदी को केंद्रीय भूमिका निभानी चाहिए।
2: भाषा किसी भी समाज की स्मृति होती है, उसका आत्मबोध होती है। हिंदी ने इस विविधता के बीच संवाद, संपर्क और समन्वय की भाषा के रूप में देश के विभिन्न वर्गों और समुदायों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी का विकास भी तभी सार्थक है जब सभी भारतीय भाषाओं के सम्मान, संरक्षण और संवर्धन के साथ आगे बढ़े।
0: इस अवसर पर राजभाषा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य और योगदान के लिए 11 संस्थाओं और लोगों को सम्मानित किया गया। मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने मिजो संस्कृति को संरक्षित रखते हुए हिंदी सीखने का आह्वान किया है। उन्होंने आज आइजोल में हिंदी दिवस समारोह में ये बात कही। अमेरिका के एक विश्लेषक ने 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को बहुत सफल बताया है। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली घोषणापत्र अलग अलग विचारों वाले देशों के बीच आम सहमति बनाने की भारत की क्षमता को दर्शाता है। अटलांटिक काउंसिल में दक्षिण एशिया मामलों के वरिष्ठ फेलो माइकल कोगेलमैन ने कहा कि ये घोषणापत्र भारत की बढ़ती वैश्विक समन्वय क्षमता और ब्रिक्स की बढ़ती स्वीकार्यता को दर्शाता है। ब्रिक्स नेताओं ने कहा है कि ऊर्जा सुरक्षा, सामाजिक तथा आर्थिक विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा और सभी देशों के कल्याण की महत्वपूर्ण नींव है। नई दिल्ली में 2 दिन के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान सदस्य देशों ने ऊर्जा बाजारों में स्थिरता सुनिश्चित करने और विभिन्न स्रोतों के जरिए ऊर्जा का निर्बाध प्रवाह बनाए रखने तथा महत्वपूर्ण ऊर्जा प्रतिष्ठान को सुरक्षित रखकर ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया। सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगाह किया कि प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों को आर्थिक या राजनीतिक दबाव के साधन के रूप में इस्तेमाल करने से प्रगति में बाधा आ सकती है। सरकार ने कहा है कि वर्ष 2025 में उत्तरी सीमाओं के सामने चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी बलों की तैनाती में उल्लेखनीय कमी देखी गई। रक्षा मंत्रालय ने वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 में कहा है कि भारत और चीन के बीच

0: राजनीतिक, राजनयिक और सैन्य स्तर पर द्विपक्षीय बातचीत से उत्तरी सीमाओं पर स्थिरता आई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि सेना के अथक प्रयासों के कारण जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को नई दिल्ली के यशोभूमि में पांचवें सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। इसमें 40 से अधिक देशों के 600 से अधिक प्रदर्शक, 300 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और प्रतिभागी भाग लेंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में लंबे समय से चल रहे विरोध प्रदर्शनों और अशांति पर चिंता व्यक्त की है। परिषद ने कहा कि प्रदर्शनों को अब 100 दिन पूरे हो चुके हैं, जिससे अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है और व्यापक क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। परिषद ने चेतावनी दी कि सार्थक बातचीत में किसी भी प्रकार की और देरी से जनता में असंतोष, अविश्वास और अस्थिरता बढ़ सकती है। देश भर में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है, जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 103.7 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं, हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 6:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। ये फिल्म संगीत की पहली पेशकश फिल्म वास्तव से। शब्द रचना समीर की, संगीत दिया है जतिन ललित ने और इसे गाया है रविंद्र साठे और साथियों ने कुछ इस तरह से। सभी श्रोताओं को आकाशवाणी नागौर के परिवार की ओर से हिंदी दिवस और गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं।

लीजिए सुनिए लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर को फिल्म दो दिलों की दास्तां में। अनजान के बोलों को संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

FM 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सुन रहे हैं RJ महावीर के साथ फिल्म संगीत। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत की अगली और आखिरी पेशकश, फिल्म चमत्कार से। शब्द रचना आनंद बख्शी की है, संगीत दिया है अनु मलिक ने और इसे गाया है कुमार सानू और साथियों ने।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। श्रोताओं, ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। शाम के 6:20 हुए हैं। लीजिए सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम माटी के स्वर।

ये है लोक संगीत के कार्यक्रम माटी के स्वर की पहली प्रस्तुति भजन के रूप में।

0: FM 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम माटी के स्वर। इस कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति आप सुनेंगे इस ब्रेक के बाद।
1: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
0: लीजिए अब सुनिए समूह स्वर में ये देशभक्ति गीत।

अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम माटी के स्वर। श्रोताओं, आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। शाम के 6:30 होने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार, तत्पश्चात होंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राजस्थान नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा का पलड़ा भारी, जयपुर, कोटा, उदयपुर और भीलवाड़ा नगर निगमों में पार्टी को पूर्ण बहुमत। बीकानेर और पाली निगमों में कांग्रेस को जीत मिली, अजमेर में पार्टी को बढ़त, भरतपुर नगर निगम में निर्दलियों का दबदबा। राज्य में नए मौसमी तंत्र के असर से बारिश की गतिविधियां अगले दो दिनों तक जारी रहने के आसार। और गणेश चतुर्थी पर समूचे प्रदेश में गणपति बप्पा मोरिया की गूंज, विभिन्न स्थानों पर कल शोभा यात्राएं निकाली जाएगी। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन, और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में 309 नगरीय निकायों में हुए चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त हासिल हुई है। 10,245 वार्डों में सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हुई। इनमें 10 नगर निगम, 47 नगर परिषद और 252 नगर पालिकाएं शामिल हैं। राजधानी जयपुर, कोटा, उदयपुर और भीलवाड़ा नगर निगमों में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला है। अलवर में भाजपा को बढ़त मिली है, वहीं बीकानेर में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला है। कांग्रेस पार्टी को अजमेर और पाली में बढ़त हासिल हुई है, वहीं भरतपुर में 65 में से 38 वार्ड जीतकर निर्दलियों ने बड़ी सफलता हासिल की है। जोधपुर नगर निगम की 100 में से भाजपा और कांग्रेस दोनों प्रमुख दलों ने 44-44 सीटें जीती है, वहीं 11 स्थानों पर निर्दलीय काबिज हुए हैं। 47 नगर परिषदों में से 21 में भाजपा और 17 में कांग्रेस को बढ़त हासिल हुई है। इसी तरह 252 नगर पालिकाओं में से 144 में भाजपा और 92 में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। सत्तारूढ़ भाजपा का इन चुनावों में पलड़ा भारी रहा है। अब से कुछ देर पहले भाजपा कार्यालय पहुंचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य सरकार के कामकाज पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि ये जीत वर्तमान राज्य सरकार के 2.5 साल के कार्यकाल पर जनता की मोहर है।
1: देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 2.5 वर्ष में राजस्थान में जो ऐतिहासिक कार्य हुए हैं, ये राजस्थान की जनता ने उन पर मोहर लगाने का काम किया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत, विकसित राजस्थान का जो संकल्प है, उसे जनता ने स्वीकार करते हुए उसको अपनाया है। मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि राजस्थान के युवाओं ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर फिर से भरोसा जताया है, और देश का युवा निश्चित रूप से मैं कहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है।
0: दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निकाय चुनाव परिणामों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाजपा ने मनमाने तरीके से परिसीमन कर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है। उन्होंने पुलिस की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठाते हुए इसे पक्षपातपूर्ण बताया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने जयपुर में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि इन चुनावों में पूरी ताकत झोंकने के बावजूद भाजपा को इच्छित जनादेश नहीं मिला है।
2: 35.35 और कांग्रेस का जो है 34.35, 1% भी मुश्किल से ये अंतर रह पाया है नगर निकायों में। शहरों के अंदर कि जो वार्डों की संख्या है उसमें भी कोई ज्यादा फर्क नहीं है कि इनका जो प्रतिशत था विधानसभाओं के अंदर 41.69% भारतीय जनता पार्टी का, और लोकसभा के अंदर 50.14% इनका वोट शेयर था। 50 से 15% की कमी इससे 2 साल के अंदर अंदर भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के कारण से आई है।
0: निकाय चुनावों के नतीजों पर और जानकारी हमारे जयपुर संवाददाता से।
3: शहरों की सरकार चुनने के लिए कुल वार्डों में से भाजपा ने करीब 41 फीसदी, कांग्रेस ने 35 फीसदी, वहीं 22 प्रतिशत वार्डों में अन्य दलों और निर्दलियों ने जीत दर्ज की। ये चुनाव सत्तारूढ़ भाजपा और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के लिए एक परीक्षा की तरह थे, जिसमें बढ़त हासिल कर भाजपा यह संदेश देने में सफल रही कि जनता केंद्र और राज्य सरकार के कामकाज से खुश है। दूसरी ओर विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस का प्रदर्शन भी निराशाजनक नहीं कहा जा सकता। कांग्रेस पार्टी ने भाजपा को बड़ी जीत हासिल करने से रोका, साथ ही कई निकायों में स्पष्ट बहुमत भी प्राप्त किया। दोनों दलों के बागी प्रत्याशी भी बड़ी संख्या में जीते हैं। इन नतीजों के साथ ही निकायों में बोर्ड बनाने के लिए बहुमत जुटाने की कवायद शुरू हो गई है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: इस बीच निकायों के अध्यक्ष पदों के लिए अधिसूचना कल जारी होगी। 16 सितंबर तक नामांकन भरे जाएंगे, 21 सितंबर को मतदान होगा और इसी दिन नतीजे घोषित किए जाएंगे। 22 सितंबर को उपाध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होगी। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में आज नवी मुंबई में राजभाषा गौरव और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 2025-26 प्रदान किए गए। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने ये पुरस्कार वितरित किए। गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग की ओर से आयोजित किए जा रहे दो दिन के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को श्री शाह ने संबोधित किया। उन्होंने राष्ट्रगीत वंदे मातरम को देश का गौरव बताया।
4: वंदे मातरम की उद्घोषणा के साथ न केवल आजादी की उत्कंठता को, आजादी प्राप्त करने की तीव्र भावना को जागरूक किया, इसके साथ साथ भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की नींव डालने का काम भी बंकिम चंद्र जी ने किया था। आजादी के बाद भी इसको पूर्ण स्वरूप से स्वीकार करते करते 80 साल हो गए। नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले जिन्होंने वंदे मातरम को फिर से बार पूर्ण स्वरूप गौरव के साथ सरकारी समारोह में गाने का काम किया।
0: आज विश्व हिंदी दिवस है। 1949 में आज ही के दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। दुनिया में आज हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। ये 52 करोड़ से अधिक लोगों की पहली भाषा है। हिंदी दिवस भाषा का उत्सव होने के साथ ही हिंदी के प्रति जागरूकता बढ़ाने का अवसर है। हिंदी ने सदियों से भावनाओं को शब्द दिए हैं। ये संवाद का माध्यम होने के साथ ही संस्कारों की भी पहचान है। हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार और समालोचक नंद भारद्वाज ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि हिंदी बोलने, पढ़ने, लिखने के साथ ही हमें इसे और आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए।
5: हिंदी हमारी राष्ट्रीय एकता की पहचान हमेशा से रही है। स्वाधीनता संग्राम की भी संपर्क भाषा एक तरह से हिंदी ही रही है, जिसके माध्यम से हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने एक माहौल बनाया, जन जागरण का, लोक जागरण का, और लोकतंत्र के प्रति उनके मन में विश्वास पैदा किया। जब देश आजाद हुआ और हमारा संविधान लागू हुआ तो ये जरूरी हुआ तो उसकी एक भाषा भी होनी चाहिए जो उसे पूरे देश के सारी भाषा भाषियों को एक सूत्र में बांध सके। हिंदी इस दृष्टि से और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वो हमारे देश की संपर्क भाषा है, राजभाषा है, हमारे देश की पहचान है।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य में हाल ही में सक्रिय हुए नए मौसमी तंत्र में बारिश की गतिविधियां अपेक्षाकृत कम रही हैं। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के सिस्टम की दिशा में दक्षिण की ओर सरकने से प्रदेश में बारिश उम्मीद से कम हुई है। हालांकि राज्य के दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी हिस्सों में बारिश की गतिविधियां 16 सितंबर तक बनी रहने का अनुमान है। इस बीच आज भीलवाड़ा में दोपहर बाद कुछ देर मूसलाधार बारिश हुई। जालौर के आहोर और बागोड़ा में भी गरज के साथ झमाझम पानी बरसा। भीनमाल और सायला में भी रिमझिम बारिश का दौर चला। इससे पहले बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, हनुमान प्रतापगढ़ और सलूंबर जिलों में कहीं कहीं मध्यम से भारी बरसात हुई। जयपुर, अलवर, कोटपुतली बहरोड, खैरथल, तिजारा, भीलवाड़ा, कोटा, बारा और झालावाड़ जिले में भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। उधर पश्चिमी राजस्थान के ज्यादातर हिस्सों में सितंबर महीने के दूसरे सप्ताह में भी गर्मी और उमस का असर बना हुआ है। श्रीगंगानगर में पारा 40 डिग्री के पास पहुंच गया। बाड़मेर और जैसलमेर में भी अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। दिन का तापमान सामान्य से अधिक रहने से इन क्षेत्रों में गर्मी और उमस महसूस की जा रही है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने आज उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग की बैठक ली। सचिवालय में हुई इस बैठक के दौरान विभाग की विभिन्न योजना और कामों की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने प्रदेश के युवाओं को उच्च शिक्षा के साथ उनके विषय संबंधी उद्योगों में व्यावहारिक अनुभव देने के लिए अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम को प्रभावी रूप से लागू करने की बात कही। समूचे देश और प्रदेश में आज गणेश चतुर्थी का पर्व श्रद्धापूर्वक मनाया जा रहा है। ये दिन देवों में प्रथम पूजनीय भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक माना जाता है। भगवान गणेश को बुद्धि, विवेक, ज्ञान, समृद्धि और सौभाग्य का देवता कहा जाता है। गणेश चतुर्थी के अवसर पर चारों ओर गणपति बप्पा मोरिया की गूंज है। राजधानी जयपुर के प्रसिद्ध मोती डूंगरी मंदिर में दर्शनार्थियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश मेले में भी आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। भारी संख्या में भक्त त्रिनेत्र के दरबार में पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। बाड़मेर के रातानाड़ा स्थित गणेश मंदिर में भी वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। राजधानी जयपुर सहित विभिन्न स्थानों पर कल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राजस्थान नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा का पलड़ा भारी। जयपुर, कोटा, उदयपुर और भीलवाड़ा नगर निगमों में पार्टी को पूर्ण बहुमत। बीकानेर और पाली निगमों में कांग्रेस को जीत मिली। अजमेर में पार्टी को बढ़त। भरतपुर नगर निगम में निर्दलियों का दबदबा। राज्य में नए मौसमी तंत्र के असर से बारिश की गतिविधियां अगले दो दिनों तक जारी रहने के आसार। और गणेश चतुर्थी पर समूचे प्रदेश में गणपति बप्पा मोरिया की गूंज। विभिन्न स्थानों पर कल शोभा यात्राएं निकाली जाएंगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से धौलपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं गौरव शर्मा। धौलपुर जिले के नगर निकायों में हुए चुनाव के परिणाम आज जारी हुए। बाड़ी नगर पालिका की 45 सीटों में से 21 पर कांग्रेस ने, वहीं 8 पर बीजेपी ने और शेष सीटों पर अन्य ने जीत हासिल की। बसेड़ी नगर पालिका की बात करें तो वहां 25 सीटों में से 9 पर निर्दलीय और 8-8 पर बीजेपी तथा कांग्रेस ने जीत हासिल की। मनिया नगर पालिका के 20 वार्डों में से 13 सीटों पर कांग्रेस विजयी रही। राजाखेड़ा में भी कांग्रेस आगे रही। 35 में से 23 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की। वहीं सेपो नगर पालिका में 20 सीटों में से कांग्रेस ने 7 और बीजेपी ने 6 सीटें जीती। शेष सीटें अन्य के खातों में गई। सर मथुरा नगर पालिका की 25 सीटों में से 15 सीटों पर जीत के साथ कांग्रेस आगे रही। इससे पहले जिले में नगरीय निकाय चुनाव के तहत मतदान दो चरणों में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। धौलपुर नगर परिषद के साथ ही राजाखेड़ा, मनिया, सेपऊ, बाड़ी, बसेड़ी और सर मथुरा नगर पालिकाओं में मतदान हुआ। नवगठित मनिया, सेपऊ, बसेड़ी और सर मथुरा नगर पालिकाओं में पहली बार मतदान हुआ। पहले चरण में धौलपुर, राजाखेड़ा, मनिया और सेपऊ में वोटिंग हुई। धौलपुर के 60 वार्डों में 74.63%, राजाखेड़ा में 81.28%, मनिया में 85.13% और सेपऊ में 90.86% मतदान हुआ। दूसरे चरण में बाड़ी, बसेड़ी और सरमथुरा में 73,290 मतदाताओं ने वोट डाले और 82.36% मतदान हुआ। जिले में स्वतंत्रता दिवस का मुख्य कार्यक्रम पुलिस लाइन धौलपुर में आयोजित किया गया। सामान्य तौर पर यह कार्यक्रम आरएसी मैदान में होता है, लेकिन अधिक बारिश के कारण मैदान में पानी भर जाने से इस बार कार्यक्रम स्थल में बदलाव किया गया। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने ध्वजारोहण किया और परेड का निरीक्षण कर मार्च पास्ट की सलामी ली। समारोह में स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों, शहीदों के परिजनों और जिले की प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। सावन के महीने में जिले के शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ रही। लोगों ने मंदिरों में पूजा अर्चना की और भगवान शिव का विशेष अभिषेक किया। सैपऊ स्थित भोला महादेव मंदिर पर मेला भरा। इसके अलावा चोपड़ा महादेव, भूतेश्वर महादेव, भोला मंदिर, अचलेश्वर महादेव और मचकुंड स्थित महादेव मंदिर में भी विशेष पूजा अर्चना के कार्यक्रम हुए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर जिले में घरों और मंदिरों में भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। तीर्थराज मचकुंड को सजाया गया। लाडली जगमोहन मंदिर और जगन्नाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना और संगीत के कार्यक्रम हुए। रात 12 बजे आरती और पूजा अर्चना के साथ भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया और प्रसाद वितरित किया गया। गणेश चतुर्थी का पर्व भी जिले भर में आज श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। गणपति मंदिरों में विशेष धार्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं। इससे पहले रक्षाबंधन का पर्व जिले में पारंपरिक रूप से मनाया गया। बहनों ने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी और उनकी लंबी उम्र की कामना की। भाइयों ने बहनों की रक्षा का संकल्प लिया। पुराने शहर में शाम के समय फुलरियों का मेला आयोजित हुआ, जिसमें ससुराल से आई बहन बेटियों ने हिस्सा लिया। विश्व आदिवासी दिवस पर जिले में कई कार्यक्रम हुए। सर मथुरा उपखंड में आदिवासी समुदाय की ओर से भिंडीपुरा गांव के मीनेश्वर भगवान मंदिर परिसर में कार्यक्रम रखा गया। इसमें आदिवासी संस्कृति, परंपरा और सामाजिक जागरूकता पर चर्चा की गई। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती भी श्रद्धा भाव के साथ मनाई गई। समाज में एकता, भाईचारे और जागरूकता का संदेश दिया गया। जिले में मानसून का पिछले दिनों मिलाजुला असर रहा। हालांकि सितंबर के दूसरे सप्ताह में जिले में 3 दिन लगातार बारिश हुई और 182 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। अधिक बारिश के कारण सागरपाड़ा मोहल्ले में एक पक्का मकान गिर गया। वहीं आंगई बांध में पानी की आवक बढ़ने पर सभी गेट खोलकर पार्वती नदी में पानी छोड़ा गया। चंबल नदी का जलस्तर भी खतरे के निशान तक पहुंच गया। इस बीच बारिश से लोगों को गर्मी से राहत भी मिली। इसके साथ ही धौलपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
7: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूं, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा रो पलड़ो भारी। जयपुर, कोटा, उदयपुर और भीलवाड़ा नगर निगम में भाजपा ने पूरो बहुमत मिलियो। बीकानेर और पाली नगर निगम में कांग्रेस ने जीत मिली। अजमेर में कांग्रेस ने बढ़त। भरतपुर नगर निगम में निर्दलीय रतौरों जीतण वाला रो दबदबो। राज्य में बारिश आवता 2 दिन ताई जारी रहवण रा आसार। और गणेश चौथ रे मौके पूरा प्रदेश माए गणपति बप्पा मोरियारी गूंज। न्यारी न्यारी थोड़ा काल शोभा यात्रावा निकाली चावेला। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। प्रदेश माए 309 नगरीय निकायां रा लाडला दिना भ्या चुनाव माए भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त मिली है। 10 नगर निगमा, 47 नगर परिषदा और 252 नगर पालिकावां रा 10,245 वार्डा री ईवीएम माई बंद वोटा री आज सुमारे 8 बजे गिनती शुरू हुई। राजधानी जयपुर, कोटा, उदयपुर और भीलवाड़ा नगर निगम माई भाजपा ने साफ बहुमत मिलियो है। अलवर माई भाजपा ने बढ़त मिली है, जबकि बीकानेर माई कांग्रेस ने स्पष्ट बहुमत मिलियो है। कांग्रेस ने अजमेर और पाली माई बढ़त हासिल हुई। भरतपुर रा 65 मायू 38 वार्डा माय जीत और निर्दलीय उम्मीदवार मोटी कामयाबी हासिल कीनी। जोधपुर नगर निगम री 100 मायू भाजपा और कांग्रेस दोनों ने 44-44 सीटा मिली, जबकि 11 वार्डा माय निर्दलीय उम्मीदवार जीत्या है। 47 नगर परिषदा मायू 21 माय भाजपा और 17 माय कांग्रेस ने बढ़त हासिल हुई। 252 नगर पालिकावां मायू 144 माय भाजपा और 92 माय कांग्रेस जीत हासिल कीनी। राज्य में सत्ताधारी भाजपा और विपक्षी खास पार्टी कांग्रेस दोनों ही चुनाव माय जीत रो दावो कीनो है। अब थोड़ी देर पहले जयपुर रा प्रदेश भाजपा कार्यालय में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा खबरनवीसा सागे बातचीत करता था का कहो कि जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य री मौजूदा सरकार रा कामकाज माथे भरोसो जतायो है। वह कहो कि जनता राज्य री मौजूदा सरकार रा 2.5 साल रा कामकाज माथे सहमति री छाप लगाई है।
1: देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले ढाई वर्ष में राजस्थान में जो ऐतिहासिक कार्य हुए हैं, ये राजस्थान की जनता ने उन पर मोहर लगाने का काम किया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत, विकसित राजस्थान का जो संकल्प है, उसे जनता ने स्वीकार करते हुए उसको अपनाया है। मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि राजस्थान के युवाओं ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर फिर से भरोसा जताया है। और देश का युवा, निश्चित रूप से मैं कहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है।
7: दूजी कानी राज्य रा पहली वाला मुख्यमंत्री और कांग्रेस रा आला नेता अशोक गहलोत निकाय चुनाव रा नतीजा माथे प्रतिक्रिया देता थका भाजपा माथे मनमान्या तरीकाओं परिसीमन कर और सरकारी मशीनरी रो दुरुपयोग करण रो आरोप मांडियो। वह पुलिस री भूमिका माथे ही गंभीर सवाल उठाता थका इनने दुभात करण वाली बताई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जयपुर में खबर नवीसा सागे बातचीत करता था का कहो के ई चुनाव में पूरो जोर लगाया पाछे भाजपा ने छाव तो जनादेश नहीं मिलियो
2: 35.35 और कांग्रेस का जो है 34.35, 1% भी मुश्किल से ये अंतर रह पाया है नगर निकायों में शहरों के अंदर। जो वार्डों की संख्या है उसमें भी कोई ज्यादा फर्क नहीं है कि इनका जो प्रतिशत था विधानसभाओं के अंदर 41.69% भारतीय जनता पार्टी का और लोकसभा के अंदर 50.14% इनका वोट शेयर था। 50 से 15% की कमी इससे दो साल के अंदर अंदर भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के कारण से आई है।
7: निकाय चुनाव रा नतीजा ना बारा माय और जानकारी माणा खबर नवीसू।
3: शहरों की सरकार चुनने के लिए कुल वार्डों में से भाजपा ने करीब 41%, कांग्रेस ने 35%, वहीं 22% वार्डों में अन्य दलों और निर्दलियों ने जीत दर्ज की। ये चुनाव सत्तारूढ़ भाजपा और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के लिए एक परीक्षा की तरह थे, जिसमें बढ़त हासिल कर भाजपा यह संदेश देने में सफल रही कि जनता केंद्र और राज्य सरकार के कामकाज से खुश है। दूसरी ओर विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस का प्रदर्शन भी निराशाजनक नहीं कहा जा सकता। कांग्रेस पार्टी ने भाजपा को बड़ी जीत हासिल करने से रोका, साथ ही कई निकायों में स्पष्ट बहुमत भी प्राप्त किया। दोनों दलों के बागी प्रत्याशी भी बड़ी संख्या में जीते हैं। इन नतीजों के साथ ही निकायों में बोर्ड बनाने के लिए बहुमत जुटाने की कवायद शुरू हो गई है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
7: स्थानीय निकायों रा अध्यक्ष ओहदा सारू चुनाव री अधिसूचना काल जारी करी जावेला। पर्चा 16 सितंबर ताई दाखिल करया जा सकेला। अध्यक्ष ओहदा सारू 21 सितंबर ने वोट पड़ेला और वाई दिन नतीजा रो ऐलान करती हो जावेला। 22 सितंबर ने उपाध्यक्ष रो चुनाव भेला। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नवी मुंबई में राखी जा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में राजभाषा गौरव और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 2025-26 दीना। गृह मंत्रालय रा राजभाषा विभाग री ओर राख्या जा रहा दो दिन रा इन सम्मेलन रा उद्घाटन सत्र में गृह मंत्री राष्ट्रगीत वंदे मातरम ने देश रो गौरव बतायो।
4: वंदे मातरम की उद्घोषणा के साथ न केवल आजादी की उत्कंठता को, आजादी प्राप्त करने की तीव्र भावना को जागृत किया, इसके साथ साथ भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की नींव डालने का काम भी बंकिम चंद्र जी ने किया था। आजादी के बाद भी इसको पूर्ण स्वरूप से स्वीकार करते करते 80 साल हो गए। नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले जिन्होंने वंदे मातरम को फिर से बार पूर्ण स्वरूप गौरव के साथ सरकारी समारोहों में गाने का काम किया।
7: आज विश्व हिंदी दिवस है। साल 1949 में आज हीरा दिन संविधान सभा देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी ने देश री आधिकारिक भाषा रा तौर काम ले उन्होंने किन्नो हो। दुनिया में सब 32 बोली जावन वाली भाषाओं में शामिल हिंदी 52 करोड़ बत्ता लोगों री पहली भाषा है। हिंदी बातचीत रो जरियो वे वणसा गई संस्कारां री पिछाण है। हिंदीरा नामी कथाकार और समालोचक नंद भारद्वाज आकाशवाणी सागे बातचीत करता थका कहो कि हिंदी बोलन बांचन और मांडन सागे इन्हें और आगे बढ़ावन री कोशिश करी जावनी चाहिए।
5: हिंदी हमारी राष्ट्रीय एकता की पहचान हमेशा से रही है। स्वाधीनता संग्राम की भी संपर्क भाषा एक तरह से हिंदी ही रही है, जिसके माध्यम से हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने एक माहौल बनाया जन जागरण का, लोक जागरण का, और लोकतंत्र के प्रति उनके मन में विश्वास पैदा किया। जब देश आजाद हुआ और हमारा संविधान लागू हुआ तो ये जरूरी हुआ तो उसकी एक भाषा भी होनी चाहिए जो उसे पूरे देश के सारी भाषा भाषियों को एक सूत्र में बांध सके। हिंदी इस दृष्टि से और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वो हमारे देश की संपर्क भाषा है, राजभाषा है, हमारे देश की पहचान है।
7: ऐसा समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। राज्य में चौमासा री बिरखा फिलहाल मंदी पड़की है। हालांकि प्रदेश रा लंकाऊ और लंकाऊ उगनी हल्का में 16 सितंबर ताई बिरखा वेवन रा आसार है। इन बीच आज भीलवाड़ा माए दोपहर पाछे थोड़ी देर ताई झमाझम में बरसियो। जालौर जिला रा आहोर और बागोड़ा माए चोखी बिरखा हुई। भीनमाल और सायला माए रिमझिम बारिश हुई। इनु पहली बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और सलूम्बर जिला माए कठे कठे चोखो में बरसियो। जयपुर, अलवर, कोटपुतली, बहरोड़, खैरथल, तिजारा, भीलवाड़ा, कोटा, बारां और झालावाड़ जिला माए हल्क्यू मझला दर्जा री बिरखा हुई। तुजिकानी प्रदेश का आतुणी हल्का माए घनखर ठोड़ा आधो भादवो निकलिया पाछे गर्मी और उमस रो असर है। श्री गंगानगर माए पारो 40 डिग्री सेल्सियस कने, जबकि बाड़मेर और जैसलमेर माए अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस ने पार कर कियो। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास आज उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग रा अहलकारा सागर मीटिंग कर महकमारी न्यारी न्यारी योजनावां और कामा रो जायजो लीनो। वह नौजवाना ने आला दर्जारी भनाई लिखाई सागे विषयों जुड़िया उद्योगा माए व्यावहारिक अनुभव देवन सारू अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम ने असरदार तरीका लागू करन बाबत कहो। मुख्य सचिव पन्ना धाय बाल गोपाल योजना रा तहत स्कूला माए दूध पाउडर नियमित तौर पुगावन और आपूर्ति श्रृंखला री लगातार निगरानी करण सारू ही कहो। गणेश चौथ आज श्रद्धा भाव सागे मनाई जा रही है। ओ दिन सबों पहली पूजा जावन वाला गजानंद जी रा जन्म रो प्रतीक मान्यो जावे है। भगवान गणेश ने बुद्धि, विवेक, ज्ञान, समृद्धि और सौभाग्य रा देवता मान्या जावे है। गणेश चौथ रे मौके राजधानी जयपुर रा मान्योड़ा मोती डूंगरी मंदिर माए दर्शन करण वाला री लंबी लेना नजर आ रही है। रणथंभौर माए भरयात्री नेत्र गणेश मेला माई मोटी तादाद माए जात्रु श्री नेत्र गणेश जी रा दरबार माए पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि री कामना कर रहा है। बाड़मेर जिला माए रातानाड़ा रा गणेश मंदिर माए भक्ति रो वातावरण बनियोड़ो है। राजधानी जयपुर समेत न्यारी न्यारी ठोड़ा काल गणेश जी री शोभा यात्रा निकालवा रा कार्यक्रम राख्या जावेला। भारतीय रिजर्व बैंक साइबर धोखाधड़ी, विवादित लेन देन और ठगी रे जरिए हासिल करी जी रकम जमा करावन सारू किराया रा खाताओं जुड़िया मामला रा निपटारा बाबत नुवो मसौदो जारी कीनो है। सुप्रीम कोर्ट रा हुकम पाछे तैयार करी जी मसौदा रो मकसद साइबर ठगी री जांच रा नाम पूरा खाताओं लेन देन माथे बेमियादी भगत ताई रोक लगावन री बजाय शंका वाली रकम नहीं रोकनो है। बैंक आ रोक बत्तों बत्ता 60 दिन ताई लगा सकेला। मसौदारा मुजब किनी लेन देन माथे शंका वेवन री सूरत माए बैंक ग्राहकाने इनरी जानकारी देवेला। ग्राहकाने लेन देन री वैधता साबित करन सारू 20 दिन मिलेला, जदके बैंकाने ग्राहका रा जवाब री 10 दिन माए समीक्षा करनी भेला। ग्राहकानियों ते मियाद माए जवाब नी देवन री सूरत माए बैंक मामला ने नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल जरिए पुलिस ने सौंप देवेला। कोलकाता माए भी अखिल भारतीय अंतर रेलवे एथलेटिक्स चैंपियनशिप माए उत्तर पश्चिम रेलवे रा खिलाड़ी सोना रा 4 और कांसा रा 3 तमगा हासिल कीना है। उत्तर पश्चिम रेलवे रा मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन आ जानकारी दीनी। आखिर माए खास समाचार एक कर फेर सुन ले रहो। नगरीय निकाय चुनाव माए भाजपा रो पलड़ो भारी। जयपुर, कोटा, उदयपुर और भीलवाड़ा नगर निगम माए भाजपा ने पूरो बहुमत मिलियो। बीकानेर अरपाली नगर निगम में कांग्रेस ने जीत मिली, अजमेर में पार्टी ने बढ़त, भरतपुर नगर निगम में निर्दलीय रातौरू जीतने वाला रो दबदबो, राज्य में बारिश आवता दो दिन ताई जारी रहवन रा आसार, और गणेश चौथ रे मौके पूरा प्रदेश में गणपति बप्पा मोरियारी गूंज न्यारी न्यारी ठोड़ा काल शोभा यात्रावां निकाली जावेला। ईसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो थियो। नमस्कार।
8: FM 103.7 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं, यह है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। शाम के 7 बजे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती बाड़ी।

0: खेतीबाड़ी कार्यक्रम सुनने सगला भाया बाया ने रणवीर भाई रा घने मान सुन अपना भाया चौपाल माते नित नुई कामरी बात हूंती रहे और देखो कि रोजीना आप हूँ हताई करा और हताई रे माने न्यारा न्यारा विचार ऊँता रहे रोजीना। यूं देखा हाँ कि पेलडेर हमें जमाने जे बात करानी तो भाई यूं है कि पहली तो कोई खास रुतरे माँ नहीं है जो कोई अनाज उगाउड़ नहीं बात करा तो सब्जी री बात करा है सब्जी या फल फ्रूट कोई खास सीजन में आया करता पर हमें जमानो बदल गयो नई नई तकनीक आ गई तो हमें पूरे साल चाहे सब्जी लेनी हुए और चाहे फल फ्रूट लेना हुए या पूरे साल है जो अपने मिलता रहे इनो कारण कहीं है कि साल भर ऐ चीज़ा पैदा करीजे। तो आज आप बात कर रही हाँ पोली हाउस रे माने सब्जियां रो उच्च तकनीकी उत्पादन की कर बह सके इमें वर्मी कुलाइट परलाइट और कोकोपिट रो आप रो न्यारो महत्व है। वर्मी कुलाई में दो भाग एलुमिना एक भाग सिलिका वे और फैलनाले खनिज क्ले वे इनकी जल धारण क्षमता ज़्यादा वे परलाइट बारीक सफ़ेद पाउडर वे जो को माध्यम वायु संचार बढ़ावे और सागी माध्यम रो तापमान भी कंट्रोल करे। ढकिया जाने वाला पदार्थ रे आधार माते संरचना तो न्यारी ने नाम जाणीजे जहाँ पोलीथीन रो उपयोग कर बनाए जाने वाले ढांचे ने पोली हाउस कहवे जिके माने पोलीथीन रो उपयोग करीजे और जे कांच रो उपयोग कर इन प्रकार की संरचना बनाई जे तो बिने ग्लास हाउस कहवे और आवरण ने वास्ते इस्तेमाल पदार्थ अगर नेट है तो बिने नेट हाउस कहवे। इन सब तरह की व्यवस्थाओं ने सामान्य भाषा में आप ग्रीन हाउस भी कह सका। इनकी खास महत्व की बात करा तो अपने ज़्यादातर खेती है जो कि बिरखा आधारित है और लारले कई साल में देखा को जलवायु परिवर्तन जो को परिदृश्य है वे में कदी तो है जो को बिरखा आने में कमी हो जाए कदी ज़्यादा हो जाए कई तरह का बदलाव देख जाए तो इन वजह से अड़ी दशा रे माने किसान और जो बागवानी भाई करे है सामान्य मौसम में खुले वातावरण में फसलें उगाना है जो घणो मुश्किल हों तो जा रही है और फसलों की पैदावार घटती जा रही है दिनों दिन देखा तो इन जलवायु परिवर्तन और घटती पैदावार चलते और जरूरी हो गयो कि किसान भाई नई तकनीक या विधियां अपनाए जके सू बदलते मौसम रो असर है जकी फसलों की पैदावार मत कम हुए और इन परिस्थिति में संरक्षित वातावरण में खेती एक ऐसी तकनीक है जके में पोली हाउस में जो अनुकूल वातावरण तैयार करियो जा सके और पैदावार और गुणवत्ता कई गुणा तक बढ़ाई जा सके। चूँ बागवानी क्षेत्र खेती रा सकल घरेलू उत्पादन में करीब लगे टगे 30% योगदान रखे जबकि कुल जगह खेती रा क्षेत्र है भी 10% इलाके में ऐडी फसल उगाई जे तो फल सब्जियां सजावटी पौधा की खेती में है जो को इन तरह रो उपयोग है जो हो सके है। बागवानी फसलों रे उत्पादन और आवश्यकता में घणो अंतर है इन अंतर ने कम करण सारू परंपरागत बागवानी द्वारा है जो को कृषि योग्य क्षेत्र की जरूरत जके में बढ़ती जनसंख्या रे मद्देनजर उपलब्ध होनो असंभव है। इन वास्ते ग्रीन हाउस तकनीकी उच्च उत्पादन आधार माते कम क्षेत्र माने ज़्यादा पैदावार उपलब्ध कराने माने सक्षम है और वर्तमान जो कि सब्जी तकनीक रो उपयोग जो को करियो जा रही है इनमें सब्जियां की वार्षिक जो कि उपलब्धता है वह है जो को कई टना ताई बद जावे और पोली हाउस रे माने सब्जियां रे माने खासकर खीरा है भांत भांतरी शिमला मिर्चा है टमाटर की खेती है एक खेतियां है जो को ज़्यादा लाभकारी है और सागरी खेती और ग्रामीण क्षेत्र ने माने ज़्यादा रोजगारों भी विकास हुए। पोली हाउस रे मायने वातावरण बारे रे वातावरण न्यारो रहे बिना किणे नियंत्रण प्रणाली वाला पोली हाउस रे मायने रो तापमान बाहरी तापमान 5-10 डिग्री ज़्यादा रहे जबकि पूरो नियंत्रण पोली हाउस रे मायने तापमान नमी प्रकाश ए फसल री जरूरत मुजब निर्धारित किया जावे। इन तरह से है जो को पोली हाउस तकनीकों प्रति इकाई जगह क्षेत्रफल उत्पादन है 4-5 गुणा ज़्यादा मिले और बेमौसमी फल सब्जियां और फूलों की कीमत भी ज़्यादा मिले यानी कि बिना मौसम भी अपन है जो को इन पोली हाउस में सब्जियां ले सका। ग्रीन हाउस में माने जो कि तैयार सब्जियां हैं वे सामान्य सब्जियां हैं जो ज़्यादा कीमत माते बिके और ऐ सब्जियां ज़्यादा गुणवत्ता युक्त भी वे पॉली हाउस में फसल उगाया हूँ होने वाली जो कि आमदनी भी मैं बढ़ोतरी आगे आगे टाइम भी है जो हर टाइम में भी है जो मिलती रहे। प्रो ट्रे ने माने पौध तैयार करी दे जो प्लास्टिक ट्रे या प्रो ट्रे जकी हुए जिन सांचे नुमा छोटा छोटा भी में कक्ष हुए इन कक्षा ने माने बीज डाल ट्रे ने नियंत्रित वातावरण में राख और पौध तैयार करी दे। और प्रो ट्रे ने माने पौध तैयार करनो है जो तरीको है अलग जो मिश्रण माध्यम तैयार करनो है बिने मृदा रहित माध्यम भरियो जावे। और पौध रे रख रखाव और भी उनमें बात करा प्रो ट्रे में तो बुआई रे दो तीन दिन पछे प्रो ट्रे रे ऊपर आवरण पॉलीथीन थर्माकोल शीट ने हटा लियो जावे और एक दिन छोड़ एक दिन भी में पानी दी दीजिए। प्रो ट्रे ने कीट रोधी नेट बनी उड़े कक्ष रमाने रखना चाहिए जके सु पौध ने कीट और रोग मुक्त रखियो जा सके। प्रो ट्रे ने पॉलीथीन ढकर तापमान नियंत्रित करियो जावे और इन प्रकार पौध 25-30 दिनों में बदल रहे देखो बदलने वगे वो जावे। पौध निकालते टाइम तने पकड़कर प्रो ट्रे रे कक्ष ने अंगुली है जो ऊपरी तरफ उठाया जावे जबकि माध्यम सहित पौध ट्रे है जो को बाहर आ जावे। एडी पौध में जड़ा सफेद धागेरी तरह माध्यम रे आसपास लिपटी रहे और इन तरह रे वातावरण में शाम रे टाइम पौधे ने खेत में है जो को बदली जे पौध लगाने रे तुरंत पचे है जो को खेत री सिंचाई करी जे। इनमें है जो को पॉली हाउस में प्लास्टिक बेड बनाऊ सारू कंकड़ पत्थर या दूजा अवशेष हटार जमीन ने समतल करनी पड़े और पच्छे बटे जो 20 टन है जो को तालावरी मिट्टी है 1 टन सड़ूड़ी गोबर खाद है 1 टन पीली माटी है यानी कि प्रति 1000 वर्ग मीटर साबुन डाल अच्छी तरह है जो को पानी भर देना चाहिए। बीरे पच्छे बटे अच्छी तरह पानी भरूड़ी में सिंचाई रे 3-4 दिन पच्छे रेखांकन कर रहे जो को क्यारियां बनानी चाहिए और क्यारियां बनाने वास्ते माटी आवागन पत्थ हटार क्यारी रे ऊपर डाली जावे जबकि स्वतः ही जकी है क्यारियां लगे टगे 1 फुट है जो ऊंची हो जावे और रेखांकन सारू प्लास्टिक धागो या सूतली रू प्रयोग करियो जा सके। इन तरह से भया पॉली हाउस रे माने सब्जियां लगाई जे और बागवानी रा फल बगीचा रा है जो बागवानी री खेती भी करी जे। तो ऐ तो भया पॉली हाउस री बात हुई जकि आप बेमौसमी सब्जी है जो साल भर लेवन वास्ते है ऊंचे दामा माते बेचन वास्ते ऐसी है जो कर सका हाँ एर हमें होना दूजी काम री बात।
1: लीजिए सुनिए कार्यक्रम संबंधी सूचना। अब से हर बुधवार को हमारे केंद्र से कार्यक्रम खेती बाड़ी में सुनिए सजीव फोन इन प्रोग्राम जिसमें हमारे किसान भाइयों के पूछे गए सवालों का जवाब देंगे हमारे स्टूडियो में मौजूद विषय विशेषज्ञ। आप भी हर बुधवार को शाम 7 बजे से 7:30 के बीच अपनी खेती बाड़ी और पशुपालन संबंधी समस्याओं पर फोन करके सीधे विषय विशेषज्ञ से समाधान पा सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 240168 240168 और STD कोड हैं 01582। इसके साथ ही यह कि अब से हर मंगल गुरु और शनिवार को प्रसारित होने वाला किसानवाणी कार्यक्रम अब हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर से रिले करेंगे। सूचना समाप्त हुई।
2: प्रत्येक मंगलवार गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
0: हाँ तो भैया चौपाल सू किसान भैयारी और दूजी जानकारियां भी टेमो टेम आपने मिलती रहे एनी बात देखो लारले टैमर मान मने लाल दिना में मुंडा सर्रा तेजाराम जी मिलिया और बे खेती रे हागे हागे आप रोजगार हाथरो हुनर भी करे तो बाहू जकी हताई करी वो आप ते पुगति करा तो लो हुनो।
3: राम राम शाह।
4: राम राम शाह। राम राम शाह।
3: कई नाम आपरो?
4: मारो नाम तेजा राम है।
3: तेजा राम जी। गांव?
4: गांव मुंडा सर है।
3: मुंडा सर रहे उन्नाला। तो कहीं गांव में एक डाणिया में?
4: डाणिया में।
3: डाणिया में रहो? पहले मैं बड़े रहे जो को तेजा राम जी डाणिया में रहता हाँ।
4: बड़े रहे डाणिया में रहता हाँ। मैं डाणिया में रहा
3: भाई। बड़े रहे बस आउट अटी ही?
4: अटी ही।
3: डाणिया में रहने कोई फायदो?
4: फायदो खेती है नी किसान।
3: खेती है। और हाथ पशु भी राखो?
4: पशु भी राखा।
3: तो कहीं डाणिर मान पशुधन हो रो?
4: हो रो। बरसात हुई जावे?
3: बरसात हुई जावे।
4: खेती जावे? कचरो हुई जावे? जमीन वाला धान हुई जावे?
3: ओ धान हुई जावे। एर हवा भी साफ?
4: साफ शुद्ध।
3: शुद्ध हवा मिलती रहे। खेती पुछ कैडी क्रिया करो?
4: खेती है बाजरी है मोट है मूंग है कमार है।
3: नहीं कोई पानी रो साधन ट्यूबवेल कुआ है?
4: नहीं नहीं बरसात रो पानी है।
3: बरसात रो?
4: बरसात रो पानी।
3: तो कई बात है कुआ ट्यूबवेल कराया कौन?
4: कुआ ट्यूबवेल तो पानी खारो है ना।
3: खारो जमीन पानी खारो?
4: खारो।
3: कई भाई पच करवार देख ही
4: चेक करी खारो ही खारो है।
3: खारो ही खारो भाई खारे पानी रमान पचे ट्यूबवेल कराई पहले देखो लाल ले टाइम तपने कहीं फायदो वे
4: तपने बाजरी दाजरी के बदोल करे बड़े रखे दान
3: ओ जन देखो के तपनो जरूरी।
4: तपनो जरूरी
3: जमीन ने पान लाग बाजरी पच कोई बीज और लाओ हो देसी?
4: देसी बाजरी।
3: देसी बाजरी।
4: देसी बाजरी
3: कई खासियत है देसी बाजरी की?
4: देसी बाजरी बढ़िया रहे जीवन वास्ते रोटी भी बढ़िया बने खान पान भी अच्छा रहे शरीर बीमारी भी कौन हुए
3: भाई बीम कोई तरह दवाई कौन
4: कीटाणु कौन है कोई रोग
3: जन है जो साफ सुथरी जिमन ने मिठी
4: मिठी रहे।
3: आ तो सा बात हुई खेती रे अलावा और भी की काम करिया करो? कहीं
4: खेती के अलावा काम करा नहीं बारे
3: कहीं काम करो
4: बार लकड़ी काम करा
3: लकड़ी रो
4: फर्नीचर को
3: फर्नीचर पचे कहीं लकड़ी रो कहीं बनाओ
4: बिम कोई बना दे पिलंगे कोई दरवाजा है
3: ओ
4: कोई किचन है
3: भाई पिलंग भी बना दो मकान आ रहा दरवाजा खिड़कियां आवे
4: खिड़कियां बोलिया करा पर बना दा
3: कई तो देखो लोहरा लगावे कई लकड़ी रे लगावे बाकी सब बता
4: बाहर देखो सब लकड़ी लगावे नब देखो
3: बाहर ज्यादातर लकड़ी रहा
4: बाहर ज्यादातर लकड़ी रहा गांव वहां पर जब कहीं बरसात बरसात ज्यादा हुए भिजे जना गांव शहर में ताजी मंद है जीवन बरसात भिजे को जन लकड़ी
3: भिजे को जन लकड़ी रहा ज्यादा ओ पस तेजा राम जी लकड़ी रो जो को हुनर है ओ कट है क्या
4: ओ लकड़ी रो बारी सी गया का को काम करने वाला परिवार वाला बेची के
3: पहले परिवार वाला बारे काम करता बारे हाथ रे रही क्या
4: बस अग रे
3: कितो टाइम हिकण में लागियो
4: टाइम सीखने दो साल लाग लगभग
3: दो साल लाग ही क्या जने भी मजदूरी की मिलती ही काई
4: हाँ कम मिलती आदि रेट बाद में पति रिजो डबल रिजो वक्त चीज री
3: हमें कहीं पूरा जानकार हुआ
4: हाँ लगभग
3: लगे टगे हमें खिड़कियां बना दो पिलंग बना दो कोई मालिक कहे कि भाई मारे तो ये डिजाइन बना दा बड़ा बना दो
4: हाँ बेड बना दा क्या जो डिजाइन देवे बेरी
3: हमें पत कितनी खेज को मजदूरी मिले
4: वो जो मैंने 30-40 हज़ार रुपये
3: भाई महीने 30-40 हज़ार बारे पत की जगह वो काम करो
4: वो अहमदाबाद
3: अहमदाबाद बट कहीं वो धंधो हमेशा चल है
4: हमेशा परमानेंट आंतो ही आगे आगे आगे आगे
3: नहीं
4: नहीं मकान बनता ही रहे अपार बने जो
3: बट ओ भाई नई बिल्डिंग बनती रहे
4: बिल्डिंग बनती
3: रहे बार खिड़कियां लागे जण एम पत कोई ठेको एको लेनो पड़े एक दिन दिहाड़ी में
4: नहीं नहीं ठेको ही लेनो पड़े दिन दिहाड़ी आप मन नहीं चावे जिया कर लेनो
3: भाई चावे जिया कर
4: चावे जिया कर सका
3: मान लो कोई बिल्डिंग रो मालिक कह देवे कि मारे भाई इतनी खिड़कियां हैं थे ठेके ले लो तो थानो कहीं आधार रहे पता
4: आधार बंधक में ले लाए काम करना है
3: हिसाब मिला रहे जो थे बता दो कि भाई इतना रुपया ला वो तो सा जोरदार हुनर है यार पचे वो तो हरदम चाल तो रहे कई भयार तो देखो के कई कारीगर और भी है जो पे उतारे हुए जैसे काम मोटो ले लियो तो बेड़ो भी वे
4: बड़ा भी काम आता रहे पूरी बिल्डिंग को भी काम है जैसे साग में
3: मोटा काम आता रहे पच बे कहीं पैसा टाइम माते मिल जावे
4: टाइम आती बीच में हुए आर्केटिंग होते दे टाइम
3: माते
4: तेरे लाइसेंस हुए करे
3: भाई बीच जगह रहे नहीं बनो लाइसेंस वे बे पैसा दे दे पच बारे रहने में कोई परेशानी को आवे
4: नहीं नहीं कोई परेशानी को ना
3: जहाँ देखो गाँव मारे उड़ा खुले हवा मान बट शहर हमारे वो जनिया की कर लागे था ने
4: नहीं नहीं बड़े लागे रूम लेनो पड़े खुद को खुद के रोटी रोटी मते बनाने पड़े होते एक तो
3: भाई रोटी मते रसोई रो काम है जुको पच कहीं बनानो जानो भाई ओ काम है जुको मते सीखनो पड़े
4: मते सीखनो पड़े
3: भाई खानो तो मते ही के बनानो पड़े बट पच आपां रे देसी चीजें जिमण ने मिले है
4: देसी तो कभी मिले ले रहने पड़े वा ठीक है सब दुई दुई रलोड़ी मिले
3: और जहाँ दूध ओदरी बात करा तो अटे देखो पशुआर हो जाए बट
4: थैली मिले करे पैकिंग आए करे
3: पैकिंग मिले री बात हुई और हुनर रे आगे आगे देखो के खेती भी कर रहा हो ओ भी जोरदार बात है ओ पछ कितने एक टाइम ते लंबे थे बारे रह सको कितना महीना
4: था और तब कितना टाइम काई नप चा करनो सी किया पूरा काम अब चालू करियो आप कितना टाइम कर सका
3: कई बार जे है जको ज्यादा महीना रहन नो काम पड़ जा तो
4: रहनो भी पड़े
3: तो भी रहनो
4: पड़े इमरजेंसी वजह रहनो भी पड़े
3: घर परिवार पचट खेती संभाले
4: घर परिवार खेती संभाले
3: अब तेजाराम जी जका भाई यूं सोचे के भाई लकड़ी रो हुनर सीख ला बाने काई करनो पड़े
4: पर मेहनत करनी पड़े तो काम सीखनो पड़े एक दिन में कुछ नहीं हुआ
3: एक दिन में कहीं कौन सीखनो पड़े सीखण में पते कई कई तरीको काम में लेना पड़े
4: कई कई तरीको हर देखो सर चीज पहला तो सब पहला था पर वो कई मारवाड़ी खाती चला दे या रंदी चलानी सीखनी पड़े
3: ओ
4: बस कटर मशीन आवे बा चलानी सीखनी पड़े
3: पहली रंदी चलानी पछ कटर मशीन आवे
4: इंच टेप भी देखनो पड़नो चीजे पूरी चीज नॉलेज देखनी चीजे कुल मिला ध्यान रखनो पड़े हर काम
3: ध्यान रखनो पड़े किसे चाहे काम री बात करा ध्यान और लगन हुई जने हुई
4: लगन हुई जने हुई
3: तो जका भाई कोई सीखना चाहे हुनर बांध लगन रखनी
4: पड़े लगन रखनी पड़े
3: आप रोकने
4: मेहनत करनी पड़े
3: और कटी देखो के ज्यादा काम भी लगातार हुए तो वो भी करना पड़े
4: करना पड़े
3: वो भी करना पड़े भाई मन लगा और अपना काम करा तो है जो को काम सीख
4: काम सक्सेस हो सके आदमी
3: जने सक्सेस किसी काम देखो लगन बिना हुए कौन और पशुधन भी रखो कहीं
4: पशुधन भी रखा
3: पशु हम कहीं रखो
4: पशु हम गाय रखा
3: गाय रखो कितनी गाय
4: दो गाय
3: हमारे पास ब्याउड़ी है
4: ब्याउड़ी है दोनों
3: दोनों ब्याउड़ी कितो दूध वे
4: जो चार पाँच लीटर
3: टैमरो
4: टैमरो
3: दूध बस कहीं काम में लो
4: दूध ज़्यादातर गर्मी काम ला रही एक टाइम डेरी दे दा
3: भाई एक टाइम ऐसे को बेच दो और पशु चराउन ने कहीं काम में लो
4: कुतर
3: कुतर
4: बाजरी
3: बाजरी कुतर आपस कहीं गर्री उजावे है
4: गर्री उजावे
3: भाई खेती करो तो गर्री उजावे तो पशु हमारे पास है आ कुतर चरण में सही
4: सही है सब बड़े कुतर रहे पर सर बाकी तब कचरो नागनो ही पड़े
3: कई देखो गमारी है जो तूड़ी लावे कई मूंग फड़िया रो लावे
4: कोई मेथी रो कचरो लावे
3: कई मेथी रो और कई मूंग आरो नी मगलो बत्तो किसो
4: सब बड़े तो देखो आप देसी बाजरी कुतर ही बड़े रहे सा
3: कुतर बढ़िया
4: है बड़ी बरसादरी
3: क्योंकि एम कोई तरह दवा ना क्यूड़ी
4: कोई दवा नो है
3: जना आ बत्ती पशु यूं निरोगो
4: निरोगो
3: और है देखो पशु ने पचे चरावण ने खुल्लो भी राखनो पड़ेगा
4: कुल भी राखा सा क्यों गांव में घर है ढणियां में घर है जन कोई टेंशन को नहीं
3: भाई परसो कुलो भी फिर
4: कुलो भी फिर सके
3: हमार देखा हां के जो तावड़िया ज्यादा तप है तो इस टाइम में पशु रो कोई ध्यान रखो
4: हां इस टाइम पशु थोड़ा पानी दान पिलाने रो ध्यान रखनो पड़े
3: भाई पानी टाइम टाइम
4: हां सही पिलानो ज्यादा गर्मी में नहीं पिलानो सुबह से पिला
3: और बांधन की जगह छाया रो भी
4: छाया रो गांव में नीमड़े की छाया को टाली की छाया या कुछ कर दा
3: यार पशु आने पर से बंधन वास्ते थाने की बनाए उड़ है
4: हाँ टाप दाप है ना
3: टाप बना
4: बड़ी खीम बढ़ा रही
3: खीम बढ़ा रही कच्ची पर टाप रही कहीं खासियत हुआ
4: कच्ची टाप तो कच्ची देव ठंड रहे हैं गर्मी में
3: भाई गर्मी में
4: पक्की गर्मी तो गर्मी रहे
3: पक्का मकान तो देखो अपने गर्मी लागे तो पशु ने तो गर्मी लागे ही है और जो देखो नाणेरी अपन जरूरत पड़े पशु नहीं नवानो पड़े
4: जरूरत पड़े ऐसा
3: पशु नहीं जरूरत
4: पशु नहीं जरूरत पड़े
3: जन पशु नहीं नवानो पड़े और कच्ची जगह टाप आप बताओ के बनायोड़ी है बिरमान है जो ठंडी जगह और ब्यावे भी टाइम में भी की ध्यान रखना पड़े
4: ब्यावे भी टाइम ध्यान रखना पड़े सा आजकल सब का टीका हो गया जन सब ध्यान रखना पड़े
3: ओ भाई कने ब्याज जावे और भी टाइम ध्यान नहीं रखो देखो कोई तरह जोखिम हो सके
4: जोखिम हो सके
3: तो वह सत्यदा राम जी आप विचार बताओ आपने दिनवाद राम राम
4: सर राम राम सर
1: लीजिए सुनिए कार्यक्रम संबंधी सूचना अब से हर बुधवार को हमारे केंद्र से कार्यक्रम खेती बाड़ी में सुनिए सजीव फोन इन प्रोग्राम जिसमें हमारे किसान भाइयों के पूछे गए सवालों का जवाब देंगे हमारे स्टूडियो में मौजूद विषय विशेषज्ञ आप भी हर बुधवार को शाम 7 बजे से 7:30 के बीच अपनी खेतीबाड़ी और पशुपालन संबंधी समस्याओं पर फोन करके सीधे विषय विशेषज्ञ से समाधान पा सकते हैं हमारे फोन नंबर हैं 240168 240168 और एसटीडी कोड है 01582। इसके साथ ही यह कि अब से हर मंगल गुरु और शनिवार को प्रसारित होने वाला किसानवाणी कार्यक्रम अब हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर से रिले करेंगे। सूचना समाप्त हुई।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: हाँ तो भया, कई तरह की कामरी बातें चौपाल में तो हुई रहा। मैं देखो दो खास बातें और है जो को मारे मन में रहेगी भाई, है जो को आप रहा में भाग दूँ। एक तो जो समुद्री समता हुआ के कई तरह की नदियां आर भी समुद्र में मिले तो समुद्र है जो को आप मां समेट ले। इन्हें जिस तरह अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी जो की है वह क्षेत्रीय भाषाओं ने आप माए रखे। एंड आज यानी कि 14 सितंबर ने हर साल ये आज रे दिन आखे देश रे माने हिंदी दिवस रे रूप में मनाई जे के हिंदी री एड़ी खासियत जो की अगली क्षेत्रीय भाषावान भेड़ी रखे और इन भाषा ने अपने है जो को भूलना नहीं चाहिए। दूजी जो की खास बात है कई भाई कहे के पहली है जो घर रे आगे शुभ लिखा और कई के लाभ लिखा पहली किस जोरदार रे वे। एर भाई यूं है जो को कई भाई कहे के भाई रिद्धि लिखा सिद्धि लिखा, पण जे अनाज रखे भंडार भरीउड़ा राखना है एर धन धान री कोई कमी नहीं रहे तो गजानन जी ने याद करना पड़े। एर एडिज आज देखो के गणेश चतुर्थी मना रिया भाई लोग जगिया जगिया रिद्धि सिद्धि है जो को अनरा भंडार भरीउड़ा रखे। एर हमें आपने एडिज गीतड़ो सुना रहे हाँ सीमा मिश्रा और साथियों गायडो।

0: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: हाँ तो भैया, सीमा मिसा और पार्टी गाड़ो है जो को गजानंद जी रो गीत है जो को आप तय पुग्यो और हमें देख हाँ के बाजार भाव तो आज गणेश चतुर्थी बजे है जो को आया को नहीं और रुत महक में रो मानो है कि 2-1 दिन और है जो को बिरखा रो टाइम है और कई थोड़ा देखो गणेश थोड़ी हो सके तो जके भाया ने फसल कटाई चले वे भी हावचेत रहनो और जका काट ली है फसल ने जकी सूखी है वे आप निकलवाने तैयारी करे और जकी भेड़ी करी है या भेड़ी कर सके तो वह है जो कोई ढकने रो जतन करे कि जके सु इन टाइम रे मान कहीं है कि आंधी तूफान री टाइम है और इन टाइम में बरका सीधी है जो को कम आया करे भेड़ी आंधी तूफान रहे हुए तो प्रकृति प्रकोप से बचन सारू है जो भाया ने सजग रहनो है कि भाई अपनी करी कराई मेहनत माते पानी नहीं पी रहे तो जकी फसल नहीं काटी है वह तो देखो कि 1-2 दिन जे खड़ी भी रहे तो कोई नहीं और जे काटी उड़ी है तो विन्य खराब नहीं वह नहीं हुए खराब तो ऐडो है जो को जाब तो जतन रखनो जरूरी। हमें भया बातों तो करनी घनी मन में है पर घड़ी शू कार्यक्रम बन जुड़ो तो अपन आज रे खेतीबाड़ी कार्यक्रम में टाइम यो अठे पूरो आप रणवीर भाई ने दिरो श्री करा राम राम।

खेती बाड़ी। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम श्रोताओं आकाशवाणी नागौर का, ये चिरमी चैनल है। अब प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। स्वागत है बहुत बहुत आज के उमंग कार्यक्रम में। सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊ दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीन बाई मानिकपुरी जी ने। अच्छे स्वभाव और व्यवहार वाले लोगों की जगह इस दुनिया में प्राणवायु फैलाने वाले हरे वृक्षों जैसी होती है। धन्यवाद बहुत बहुत आपका इस सुंदर विचार के लिए। और अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से राम कुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल और दीपांजलि पटेल के साथ दीपक पटेल, टेकलाल पटेल जी लिखते हैं। विमलेश जी, अजीत जी नमस्कार। 19 अगस्त को सुनने को मिला नदी का सफर, हमें और हमारे परिवार को बहुत अच्छा लगा। उसके लिए उमंग टीम को हम हृदय से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। ज्ञान का खजाना है उमंग कार्यक्रम। भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू ने लिखा है नमस्कार। ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत हमारी प्रिय हिंदी भाषा के कुछ ऐसे शब्दों को जान सके जिनको सर्वसम्मति से पूरा विश्व ये मान्यता प्रदान करता है कि इन शब्दों की उत्पत्ति भारतीय है। जंगल, शैम्पू, पायजामा और अगले अंक में बंगला, खाकी, लूट, योग, गुरु शब्दों की मूल उत्पत्ति पर गहन साहित्यिक मालूमात हासिल हुई। कुछ दिनों पहले कुछ हिंदी शब्दों के अर्थ भी बताए गए थे, उसके लिए हम पूरी उमंग टीम का आभार और धन्यवाद प्रकट करते हैं। सिटी गोनियाना मंडी से गुरप्रीत सिंह जस्सल, बेंगलुरु से जगदम्बिका और हमसावेनी, डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये और राधिका गजभिये, रेडमा डाल्टनगंज पलामू झारखंड से मिंटू दुबे, दिशानी दुबे, किसले और आनंद के साथ साथ प्रीति दुबे। धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। और अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। हमारा पहला प्रश्न था, साइकिल का आविष्कार किसने किया था? इसका उत्तर है साथियों, साइकिल का आविष्कार जर्मनी के एक आविष्कारक कार्ल राइस ने किया था। हमारा दूसरा प्रश्न था, महान पर्वतारोही अरुणिमा सिन्हा ने माउंट एवरेस्ट पर विजय कब प्राप्त की थी? तो इसका उत्तर भी जान लेते हैं, उन्होंने 21 मई 2013 को माउंट एवरेस्ट के शिखर पर तिरंगा लहराकर इतिहास रच दिया और माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली भारत की पहली दिव्यांग महिला बनने का असाधारण गौरव प्राप्त किया। और हमने अगला प्रश्न पूछा था, दृढ़ संकल्प के धनी दशरथ मांझी जी को पहाड़ खोदकर रास्ता बनाने में कितना समय लगा? इसका उत्तर है, उन्हें कुल 22 वर्षों का समय लगा। और हमारा अगला प्रश्न था, देश के लिए कोलकाता की राइटर्स बिल्डिंग में शहीद हुए 3 युवा क्रांतिकारियों के नाम बताइए। उन शहीदों का नाम था बिनोय बसु, बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता। हमारा अंतिम प्रश्न था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के पिताजी का क्या नाम था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के पिताजी का नाम था ठाकुरदास बंदोपाध्याय। तो ये थे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। और अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका के उस फल का नाम बताइए जिसे मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, दक्षिण अमेरिका के उस फल का नाम बताइए जिसे मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताजा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। हमारा पहला कार्यक्रम है बैंगनी जोजो। कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम एक प्यारे डॉगी के बारे में बताता है जो एक पेड़ के नीचे सो रहा था और जब वो उठा तो उसने देखा कि उसका पूरा शरीर बैंगनी रंग का हो गया है। पर क्यों, आइए जानते हैं इस कार्यक्रम से।
3: जोजो एक सफेद कुत्ता था। वह एक पेड़ के नीचे सो रहा था। वो जग गया।
4: किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
3: उसने देखा एक बादल को आकाश में धीरे धीरे चलते हुए।
4: बादल बादल, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
5: नहीं, मैं तो सफेद हूं।
3: बादल हट गया। जोजो ने ऊपर सूरज को देखा।
4: सूरज सूरज, क्या तुमने मुझे दिए बैंगनी धब्बे?
5: नहीं, मैं तो पीला हूं।
4: कौवे कौवे, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे? नहीं नहीं, मैं तो काला हूं। गुब्बारे गुब्बारे, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
5: नहीं, मैं तो लाल हूं।
4: घास घास, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
6: नहीं, मैं तो हरी हूं।
3: बेचारा जोजो।
4: किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे? आहा, तो वो जामुन का पेड़ था।
0: तो बच्चों, सुना आपने? अब जरा याद कीजिए कि जोजो किस किस के पास गया। और कुछ फलों के नाम लिखिए और उनका रंग बताइए।
2: बैंगनी जोजो, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम।

0: जादुई पिटारा है ना मजेदार साथियों। जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
2: इस कार्यक्रम के बाद अब सुनते हैं कार्यक्रम मारिया मोंटेसरी। इस कार्यक्रम में विश्व की महान शिक्षाविद, चिंतक और शिक्षिका मादाम मारिया मोंटेसरी के जीवन और शैक्षिक जगत में उनके अमूल्य योगदान के बारे में विस्तार से बताया गया है।
3: शिक्षा का उद्देश्य मात्र तथ्यों को सीखना नहीं होता है, बल्कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मस्तिष्क को प्रशिक्षित करना होता है। ये कथन है 20वीं सदी के महानतम भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टाइन का।
4: आज हम बात करेंगे एक महान विलक्षण स्त्री की, जिसने बाल मनों को प्रशिक्षित करने के लिए शिक्षा शास्त्र को एक नया आयाम दिया और शिक्षण प्रणाली में सुखद और क्रांतिकारी परिवर्तन का सूत्रपात किया।
3: उनका नाम है मारिया मोंटेसरी। वो इटालियन चिकित्सक और शिक्षाविद थी। मैडम मारिया मोंटेसरी को क्रिया प्रधान मनोवैज्ञानिक शिक्षण एवं खेल आधारित बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति के विकास का श्रेय दिया जाता है।
4: उनका पूरा नाम था मारिया टेकला आर्टेमिसिया मोंटेसरी। मारिया का जन्म 31 अगस्त 1870 को चेरा वाले इटली के एक संपन्न परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम एलेसेंड्रो मोंटेसरी था, जो इतालवी सरकार के वित्त मंत्रालय में एक अधिकारी थे।
3: उनकी माँ का नाम रेनिल्ड स्टोपानी था, जो बहुत ही सभ्रांत और सुशिक्षित घराने से आती थी। मारिया के जीवन पर उनकी विदुषी माता का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, जो जीवन भर उनके साथ रहा।
4: जब वो मात्र 4 वर्ष की थी, उनका परिवार चेरा वाले से रोम आ गया। 6 वर्ष की आयु में मारिया ने स्थानीय राज्य पोषित विद्यालय में दाखिला लिया। वो बहुत कुशाग्र बुद्धि की थी।
3: उनके विद्यालय में सह शिक्षा थी। उन दिनों सामाजिक मान्यताओं के कारण ये स्वीकार करना आसान नहीं था कि लड़कियां लड़कों से अच्छा कर सकती हैं।
4: स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए 1886 में रेजियो इंस्टीट्यूटो टेक्निको लियोनार्डो दा विंची नामक तकनीकी स्कूल में दाखिला लिया। इंजीनियरिंग की पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने चिकित्सा विज्ञान पढ़ने का मन बनाया। सामाजिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के कारण उन्हें बहुत हतोत्साहित किया गया
3: और आखिर आ ही गया 10 जुलाई 1896 का वो गौरवशाली दिन।
5: साथियों, आज का दिन रोम विश्वविद्यालय का ऐतिहासिक दिन।

0: हम बहुत हर्ष के साथ सूचित करते हैं कि मादाम मारिया टेक्ला आर्टेमिसिया मोंटेसरी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ मास्टर ऑफ साइंस इन मेडिसिन की उपाधि प्राप्त करके इटली की पहली महिला डॉक्टर बनने का गौरव प्राप्त किया।
1: बधाई हो।
2: धन्यवाद,
3: बहुत बहुत बधाई।
2: धन्यवाद।
3: इटली की पहली महिला डॉक्टर, भाई वाह, कमाल है।
1: बहुत बहुत बधाई हो।
3: अठारह सौ सत्तानवे में वो रोम विश्वविद्यालय के मनोरोग क्लिनिक द्वारा संचालित एक शोध कार्यक्रम में शामिल हुई और इस शोध कार्यक्रम के तहत वो रोम शहर और आसपास के पिछड़े इलाकों में बने बाल गृहों का दौरा करने लगी।
4: इन बाल गृहों में सामान्य बच्चों के साथ साथ आंशिक रूप से दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित, लोकोमोटर बाधित और कुछ कुछ बौद्धिक दिव्यांगता वाले बच्चे भी शामिल थे। इसी दौरान एक ऐसी घटना हुई जिसने उनके सोचने के तरीके में एक नया आयाम जोड़ दिया। एक दिन वो एक बाल गृह पहुंची। मिस्टर गैब्रियल उस बाल गृह की देखभाल करते थे।
1: आइए मारिया जी।
2: कैसे हो गैब्रियल, कैसा चल रहा है यहाँ?
1: जी
2: कुछ उदास लग रहे हो।
1: जी मैडम, अब आपको क्या बताऊं, मुझे तो लगता है कि इन दिव्यांग बच्चों की हालत दिन ब दिन और बुरी होती जा रही है।
2: और बुरी?
1: जी।
2: अब भला वो कैसे?
1: आज दोपहर के भोजन के बाद आप बच्चों का ध्यान पूर्वक निरीक्षण कीजिएगा।
2: हाँ हाँ जरूर।
1: जी
4: बच्चों की कक्षा का समय समाप्त हुआ और दोपहर के भोजन का समय हो गया। भोजन के बाद बच्चों को कुछ समय का अवकाश दिया जाता था। मारिया ने देखा कि भोजन के बाद कुछ बच्चों ने अपने बर्तनों को, भोजन की मेज की खुरदरी सतह को, खिड़कियों की जालियों को छूना और टटोलना शुरू किया।
1: देखा आपने मारिया जी, क्या ये असामान्य नहीं है? जब ये बच्चे छोटे थे तो इनकी इस तरह की गतिविधियां बहुत कम थी, लेकिन अब तो देखिए देखिए, कुछ बच्चे बाहर जा रहे हैं। अभी वो सड़क की गिट्टियों से खेलेंगे। वो देखिए, वो बच्चा टूटी हुई दीवार से निकली ईंटों पर उंगलियां फेर रहा है। देखिए देखिए।
2: नहीं नहीं गैब्रियल, मुझे लगता है कि यह असामान्य नहीं है।
4: बाल गृह से बाहर आकर लौटते समय रास्ते में वो सोच रही थी,
2: शायद ये बच्चे चीजों को इसलिए बार बार छूते हैं क्योंकि उन्हें संवेदी उत्तेजना चाहिए, लेकिन ऐसा वो क्यों करते हैं? ऐसा करके शायद वो सीखना चाहते हैं, वो अवलोकन और निरीक्षण करना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि शायद इनके सीखने सिखाने का एक नया रास्ता मुझे मिल गया है।
3: उन्होंने इस विषय पर गहरा अध्ययन किया और इस विषय पर अन्य शिक्षाविदों के विचार जाने। उन्होंने सीखने के प्रतिफल विषय पर जितना संभव हो सके पढ़ना शुरू किया और विशेष रूप से उन्होंने 19वीं शताब्दी के शुरुआती फ्रांसीसी शिक्षाविद एवं बाल शिक्षा विशेषज्ञ एडवर्ड सेगुइन के अभूतपूर्व काम का 2 वर्षों तक गंभीर अध्ययन किया।
4: उन्होंने लोम्ब्रोसो और सर्गी जैसे विचारकों द्वारा प्रयुक्त शिक्षण विधि की भी जानकारी प्राप्त की।
2: हाँ, मैंने अब महसूस कर लिया है कि इन बच्चों की बहुत सी समस्याओं का निदान चिकित्सा और दवा से अधिक शिक्षण विधि में निहित है। क्यों ना उनके लिए ऐसे खिलौनों और पाठ्यचर्या का विकास किया जाए जो उनकी संवेदना को उत्तेजित करे और उनमें उत्सुकता जगाए। खिलौनों को यदि एक समस्या की तरह उन्हें दे दिया जाए तो वो खिलौना ही उनका समाधान बन जाएगा।
4: बस फिर क्या था, उन्होंने बौद्धिक रूप से दिव्यांग और अन्य बाधित बच्चों की संवेदी धारणाओं और मोटर कौशल को विकसित करने में मदद करने के लिए व्यवहारिक उपकरण और खिलौने बनवाए, जिनमें ब्लॉक्स, छिद्रों वाला तख्ता, बीट्स, कंचे, माला, गीली मिट्टी, रंग, विभिन्न अलग अलग आकारों की खुरदरी आकृतियां, वाद्य यंत्र, लकड़ी के जोड़ने वाले ब्लॉक्स और पैटर्न्स वाले खेल मुख्य रूप से शामिल थे।
3: उन्होंने बाल गृहों के रखरखाव पर भी बहुत जोर दिया और सुनिश्चित किया कि इन गृहों के वातावरण को सुसज्जित और साफ सुथरा रखा जाए। दीवारों पर अलग अलग प्रकार की रंग बिरंगी समतल और खुरदरी आकृतियां बनाई जाएं। 6 जनवरी 1907 को कासा देई बम्बिनी यानी चिल्ड्रन हाउस खुला।
4: इन बाल गृहों में 3 से 8 वर्ष के बच्चों को प्रवेश दिया जाता था और शर्त ये थी कि बच्चों को साफ सुथरा बिना पुस्तकों के भेजा जाए। अब सीखने सिखाने के ये बाल गृह लोगों की उत्सुकता और आलोचना का केंद्र बन चुके थे। चाइल्डहुड हाउस के कुछ फर्नीचर ऐसे भी होते थे जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता था, इससे मोटर ट्रेनिंग भी हो जाती थी।
3: एक दिन मारिया कक्षा में आई। नव सुसज्जित स्कूल का दृश्य ही अद्भुत था। हर बच्चा अपने अपने कार्य में लगा हुआ था, कोई ज्ञानेंद्रियों तो कोई कर्मेंद्रियों से संबंधित अभ्यास में लगा था, कोई चित्र बना रहा था तो कोई कुछ और कर रहा था। सारा कक्ष रोचक गतिविधियों से भरा हुआ था।
4: ১৯০৮ की शरद ऋतु तक 5 बाल गृहों का संचालन किया गया, 4 रोम में और 1 मिलान में। इन खेल आधारित बाल गृहों में आंशिक रूप से दिव्यांग बच्चों ने असाधारण प्रगति की और जल्द ही 5 साल के इन बच्चों ने लिखना और पढ़ना शुरू कर दिया। मोंटेसरी के इस नए दृष्टिकोण की खबर सारे यूरोप में तेजी से फैल गई। शिक्षाविद और शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी और बच्चों के अभिभावक खुद ये देखने के लिए पहुंचे कि वो इस तरह के आश्चर्यजनक परिणाम कैसे प्राप्त कर रहे हैं।
5: धन्यवाद डॉक्टर मारिया, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे लगता था कि मेरी बच्ची कभी नहीं सीख पाएगी, लेकिन अब वो लिखने और पढ़ने भी लगी है।
2: धन्यवाद
0: डॉक्टर मारिया, मेरे पास धन्यवाद देने के लिए शब्द नहीं है। आपने असंभव को संभव कर दिखाया। वाह, मुझे धन्यवाद के शब्द नहीं मिल रहे हैं। आपके पढ़ाने का तरीका कमाल है, बेमिसाल है।
2: धन्यवाद धन्यवाद। देखिए, मुझे लगता है कि मैंने शिक्षा का कोई नया तरीका इजाद नहीं किया। मैंने तो बस कुछ छोटे बच्चों को उनके अनुसार जीने का मौका दिया है।
5: जी,
2: मैं सोचती हूँ कि यदि इसी खेल और अनुभव आधारित विधि का प्रयोग सामान्य बच्चों में भी किया जाए तो परिणाम आश्चर्यजनक होंगे।
5: जी, धन्यवाद
2: धन्यवाद।
4: समावेशी शिक्षा की सफल शुरुआत शायद यहीं से होती है। मानसिक रूप से दिव्यांग बालकों के संदर्भ में सफलता मिलने पर मोंटेसरी ने इसी विधि का उपयोग

0: सामान्य बच्चों की शिक्षा के लिए भी किया।
1: उनकी असाधारण सफलता को देखते हुए इटली की सरकार ने उन्हें बाल गृह संस्था का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। मारिया मोंटेसरी ने बाल शिक्षा विषय पर अनगिनत लेख लिखे और एक पुस्तक भी लिखी, जिसे आज विश्व मोंटेसरी मेथड्स के नाम से जानता है। आज पूरे विश्व में मोंटेसरी शिक्षण पद्धति पर आधारित अनगिनत विद्यालय हैं, जो बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित सीखने सिखाने के कार्य में जुटे हैं।
0: मोंटेसरी पद्धति में कोई पुरस्कार नहीं दिया जाता है। बच्चों का कार्य और ज्ञान में कुशलता प्राप्त करने के भाव को ही बच्चे के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। उनकी शिक्षण विधि के मूल स्तंभ हैं बच्चों की स्वतंत्रता, स्वशिक्षा, रोचक शिक्षण, संवेदी अनुभव, प्यार और सम्मान।
1: छह मई 1952 को इस महान शिक्षा शास्त्री का हॉलैंड में निधन हो गया। मारिया मोंटेसरी को 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। उन्हें फ्रांस के लीजन ऑफ ऑनर सम्मान से भी नवाजा गया और दुनिया के कई महानतम विश्वविद्यालयों से उन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त हुई। आधुनिक शोध भी उनके नवाचार और निष्कर्षों की मूलभूत भावना को मान्यता देता है।
0: विश्व शिक्षा के क्षेत्र में उनके महान योगदान के लिए सदा ऋणी रहेगा।
2: आओ खेलें झटपट चटपट कुछ अनूठे खेल, सब मिलकर बनाएं हम अक्षरों की।

0: इस कार्यक्रम के बाद अब हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है। तो अब उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, चेतना, अरशद, कुसुमलता और वीरेंद्र के साथ मुझे यानी विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
2: उमंग, अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित ये कार्यक्रम। श्रोताओं, आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है।

FM 103.7 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। रात्रि के 8 बजे हैं। आइए सुनते हैं सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम दिल से।

0: जी हाँ श्रोताओं, बिल्कुल आपके दिल के करीब है ये नगमे जो आपकी फरमाइश SMS के द्वारा हमें प्राप्त होती है, उन्हीं पर आधारित है कार्यक्रम दिल से, जहाँ हर श्रोता की दिल की बात सुनी जाती है और उसे बयां किया जाता है फिल्मी नगमों के द्वारा।
1: मुश्किल है।

ये संदेश हमारे पास हाथ में है। पहला संदेश आया है, लिखने वाले हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ से, दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा और उनके परिवारजन। इन्होंने फिल्म हमसे बढ़कर कौन एक का नगमा भेजा है हमें फरमाइशी के रूप में, जिसे शैलेंद्र सिंह, भूपेंद्र आशार, मोहम्मद रफ़ी ने अपने मिले जुले स्वरों से सराबोर किया है। और इसी नगमे की फरमाइश हमारे पास पहुंची है गांव नथाना पंजाब से, हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता, गीता और उनके परिवारजनों ने। वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा और उनके परिवारजनों ने फिल्म हमसे बढ़कर कौन है के नगमे की फरमाइश भेजी है। आइए सुनाते हैं इनको ये फिल्मी गीत जो कि आधारित है आज के विशेष अवसर यानी गणेश चतुर्थी पर। सभी श्रोताओं को गणेश चतुर्थी और हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

अगली फरमाइश हमारे पास पहुंची है, आर्यनगर कोह का बिलाई से उत्तम सिंह जंगेल, मॉरस जंगेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंगेल, नंदनी जंगेल, दमदाग ग्राम सूखरी कला से अमित जंगेल, शकुन जंगेल, आरुषि ओशिका, अंजलि जंगेल ने किशोर कुमार का गाया फिल्म गौतम गोविंदा का नगमा की फरमाइश हम तक भेजी है। यही नगमा सुनना चाहे आजाद नगर हरिद्वार उत्तराखंड से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेरा जहां। लीजिए आपकी पसंद का किशोर कुमार का गाया फिल्म गौतम गोविंदा का ये गीत।

अगली फरमाइश हमारे पास पहुंची है कवि रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से, देवशंकर तमूरिया, तुषार देव तमूरिया, डॉली बेवी पूजा, अजय देव तमूरिया, राधिका प्रभा देवी तमूरिया और पोता मास्टर अल कबीर ने फिल्म रब ने बना दी जोड़ी का गीत सुनने की फरमाइश भेजी है, जिसे सुनिधि चौहान और लाभ झंझुबा ने बड़े ही तरीके से सदे अंदाज में गाया है। आइए सुनाते इनको इनकी पसंद का ये गीत, और आप भी सभी श्रोता सुनिए फिल्म रब ने बना दी जोड़ी का ये डांस सॉन्ग।

अगली फरमाइश हमारे पास पहुंची है पांडरकवाड़ा से अनिल बुरांडे, उषा बुरांडे, अनुश्री बुरांडे, धनसी बुरांडे और बल्हारशाह से सूरज लौंडे, प्राची लौंडे, एकलव्य लौंडे ने फरमाइश भेजी है। इन्होंने फिल्म महबूबा के नगमे की फरमाइश हम तक पहुंचाई है। इस नगमे के अंदर किशोर कुमार और लता मंगेशकर को सुनिए आप सभी इन्हीं के साथ।

पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा से झारखंड से शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल गोप, शिवांश गोप, संगीता गोप, लिपि गोप, दीपाली गोप ने फरमाइश भेजी हम तक। विनोद राठौड़ और सोनू निगम के स्वर में फिल्म मोहब्बत का नगमा इन्होंने सुनना चाहा है, तो आइए इनको सुनाते हैं और हम सभी सुनते हैं। सोनू निगम और विनोद राठौड़ का गाया फिल्म मोहब्बत का ये गीत।

अगली फरमाइश हमारे पास पहुंची है जो कि कस्बा बराड़ा जिला अंबाला से रवि कुमार राहुल, जयप्रकाश राहुल, रणजीत कौर, प्रियंका मन्नत, गुरु किरत राहुल, गुरुशब्द सिंह राहुल, इन्होंने फिल्म राज के नगमे की फरमाइश भेजी है। इनके साथ एक फरमाइश और आई है इन फिल्म जाबाज से जो कि किशोर कुमार का गाया नगमा है, और ये फरमाइश हमारे पास पहुंची थी शिवाजी चौक कटनी से। फिर एक बार अनिल ताम्रकार, अमर ताम्रकार, दिलीप वर्मा, राजू ताम्रकार, रजन रजक, संजीव वर्मा, विपिन गुप्ता, अरुण कनौजिया, संजय सोनी, पवन यादव, सुनील जैन, लालू सोना, मोना हन्नी, यश सोम्या और उनके मम्मी पापा, इन्होंने दो फरमाइशें भेजी थी जिसमें फिल्म जाबाज की ये फरमाइश है। तो आइए हम सुनाते हैं इनको इनकी पसंद का फिल्म जमाज का ये गीत जिसे किशोर कुमार ने अपने मधुर अंदाज में गाया है।

जी हाँ श्रोताओं, हमें बिल्कुल आना पड़ेगा फिर आपकी फरमाइश को पूरी करने के लिए। श्रोताओं, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? SMS के द्वारा आप अपनी फरमाइश हम तक भेज सकते हैं, साथ में सुझाव भी दे सकते हैं। सुनते रहिए इसी तरह आपका मनपसंद कार्यक्रम दिल से। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम दिल से। श्रोताओं, आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है, FM 103.7 MHz पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम विविधा में ये झलकी, लिफ्ट का चक्कर।

0: बाप रे, 8 बज गए। बस अब चलना चाहिए, बाकी काम कल हो जाएगा। और देर की तो घर में मुझे घुसने ही नहीं दिया जाएगा। रूपा,
1: यस सर।
0: चलो मैं तुम्हें छोड़ते हुए घर निकल जाता हूँ।
1: सर, आपने अपनी गाड़ी की चाबी अलमारी में ही बंद कर दी?
0: ओह, याद दिलाने के लिए शुक्रिया।
1: थैंक यू सर।
0: आजकल मैं बहुत कुछ भूल जाता हूँ।
1: क्यों सर?
0: मानसिक तनाव बहुत ज्यादा है ना। ऑफिस में ऑडिट वालों ने तंग कर रखा है।
1: यस सर।
0: और घर में बेला ने।
1: बेला जी, यानी आपकी पत्नी ने? उन्हें क्या हो गया है सर?
0: उन्हें भला क्या हो सकता है, घर बैठे आराम करती है और उल्टा सीधा सोचती है। कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। चलो रामलाल, रामलाल।
2: आया साहब।
0: राम,
2: हुकम करो साहब।
0: रामलाल, दफ्तर बंद कर लो, हम जा रहे हैं। और घर से कोई फोन आए तो बता देना कि हम निकल चुके हैं और 15 मिनट हो गए हैं।
2: बिल्कुल 15 मिनट। ठीक है साहब, कह रहे सुन।
0: अब इसे क्या हुआ?
1: ये बंद क्यों हो गई?
0: चल भाई चल। इसे भी आज ही खराब होना था। मैं कब से इस लिफ्ट की मरम्मत करवाने की बात कर रहा हूँ, लेकिन कोई सुने तब ना।
1: चल क्या होगा सर? 8:30 बज चुके हैं। अमर आज फिर नाराज होंगे।
0: अमर? अमर कौन?
1: मेरे पति सर। उन्हें मेरा देर से घर पहुँचना जरा भी अच्छा नहीं लगता। आज तो घर में महाभारत छिड़ जाएगी सर।
0: हाँ भाई, नई नई शादी हुई है ना, कुछ साल बीत जाने दो, वो खुद ही तुमसे कहेगा कि देर से आया करो।
1: मैं क्या करूँ?
0: इंतजार। चलो ऐसा करते हैं, दोनों दरवाजा पीटते हैं।
1: ठीक है सर।
0: क्या पता रामलाल को सुनाई दे दे।
1: हाँ।
0: और वो हमें निकालने का कोई प्रबंध करे।
1: ठीक है सर। रामलाल, ओ रामलाल,
0: रामलाल, रामलाल।
1: लगता है बीड़ी पीने निकल गया है या किसी कोने में जाकर सो गया होगा। आज तो मेरी खैर नहीं है सर।
0: अरे इतना घबराती क्यों है? हम मिल लेंगे आपके पति देव से और समझा देंगे उन्हें। अब नौकरी करनी है तो कभी देर भी हो सकती है भाई।
1: आप समझते नहीं सर, उन्हें शक करने की आदत है। ओह, अब कैसे समझाऊं आपको?
0: शक यानी संदेह?
1: यस सर।
0: बड़ी बुरी बीमारी है, बिल्कुल लाइलाज।
1: आप मजाक समझ रहे हैं सर, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। वो समझते हैं कि मैं आपके साथ।
0: हाँ हाँ, क्या समझते हैं, हम भी तो सुने जरा।
1: यही कि मैं आपके साथ घूमती रहती हूँ और हम जाने दीजिए सर।
0: अजीब इत्तफाक है, मेरी पत्नी बेला भी यही समझती है कि मैं काम नहीं करता बल्कि गुल छर्रे उड़ाता हूँ और तुम्हारे साथ इश्क फरमाता हूँ।
1: मेरे साथ ऐसा सर?
0: बिल्कुल। आज तो बेला बहुत गुस्से में होगी, शायद खाना भी नहीं मिले। क्या हुआ?
1: ये हंसने की बात नहीं है सर, मुझे तो डर लग रहा है। आपने अमर का गुस्सा नहीं देखा? रात के 9 बज चुके हैं, क्या हमें सारी रात इस लिफ्ट में कैद रहना होगा सर?
0: रामलाल, रामलाल! अरे अरे, ये क्या कर रही हो? बाहर आ जाएगी, फिर इस छोटी सी लिफ्ट में कैसे बचेंगे? भाई बंद करो ये रोना धोना, नहीं तो हम डूब जाएंगे भाई।
1: अमर कभी भी इस बात का यकीन नहीं करेंगे सर कि हम लिफ्ट में कैद हो गए थे। वो तो
0: सोच रहे होंगे कि हम किसी रेस्टोरेंट में बैठकर कॉफी पी रहे हैं। काश यही सच होता।

0: हेलो रामलाल, कहाँ मर गए थे? मैं कब से नंबर मिला रही हूँ।
1: कहाँ ही बात करो मैम साहब, अरे मैंने तो बाल ही सुनी जो, और सुनते ही भाग तो आया हूँ।
0: ठीक है

0: साहब कहाँ है?
1: साहब? अरे मैम साहब, साहब घरे को नहीं भूगया, माने गया तो एक घंटा ऊपर बीत गयो।
0: एक घंटा? तो फिर पहुँचे क्यों नहीं?
1: कहाँ गया?
0: कुछ नहीं कुछ नहीं, वो अकेले ही थे क्या?
1: ना ना ना ना, वे अपारा रूपा जी है नी, वे वारे सागे ही है।
0: तभी तो।
1: कहाँ गया?
0: कुछ नहीं। रामलाल, तुम्हें रूपा के घर का पता मालूम है क्या?
1: नहीं नहीं मैम साहब, मने तो ठाको नहीं, एक साथ साथ बारे घरे गयो। सुन रखी है कि बारो घर कोई गांधीनगर माँ है।
0: अच्छा।
1: मैम साहब बठे घंटा घर है और बेरे लारे पीले रंग रो बड़ो सी मकान है।
0: अच्छा।
1: काई नाम है भी मकान रो भूल रहे हूँ। हाँ याद आ गयो, राधा निवास। हाँ वही नाम है हमारे घर रो।
0: राधा निवास, ठीक है ठीक है।
1: मैम साहब थे मारे घरे जाओ क्या? अरे जरूर जाओ।
0: तुम अपने काम से मतलब रखो, मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, उससे तुम्हें क्या मतलब?
1: ना की मतलब कोनी, तो फिर जाओ। राम राम।
0: राम राम। आज तो इस बात का फैसला हो ही जाना चाहिए, आखिर समझ क्या रखा है मुझे? मैं दिन भर यहाँ इंतजार करूँ और जनाब उस चुड़ैल के साथ घूमते रहें?
2: मुझे तो बिल्कुल बुद्धू ही समझती है, जो मन में आए बस वही करती जाती है। अब मैं और नहीं सह सकता, छोड़ दे नौकरी, नहीं चाहिए मुझे ऐसी नौकरी। कौन?
0: मैं बेला, अंदर आ जाओ।
2: हाँ हाँ आ जाइए, दरवाजा खुला ही है। अरे तुम,
0: अरे
2: अरे तुम वही बेला हो ना?
0: अमर तुम यहाँ कैसे?
2: अरे वही तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम यहाँ कैसे?
0: मैं तो अपनी सौतन को ढूंढते ढूंढते पहुँच गई यहाँ।
2: भाई कौन सौतन?
0: अरे वही रूपा देवी।
2: तो लाइन में लग जाइए, मैडम अभी तक दफ्तर से वापस नहीं आई है। मैं उन्हीं का अभागा पति हूँ।
0: तुम यहाँ कब आए?
2: अभी कुछ ही समय हुआ, तुम्हारी शादी के बाद मुझे बैंक में नौकरी मिल गई और तबादला हो गया यहाँ। तुम्हें याद है कॉलेज की वो बातें जब तुम फर्स्ट ईयर में हुआ करती थी और मैं फाइनल ईयर में?
0: हाँ हाँ बिल्कुल, हम पड़ोसी थे, और फिर क्यों नहीं याद हो ये सब कुछ?
2: मैं तुम्हें रोज कॉलेज ले जाता था अपने स्कूटर पर।
0: हाँ।
2: और लोग कितनी बातें बनाते थे।
0: हाँ, जबकि सच्चाई तो ये थी कि तुम नीली माँ के दीवाने थे।
2: हाय, याद मत दिलाओ मुझे उस बेवफा की।
0: वाह क्या दिन थे।
2: वो सब तो ठीक है, लेकिन ये रूपा अभी तक क्यों नहीं आई? रात के 10 बजने को आए हैं, अब ये भी कोई टाइम है भले घर की बहुओं के आने का? मुझे तो उसके बॉस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है।
0: तुम मेरे पति के बारे में बात कर रहे हो?
2: अच्छा अच्छा, तो रमेश तुम्हारा पति है? अब आई बात समझ में। सच बताऊं, बड़ा बेकार आदमी है तुम्हारा पति।
0: और तुम्हारी रूपा डोरे डालती रहती है उन पर। आज तो मैं इस बात का फैसला करके ही लौटूंगी।
2: ठीक है, मैं भी तो यही चाहता हूँ, लेकिन हम क्यों लड़ रहे हैं, उन्हें आने तो दो। खैर छोड़ो इन बातों को। अच्छा तुम्हें याद है वो मोटू?
0: हाँ?
2: क्या नाम था उसका?
0: पवन।
2: हाँ हाँ पवन। अरे वो कैसे पीछे पड़ गया था तुम्हारे,
0: और तुमने उसकी जम कर पिटाई की थी।
2: कैसे गिड़गिड़ाया था।
0: दिन थे सच में,
2: सच मुझ कॉलेज के दिन तो
0: बहुत अच्छे दिन थे।
3: क्या बात है, यहाँ तो महफिल जमी हुई है, काफी पुरानी दोस्ती जान पड़ती है।
0: मैं तो वो
4: अमर, मुझे आपसे ये उम्मीद न थी, उधर मैं काम करते करते थक जाती हूँ और इधर
2: रूपा तुम गलत समझ रही हो, ये वो
4: क्या गलत है, मैंने जो आंखों से देखा ये कानों से सुना।
3: हो गई भाई,
4: देखिए सर,
3: हम पर तो आप बेवजह शक करती हैं बेला देवी, और खुद यहाँ।
0: मैं तो बचपन से एक दूसरे को जानते हैं।
2: हाँ।
0: ऐसी वैसी कोई भी बात नहीं है, हम दिल्ली में पड़ोसी रह चुके हैं।
4: पड़ोसी?
0: और फिर एक ही कॉलेज में।
3: वाह वाह क्या बात है, बचपन की मोहब्बत है, बड़ी छिपी रुस्तम निकली आप तो।
2: रमेश जी आप हद से गुजर रहे हैं,
3: और आप एक तो बिना वजह शक करते हैं अपनी बीवी पर, और
2: क्यों ना करूं, अब रात के 10 बजे अगर बीवी घर वापस आए तो इंसान और कर ही क्या सकता है।
4: हम लिफ्ट में अटक गए थे अमर, क्यों सर?
2: वाह, क्या कहने, क्या बहाना है।
5: मुझे पता था ना आप और ना ही मेरी बीवी सच्चाई का यकीन करेंगी, इसीलिए मैं साथ में गवाह लेकर आया हूँ। रामलाल,
4: रामलाल,
5: ओ रामलाल।
1: आया साहब।
5: अरे जरा इन्हें बताओ तो हम कहाँ थे।
1: साहब मैंने 10-1 बजा कोई रे रोन री आवाज सुनी जी, मैं भागे भागे और लिफ्ट कानी गयो तो मने ठा पड़ी साहब रूपा जी लिफ्ट माया अटक गया। अरे मैं भागे भागे बाजार गयो, लिफ्ट ठीक करण वाले ने लायो, बीए बांडो खोलियो और यहाँ बाहर काट्या।
5: सुन लिया आप दोनों ने, कितनी परेशानी में थे हम दोनों और रूपा तो रोती ही जा रही थी।
4: तो लिफ्ट में क्या थे आप दोनों
2: और हम न जाने यहाँ क्या क्या सोच रहे थे।
5: जी हाँ, और उसी का नतीजा सामने है, ये लड़ाई, ये झगड़े। अरे रूपा।
6: यस सर।
5: तुम्हारा तो पता नहीं लेकिन मैंने आज एक कसम खा ली।
4: लेकिन उससे पहले एक कसम मैं भी खाती हूँ,
2: उसमें मैं भी तुम्हारे साथ हूँ।
4: आज से,
2: अभी से,
4: हम कभी भी अपने जीवन साथी पर शक नहीं करेंगे
7: और हम लिफ्ट के चक्कर में नहीं फंसेंगे।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विविधा में जल की लिफ्ट का चक्कर। श्रोताओं, आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है FM 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर।

जल ही जीवन है, जल यानी कि जीवन, पर ब्रह्म और सृष्टि का आधार। इसलिए जल है अनमोल, इसका दुरुपयोग रोकिए, सदुपयोग कीजिए।

सड़क पर जोश में नहीं होश में चलिए, यातायात नियमों का पालन कीजिए अपने अनमोल जीवन के लिए। दुपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करना ना भूलें और चौपहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट बांधना ना भूलें। आज की बचत कल का सुनहरा भविष्य, इसलिए छोटी छोटी बचत कीजिए अपने सुनहरे भविष्य के लिए। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, रात्रि के 8:45 होने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार संध्या। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता की सराहना की, कहा भारत

0: अपने मजबूत आयोजन क्षमता प्रदर्शित की। वैश्विक नेताओं ने विकासशील देशों के बीच सहयोग मजबूत करने और ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने के लिए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की प्रशंसा की। अमरीकी विश्लेषक ने कहा, दिल्ली घोषणा पत्र भारत की बढ़ती वैश्विक समन्वय क्षमता को दर्शाता है। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारत की संस्कृति और साहित्य कमल की तरह है, जिसकी हर क्षेत्रीय भाषा उसकी एक पंखुड़ी को दिखाती है। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल में जल विद्युत आपूर्ति में आई कमी के बीच दिसंबर के अंत तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली आपूर्ति को मंजूरी दी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद ने क्षेत्र में लंबे समय से जारी विरोध प्रदर्शनों और अशांति पर चिंता प्रकट की और देश भर में गणेश चतुर्थी का पर्व भक्ति और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि अधिकांश राष्ट्राध्यक्षों की उपस्थिति से दुनिया ने भारत के मजबूत नेतृत्व और विभिन्न देशों को एक मंच पर लाने की क्षमता देखी।
1: Where there are two major conflicts, where there are big divides.
2: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा था जब दो बड़े संघर्ष जारी हैं, गहरे मतभेद हैं और विभिन्न देशों के विचारों तथा हितों में काफी टकराव है। इसके बावजूद हम ऐसे वक्तव्य पर सहमति बनाने में सफल रहे जिस पर सभी ने सहमति जताई। इस वक्तव्य में शांति, सुरक्षा, स्थिरता, दीर्घकालिक आपसी समझ, वैश्विक व्यापार और आपूर्ति श्रृंखलाओं के सुचारू प्रवाह, ऊर्जा की निर्बाध आपूर्ति तथा नागरिकों और बुनियादी ढांचे की सुरक्षा का आह्वान किया गया है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि सम्मेलन में 11 सदस्य देशों, 10 साझेदार देशों, 4 क्षेत्रीय संगठनों और 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित कुल 32 प्रतिनिधिमंडल शामिल हुए। उन्होंने कहा कि वैश्विक ध्रुवीकरण के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष जैसे सबसे जटिल मुद्दे पर भी आम सहमति बनना महत्वपूर्ण उपलब्धि है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स देशों ने स्पष्ट रूप से माना है कि आतंकवाद का कोई भी कृत्य आपराधिक कृत्य है।
2: ब्रिक्स का रुख स्पष्ट था, आतंकवाद का कोई भी रूप आपराधिक माना जाएगा। ब्रिक्स देशों ने पहलगाम हमले की अस्वीकार्यता को स्पष्ट रूप से मान्यता दी। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की, जिसमें सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। साथ ही आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर बल दिया।
0: नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सफल समापन के बाद समूह में भारत के नेतृत्व की कई सदस्य देशों ने तारीफ की है। भारत की अध्यक्षता में राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित 2 दिन का सम्मेलन कल संपन्न हुआ। एक रिपोर्ट।
3: ब्रिक्स में 11 बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं जो दुनिया की लगभग आधी आबादी और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 40% हिस्सा है। ब्रिक्स देशों ने शनिवार को सम्मेलन में एकमत से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया, जिसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सहित दुनिया के नेता शामिल हुए। नई दिल्ली घोषणा पत्र में भारत की अध्यक्षता की तारीफ की गई और सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत सरकार और लोगों की प्रशंसा की गई। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने ब्रिक्स अध्यक्ष के तौर पर भारत के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि नई दिल्ली ने बेहद सफल सम्मेलन आयोजित किया है। चीन की सरकारी मीडिया और नेताओं ने नई दिल्ली घोषणा पत्र को ग्लोबल साउथ देशों के बीच बेहतर गुणवत्ता के सहयोग और एकजुटता के लिए सकारात्मक कदम बताया। रूस ने ब्रिक्स सहयोगी देशों के साथ समावेशी विकास उन्मुखी साझेदारी के लिए मॉस्को के समर्पण की फिर से पुष्टि की। संयुक्त राष्ट्र सचिव अंतोनियो गुतरश ने भी भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की तारीफ की। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी नई दिल्ली घोषणा पत्र की तारीफ की है। अमेरिका के एक विश्लेषक ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को बहुत सफल बताया है। अटलांटिक काउंसिल में दक्षिण एशिया मामलों के वरिष्ठ फेलो माइकल कुगेलमैन ने कहा कि ये घोषणा पत्र भारत की बढ़ती वैश्विक समन्वय क्षमता और ब्रिक्स की बढ़ती स्वीकार्यता को दर्शाता है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति, विजन महासागर और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में वियतनाम प्रमुख भागीदार है। नई दिल्ली में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक की सहअध्यक्षता करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आसियान के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे में वियतनाम महत्वपूर्ण साझेदार है। भारत ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण को इस वर्ष 31 दिसंबर तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली आपूर्ति को मंजूरी दी है। विद्युत मंत्रालय ने बताया कि मुजफ्फरपुर ढालकेबार लाइन के जरिए 600 मेगावाट तक और टनकपुर महेंद्रनगर लाइन के जरिए

0: 51 मेगावाट तक विद्युत आपूर्ति को स्वीकृति दी गई है। एक रिपोर्ट।
1: हाल ही में बाढ़ से नेपाल में जल विद्युत अवसंरचना को काफी नुकसान हुआ है, जिससे उसकी घरेलू बिजली निर्माण क्षमता कम हो गई है और बिजली की अतिरिक्त आवश्यकता हो गई है। सोमवार से मिली मंजूरी से नेपाल को मुश्किल समय में बिजली की जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी और भारत और नेपाल के बीच गरीबी और लंबे समय से चले आ रहे ऊर्जा सहयोग को और मजबूत करने में सहायता मिलेगी। मंत्रालय ने कहा है कि भारत नेपाल की सहायता करने और ऊर्जा क्षेत्र में आपसी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत की संस्कृति और साहित्य कमल की तरह हैं, जिसकी हर क्षेत्रीय भाषा उसकी एक पंखुड़ी को दिखाती है। श्री शाह ने ये बात आज नवी मुंबई में 2 दिन के हिंदी दिवस और 6ठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर कही।
4: भारतीय साहित्य एक विकसित सतदल कमल की तरह है, जिसकी प्रत्येक पंखुड़ी हमारी प्रादेशिक भाषाएं किसी भी एक पंखुड़ी को नष्ट होने से कमल का सौंदर्य नष्ट हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि प्रादेशिक भाषाएं रानी बनकर प्रांत में विराजमान रहे और इन सभी भाषाओं के बीच में हिंदी मध्यमणि बनकर इस सतदल कमल का सौंदर्य बढ़ाती रहे।
0: श्री अमित शाह ने कहा कि सभी क्षेत्रीय भाषाओं को पूरा सम्मान और गरिमा देते हुए हिंदी को केंद्रीय भूमिका निभानी चाहिए।
5: भाषा किसी भी समाज की स्मृति होती है, उसका आत्मबोध होती है। हिंदी ने इस विविधता के बीच संवाद, संपर्क और समन्वय की भाषा के रूप में देश के विभिन्न वर्गों और समुदायों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी का विकास भी तभी सार्थक है जब सभी भारतीय भाषाओं के सम्मान, संरक्षण और संवर्धन के साथ आगे बढ़े।
0: इस अवसर पर राजभाषा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य और योगदान के लिए 11 संस्थाओं और लोगों को सम्मानित किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदी दिवस के अवसर पर आज जन सूचना सेवा शुरू करने की घोषणा की। इस सेवा के अंतर्गत महत्वपूर्ण फैसलों और आदेशों का सरल हिंदी में सार उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही करीब 15 से 30 मिनट की अवधि के हिंदी ऑडियो और वीडियो बुलेटिन भी जारी किए जाएंगे। राजस्थान में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त हासिल कर ली है। आज राज्य के 10,245 वार्डों के लिए मतगणना हुई। इनमें 10 नगर निगम, 47 नगर परिषद और 252 नगर पालिकाएं शामिल हैं। भाजपा ने जयपुर, कोटा, उदयपुर और भीलवाड़ा नगर निगमों में बहुमत हासिल कर लिया है, जबकि अलवर में वो आगे चल रही है। बीकानेर में कांग्रेस को बहुमत मिला है और अजमेर तथा पाली में पार्टी आगे है। भारतीय रिजर्व बैंक ने साइबर धोखाधड़ी और विवादित लेनदेन पर रोक के संबंध में नई रूपरेखा का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत बैंक पूरे अकाउंट के बजाय सिर्फ विवादित लेनदेन की राशि को अस्थायी रूप से फ्रीज कर सकेंगे। ऐसा तभी किया जा सकेगा जब 1,000 रुपए या उससे अधिक के असामान्य अंतरण को म्यूल अकाउंट या साइबर फ्रॉड से जुड़े होने की आशंका हो। मसौदा निर्देश अगले वर्ष 1 अप्रैल से लागू होने वाले हैं, लेकिन बैंक इन्हें पहले भी अपना सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को नई दिल्ली के यशोभूमि में 5वें सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। इसमें 40 से अधिक देशों के 600 से अधिक प्रदर्शक, 300 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और प्रतिभागी भाग लेंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबेत्किन ने भारत और मरकोसुर के बीच तरजीही व्यापार समझौते के विस्तार के लिए बातचीत शुरू करने की घोषणा की है। दोनों मंत्रियों ने वर्तमान समझौते में आपसी हित के क्षेत्रों को शामिल करने पर सहमति प्रकट की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
6: आप आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद ने क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे विरोध प्रदर्शनों और अशांति पर चिंता व्यक्त की है। परिषद ने कहा कि प्रदर्शनों को अब 100 दिन पूरे हो चुके हैं, जिससे अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है और व्यापक क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। एक रिपोर्ट।
7: परिषद ने चेतावनी दी कि सार्थक बातचीत में किसी भी प्रकार की और देरी से जनता में असंतोष, अविश्वास और अस्थिरता और बढ़ सकती है। परिषद ने बाग जिला परिषद के सदस्य जावेद आरिफ अब्बासी की गिरफ्तारी पर भी चिंता प्रकट की। परिषद ने कहा है कि सार्वजनिक अधिकारों से संबंधित मुद्दों को शांतिपूर्ण ढंग से उठाना मौलिक लोकतांत्रिक अधिकार है। परिषद ने आरिफ अब्बासी पर किसी भी आरोप को पारदर्शी कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से निपटाने का आह्वान किया और कहा कि यदि उनकी हिरासत के लिए कोई स्पष्ट कानूनी आधार नहीं है तो उन्हें बिना किसी देरी के रिहा किया जाना चाहिए। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने घोषणा की है कि गुजरात ने मिष्टी योजना के अंतर्गत कच्छ में 27,000 हेक्टेयर में मैंग्रोव पौधे लगाकर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। पर्यावरण मंत्री ने जाखो स्थित वैज्ञानिक नर्सरी का भी दौरा किया। इस अवसर पर वन्यजीव संरक्षण और चीता परियोजना के अंतर्गत वन विभाग के लिए 33 निगरानी और बचाव वाहनों को झंडी दिखाकर रवाना किया गया। और अब बात मौसम की। गुजरात में आज तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित रहा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सौराष्ट्र के कुछ जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है।
8: राज्य में भावनगर के वल्लभीपुर में आज 6 इंच बारिश दर्ज की गई, जबकि आनंद के बोरसद में 5.5 इंच और अहमदाबाद में 3.5 इंच बारिश से आम जनजीवन पर असर पड़ा। भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में पानी भर गया। इस बीच वाहन चालकों को भी मुश्किल का सामना करना पड़ा। पिछले 2 दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण राज्य में सीजन की औसत 80% बारिश रिकॉर्ड की गई है। बारिश के कारण राज्य के 35 डैम हाई अलर्ट पर है। दूसरी ओर बारिश के कारण लंबे ब्रेक के बाद खरीफ की फसल को नया जीवन मिला है। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कल तेज बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने बताया कि केरलम, माहे, पंजाब, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, उपहिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में भी कल इसी तरह के मौसम की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों तक अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, ओडिशा और राजस्थान में गरज चमक की स्थिति बनी रहेगी। देश भर में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लोगों से गणेशोत्सव पारंपरिक तरीके से मनाने और प्रदूषण कम से कम करने की अपील की है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
9: महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी का उत्सव बड़े उत्साह के साथ शुरू हुआ। भक्तों ने प्रार्थना, आरती, भक्ति गीतों और गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों के साथ भगवान गणेश का स्वागत किया। मुंबई में लालबाग साराजा, गणेश गली, तेजू काया और जीएसबी जैसी मशहूर मूर्तियों के दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है। भीड़ और ट्रैफिक को संभालने के लिए पुलिस, रेलवे और बेस्ट ने खास इंतजाम किए हैं। कई जिलों में एक गांव एक गणपति पहल को अपनाया गया। इस साल शोर शराबे वाले प्रदूषण को कम करने पर जोर दिया जा रहा है। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: और बुलेटिन के अंत में अब मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता की सराहना की। कहा, भारत ने मजबूत आयोजन क्षमता प्रदर्शित की। वैश्विक नेताओं ने विकासशील देशों के बीच सहयोग मजबूत करने और ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने के लिए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की प्रशंसा की। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारत की संस्कृति और साहित्य कमल की तरह हैं, जिसकी हर क्षेत्रीय भाषा उसकी एक पंखुड़ी को दिखाती है। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल में जल विद्युत आपूर्ति में आई कमी के बीच दिसंबर के अंत तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली आपूर्ति को मंजूरी दी। और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद ने क्षेत्र में लंबे समय से जारी विरोध प्रदर्शनों और अशांति पर चिंता प्रकट की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: गुड इवनिंग।
11: FM 103.7 MHz पर श्रोताओं, आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। रात्रि के 9 बजे हैं। लीजिए सुनिए दर्द भरे गीत फिल्म संगीत में।
10: धन्य।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर के स्वर में फिल्म छोटी बहन का ये दर्द भरा गीत, जिसे लिखा था शैलेंद्र ने और धुन बनाई थी शंकर जयकिशन ने। लीजिए सुनिए मोहम्मद रफ़ी के स्वर में ये अगली पेशकश।

शायरी लुधियाने के बोलों को संगीतबद्ध किया है रवि जैन ने और इसे गाया है मोहम्मद रफ़ी ने। फिल्म का नाम वक्त।

लीजिए सुनिए मोहम्मद रफ़ी के स्वर में फिल्म खानदान का ये दर्द भरा गीत, जिसे लिखा है राजेंद्र रोशन ने और संगीतबद्ध किया है रवि ने।

FM 103.7 MHz पर श्रोताओं आप सुन रहे हैं RJ महावीर के साथ फिल्म संगीत में दर्द भरे गीत। लीजिए सुनिए इस कार्यक्रम की अगली और आखिरी पेशकश फिल्म खेल खेल में।

शब्द रचना गुलशन वावरा की, संगीत दिया है राहुल देव वर्मा ने और इसे गाया है आशा भोसले और साथियों ने। फिल्म का नाम खेल खेल में।

अरे मेरा भी एक सुंदर साजन था, उसकी आंखों में नशा, बाजू में ताकत और दिल में हिम्मत थी। बिजली की तरह नाचता हुआ वो मेरे पास आता था, गाता था, नाचता था।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत में दर्द भरे गीत। श्रोताओं, आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। रात्रि के 9:15 हुए हैं, आइए सुनते हैं।

0: विविध भारती मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित कार्यक्रम।
1: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
2: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
1: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
0: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
0: वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आपके लिए लीजिए इस कार्यक्रम में अब सुनिए लता मंगेशकर का गाया और आरडी बर्मन का संगीत बद्ध किया गीत। इस गीत को लिखा है निदा फाजली ने, फिल्म का नाम है हरचाई।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गटले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ

प्रेम कहानी। अभी आपने इस फिल्म में लता मंगेशकर और किशोर कुमार को सुना। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत की धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस गीत के साथ ही आपके लिए कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आज का सफर आपने तय किया प्रीति मिश्रा के साथ।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं।
2: किसने कहा है? शुदन, एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका।

0: को ठीक लगे तो गा ले।
1: संगीतकार रविंद्र जैन।
0: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
2: कभी
0: इस पग में।

0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।
1: आज के फनकार।

0: ये सच है कि हमारी और आपकी दोस्ती इतनी पक्की है कि जिसे हम कभी तोड़ने वाले नहीं हैं, लेकिन ये गाना हमारी दोस्ती के नाम नहीं है, बल्कि उस शख्सियत के नाम है जिस पर केंद्रित है आज के फनकार कार्यक्रम। जरा ये संवाद सुन लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
1: कितने आदमी थे?
2: सरदार,
1: दो आदमी थे। दो आदमी। सुवर के बच्चों, वो दो थे और तुम तीन, फिर भी वापस आ गए खाली हाथ। क्या समझ कर आए थे कि सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा? क्यों, धिक्कार है। अरे ओ सांभा, कितना इनाम रखे है सरकार हम पर?
3: पूरे 50,000।
1: सुना, पूरे 50,000। और ये इनाम इसलिए है कि यहां से 50-50 कोस दूर गांव में जब बच्चा रात को रोता है तो मां कहती है, बेटे सो जा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। और ये तीन हरामजादे, ये गब्बर सिंह का नाम पूरा मिट्टी में मिला दिए, इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। कितनी गोली है इसके अंदर?
2: हाँ?
1: कितनी गोली है?
2: 6 सरदार,
1: 6 गोली, 6 गोली है इसके अंदर, 6 गोली और आदमी थी। बहुत बेइंसाफी है ये। अब ठीक है, हाँ अब ठीक है। अब इसके तीन खानों में गोली है, तीन खाली। अब हम इसको घुमाए दिए। अब कहां गोली है कहां नहीं हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। इस पिस्तौल में तीन जिंदगी तीन मौत बंद है, देखें किसे क्या मिलता है। बच गया साला।

अब आपको लग रहा होगा कि आज के फनकार कार्यक्रम आज उस शख्सियत पर केंद्रित है जिसका फिल्म शोले से कुछ ना कुछ तो ताल्लुक है। सोचते रहिए, आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं ये गाना।

0: भाई आज के फनकार कार्यक्रम में अगर कोई पहेलियां बुझाए तो जाहिर है कि आप पसोपेश में पड़ जाएंगे, आप चक्कर में पड़ जाएंगे, आप सोच में भी पड़ जाएंगे। तो अब मुझे लग रहा है कि बहुत देर हो गई, पहेली को सुलझा लिया जाए और आपको बता दिया जाए कि आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है एक बहुत बड़े और बहुत ही कामयाब निर्माता निर्देशक पर, जिनका नाम है जी.पी. सिप्पी।
1: हवा के साथ साथ
2: अरे रे रे।
1: घटाके

जीपी सिप्पी का नाम हिंदी सिनेमा उद्योग के इतिहास में केवल एक फिल्म के लिए याद किया जाएगा, लेकिन उस फिल्म का पता तो आपको भी है और वो फिल्म है 70 mm वाली शोले। लेकिन जीपी सिप्पी ने सिर्फ शोले ही नहीं बनाई और वो सिर्फ प्रोड्यूसर ही नहीं थे, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री में उनकी शुरुआत बतौर डायरेक्टर हुई थी और वो भी साल 1955 में। फिल्म थी मरीन ड्राइव।

उसके बाद उन्होंने एक बड़ी ही कामयाब फिल्म का निर्देशन किया। इस फिल्म के गाने आज तक संगीत के कदरदान गुनगुनाते हैं। ये फिल्म थी अदले जहांगीर।

साल 1956 में जीपी सिप्पी की निर्देशित फिल्म आई श्रीमती 420। साल 1959 में उन्होंने बनाई भाई बहन, इस फिल्म के निर्देशक थे वो। अब जरा आपको ये भी बता दिया जाए कि जीपी सिप्पी प्रोड्यूसर बने थे सन 1951 में फिल्म सजा के जरिए। फिल्म सजा के गाने हम आज भी गुनगुनाते हैं।

सन 1958 में उन्होंने एक सस्पेंस फिल्म बनाई 12 o'clock। उसके बाद सन 1955 में आई गुनगुनाती हुई कामयाब फिल्म मेरे सनम के प्रोड्यूसर भी जीपी सिप्पी ही थे।

आज के फनकार कार्यक्रम में हम आज आपको निर्माता निर्देशक जीपी सिप्पी के बारे में बता रहे हैं, जिनका जन्म 14 सितंबर 1914 को हुआ था और वो दरअसल फिल्म इंडस्ट्री में बतौर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जाने जाते हैं। ज्यादातर लोगों को उनकी फिल्म शोले का पता है, इससे आगे या पीछे की कहानी बहुत कम लोग जानते हैं। फिल्म शोले के निर्देशक तो थे उनके बेटे रमेश सिप्पी, लेकिन जीपी सिप्पी ने शोले के पहले और बाद में कई नामी फिल्में बनाई हैं। शोले से पहले ही वो सन 1968 में ब्रह्मचारी जैसी कामयाब फिल्म बना चुके थे।

दूसरी तरफ सन 1971 में उन्होंने बनाई थी फिल्म अंदाज, सन 1975 फिल्म शोले, और शोले के ठीक बाद सन 1980 में आई थी फिल्म शान। सन 1985 में रमेश सिप्पी के निर्देशन में जीपी सिप्पी की प्रोड्यूस फिल्म आई थी सागर।

सन 1985 के बाद से जीपी सिप्पी प्रोडक्शंस का ग्राफ थोड़ा सा नीचे हुआ था। दरअसल इसके बाद आने वाली फिल्में कामयाबी की वो कहानी नहीं रच पाई जो शोले या उसके पहले और बाद की फिल्मों ने रची थीं, और जीपी सिप्पी प्रोडक्शंस को फिल्म संसार का एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस बनाया था। सन 1991 में सलमान खान के अभिनय वाली पत्थर के फूल फिल्म आई।

सन 1992 में आई राजू बन गए जेंटलमैन, यहां से शाहरुख खान की कामयाबी की कहानी शुरू होती है। संघर्ष के दौर में शाहरुख खान जीपी सिप्पी के दफ्तर में अपनी तस्वीरें लेकर बैठे हुए थे और राजू बन गया जेंटलमैन के निर्देशक अजीज मिर्जा ने जीपी सिप्पी से कह रखा था कि इस लड़के में हीरो बनने का जबरदस्त पोटेंशियल है। जब जीपी सिप्पी ने शाहरुख खान को देखा तो उन्होंने फौरन यह फैसला किया कि उनकी इस अगली फिल्म में राजू शाहरुख खान ही बनेंगे।

इसके बाद आई आतिश। सन 1997 में जीपी सिप्पी प्रोडक्शंस की आखिरी बड़ी फिल्म आई थी हमेशा। आपको बता दें कि जीपी सिप्पी के बेटे रमेश सिप्पी एक कामयाब निर्देशक के बाद एक कामयाब प्रोड्यूसर भी बन चुके हैं। रमेश सिप्पी के बेटे रोहन सिप्पी परिवार में सिनेमा की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। ये फिल्म है दम मारो दम।

0: तेरा होगा दर्द बात पर रहेगी नहीं कमजोरी हर बात जाएंगे जाएंगे जाएंगे बारी बारी
1: आपकी सेवा में जनहित में जा रही है।
2: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अजीमुशान निर्माता निर्देशक जीपी सिप्पी पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान। प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
3: आज के फनकार।

अभी आप सुन रहे थे देश की सुरीली धड़कन, विविध भारती मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित कार्यक्रम। श्रोताओं, हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं, FM 103.7 MHz पर। रात्रि के 10 बज चुके हैं। श्रोताओं, हमारी आज की ये प्रसारण सभा अब यहीं पर संपन्न होती है। कल सुबह ठीक 8:51 पर हमारी अगली प्रसारण सभा में आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।